0: यानी कि मेरे शो के बाद थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन सनसेट होगा 6:20 पे। किरण नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बोला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। मेरा नाम केतन है, अभी से लेके 3 बजे तक हूँ एंड बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वेल यस, फ्राइडे इट इज एंड क्या प्लान है आपके आज के? और ऑफ कोर्स फ्राइडे ऑलवेज फील लाइक प्री वीकेंड। फ्राइडे से लेके संडे मॉर्निंग आफ्टरनून तक इट फील्स सो ग्रेट। उसके बाद ऐसा आता है कि यार क्या यार, फिर से वीकेंड खत्म हो रहा है एंड देन मंडे को फिर से बैक टू वर्क, वही चीज। सो द बेस्ट टाइम ऑफ फ्राइडे, यू नो द बेस्ट टाइम ऑफ एवरी वीक स्टार्ट फ्रॉम मिड आफ्टरनून, लाइक आफ्टर लंच ऑफ फ्राइडे ऑल द वे अंटिल राइट बिफोर इवनिंग ऑफ संडे। वैसे बने रहिए बिकॉज होम सिक रेमेडीज के लिए आप मुझे टेक्स्ट भेजिए, अभी थोड़ी देर में उसके बारे में बात करते हैं।
1: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और ये रही होमसिक रेमेडीज के लिए मैसेजेस जो मुझे मिले हैं। वेल, वरुण भाई को पिक किया है मैंने। वो कहते हैं, क्योरा केतन, यस्टरडे आफ्टरनून आई वाज स्टार्विंग एट वर्क एंड बॉट $8 स्पाइसी समोसा फ्रॉम अ नियर बाई कैफे कैबिनेट। दे पुट इट इन माइक्रोवेव फॉर 30 seconds एंड हैंडेड मी अ रबरी क्या होता है? Oh, rubbery lukewarm pastry filled with bland mashed potatoes and gave me a packet of tomato ketchup with it. Well, paying $8 for a snoggy microwave potato blob in Auckland completely wasted my day. Well, मेरे को तो पहली बात तो ये ढूंढना पड़ेगा यार, exactly क्या होता है ये। मैंने कभी rubbery? How do we pronounce this? मैं तो खैर रबड़ी बोलता हूँ। रबड़ी, आपने रबड़ी खाया? रबड़ी इज लाइक यू नो मलाई दूध और वो मीठा मीठा सा, क्या अमेजिंग टेस्ट आता है। एनीवेज, वो मेरी बात नहीं हो रही, ये बात इनकी हो रही है। बट स्पाइसी समोसा थोड़ा बहुत तो है। आई नो वन प्लेस जो अगेन पापाटोटो में ही है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि यू आर लिविंग, मतलब मुझे भी कहते हैं कि यू आर लिविंग नेक्स्ट टू द गोल्डन समोसा स्पॉट। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? बोले कि यहाँ रहने वाले हम दूर दूर से, लाइक लिटरली माउंट रॉस्केल हेंडरसन से यहाँ इस लोकेशन पे आते हैं। अब कितनी सच्चाई है वो तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, टेस्ट टू टेस्ट, हर एक बंदे का टेस्ट अलग होता है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन दैट टेस्ट इज वेरी गुड। इनफैक्ट मुझे एक को याद आया, कशिका जी जो हमारे माई टाइम विद कशिका जो मेरे शो से जस्ट पहले आता, उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया था। और ऑनेस्टली बताओ ना, उन्होंने बिल्कुल भी गलत रिकमेंडेशन नहीं दी थी। मैंने वहाँ पे जाके खाया था ना, वो सो ग्रेट। एनी हिंट, मैं कौन से प्लेस की बात कर रहा हूँ आप मुझे बताइए। 5599 इट्स इन पापाटोटो, आई एम अज्यूमिंग ग्रेट साउथ रोड पर ही है। ग्रेट साउथ रोड, हाँ जी, वहाँ पे। सो यस, मुझे बताइए कौन सी लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं।
1: With Ketan.
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम 80s के रेट्रो गाने।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. और एक्चुअली ऑफिस शाउट आउट के लिए मुझे मैसेज आया, एक ही मैसेज आया एक्चुअली आज. मे बी ऑफकोर्स यार सभी बिजी होंगे, जस्ट प्री प्लानिंग What's the party tonight? ये गाना ना, ये एक्चुअली जिसने बनाया बहुत ही सही गाना, और हम ऐसे ही करते हैं. लाइक व्हेनेवर वी नीड टू आस्क और कंफर्म कि भाई कहाँ पे पार्टी है, वी वांटेड टू आस्क एनी ऑफ द कलीग, तो हम ऐसे ही गा के बोलते हैं, ब्रो वेयर्स द पार्टी टुनाइट. और वो बड़े ही गा के बढ़िया तरीके से बताते हैं, आज पार्टी मेरे घर में नहीं है. बट या आप ऐसे करते हैं, आप वैसे कभी किसी को टीस करना है बर्थडे के दिन तो आप कैसे करते हैं, आप मुझे बताइए 5599 पे. पर यस, ये मैसेज पढ़ लेता हूँ भाई, बातों बातों में भूल ही गया मैं. श्रेया जी का मैसेज आया न्यू मार्केट से, वो कहती हैं, राइट नाउ इन द ऑफिस आई पिक्ड अप द चिकन पेस्टो पास्ता फॉर लंच. ओह दैट्स सो कूल, दैट्स सो कूल. एक तो ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलते हैं यहाँ पे लिटरली, मतलब मैं ऑनेस्टली मेजोरिटी केसेस में ये होता है भाई अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है. एंड वंस आई पुट ऑफ यू नो द माइक ऑफ एंड देन मैं सर्च करता हूँ, जैसा अभी मैं थोड़ी देर में करने वाला हूँ.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, ये रही हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में खबर। 1819 आज के दिन में रेवरेंड सैमुअल मार्सडन ने कैरी कैरी में न्यूजीलैंड की फर्स्ट ग्रेप वाइन्स प्लांट की थी। ये वाइन्स ऑस्ट्रेलिया से लाई गई थी। मार्सडन का जो मेन एम था एग्रीकल्चर और को डेवलप करना था, और ग्रेप की कल्टीवेशन न्यूजीलैंड के अर्ली यूरोपियन फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स का भी ये पार्ट था। सो यस, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो 1819 आज की तारीख, यानी कि बोले तो 25 ऑफ सेप्टेम्बर न्यूजीलैंड में ग्रेप वाइन्स की बिगनिंग हुई थी कैरी कैरी में।

0: चलिए बता देते, एक बहुत ही बढ़िया एक इवेंट होने जाना है सैटरडे को। क्या आप एक हाई रिटर्न प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं विद जीरो टैक्स? तो ये आपके लिए इवेंट हो सकता है। जी हाँ, बिगेस्ट दुबई एक्सपो, प्रॉपर्टी एक्सपो होने जा रहा है 2026 न्यूजीलैंड में, जो कि इस वीकेंड पे हो रहा है, सितंबर 26 एंड 27 को, सुबह 10 से लेकर शाम के 8 बजे के बीच, JW मैरिट इन ऑकलैंड। आप काफी डेवलपर से मिल सकते हैं, प्रिंसिपल्स इन पर्सन, एंड एक्सेस एक्सक्लूसिव डील्स इंक्लूडिंग 0% अपफ्रंट DLD फीस भी। काफी उनमें क्वालिफाइंग यूनिट्स, डिफर्ड पेमेंट प्लान्स और काफी कुछ उसमें होगा। सो यस, ये आप देख सकते हैं। साथ में ऑफकोर्स, वेदर यू आर स्टैंडिंग आउट और एक्सपैंडिंग योर पोर्टफोलियो, आप 1-to-1 कंसल्टेशन भी वहां पे बुक कर सकते हैं। एक वेबसाइट है www.buildcaps.com, जी हाँ, www.buildcaps.com, और ड्रॉप बाय एट JW मैरियट ऑकलैंड, जी हाँ। वेल यस, हमारी टीम से भी आप मुलाकात कर सकते हैं सुबह 10 बजे से सैटरडे को JW मैरियट ऑकलैंड में।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
5: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर, 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।
6: The Specsavers Specstravaganza store-wide sale is on now. Phew, bit of a tongue twister, hey? Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200. Hurry, offer ends October 3. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
7: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
8: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
9: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48 megapixel fusion main camera with variable aperture for more creative control, and 4 gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
10: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
11: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath, and you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
12: This is Warehouse Country, where on your way home from work, school or wherever, you can top up on eggs, nature's fresh bread and milk at the best price in the country. From, well...

0: चटनी शॉट्स।
1: चलिए मैं न्यूज पढ़ लेता हूँ अभी फटाफट। ओपा टिकी में रोड के साइड रखे गए बोल्डर्स, जो बड़े पत्थर जिनको बोलते हैं, हटा दिए गए हैं। और इन बोल्डर्स की वजह से कुछ ड्राइवर्स फुटपाथ पर गाड़ी पार्क कर रहे थे, जिससे पेडेस्ट्रियन के लिए प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब बोल्डर्स रिमूव कर दिए गए हैं ताकि फुटपाथ पेडेस्ट्रियन के लिए और क्लियर हो जाए।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे दिल से दिल तक। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: Well, ye ra mera sawal aap sabhi se ye ra sawal hai. Wo ye hai ki Article 370 jo movie aayi thi, जिसमें यामी गौतम भी थे और भी तरह तरह के कलाकार थे, उन्होंने रिसेंटली नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। आपका ये जवाब मुझे भेजना है आपको, दैट 370 आर्टिकल 370 ने कितने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। 5599 से नंबर जहां पे आप मुझे भेज सकते हैं।

0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। अगर आपने अभी देखा है, अभी अभी ज्वाइन किया है मुझे, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। और अगर मुझे आप 12 बजे सुन रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, एनी न्यू मूवी आपने देखी हो जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं कि आपको वो फिल्म पसंद आई और क्यों आई, ये आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे। आई वुड रियली वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। 5599 से नंबर। बट ये सब बने रही बिकॉज इस साल में बॉलीवुड की खबरें भी आएगी और भी तरह तरह की खबरें दूंगा। लेटेस्ट खबर भी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। आप बस एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना।
0: बचाओ क्या,

0: well, आप एक चीज को लेके काफी रिलैक्स होंगे थिंकिंग अबाउट कि अगर आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो क्या होगा. आई मीन दुनिया से जाने वाली बात पे ना नहीं एकदम रिलैक्स होगे, बट जो आपके एसेट्स हैं और आपकी गुडविल्स हैं एंड देन यू नो व्हाटएवर यू हैव क्रिएटेड वेल्थ ओवर हियर इन न्यूजीलैंड, तो उसका क्या होगा. वेल ऑफ कोर्स आप रिलैक्स इसलिए होंगे बिकॉज आपको लगता होगा दैट ऑटोमेटिकली इट विल गो टू इधर योर पार्टनर और टू योर किड्स और योर फैमिली, राइट. वेल हमेशा ऐसा नहीं होता है और हर चीज़ में ऐसा ना होगा ना, ऐसा नहीं होता. एंड मैं भी खुद भी अपने आप को गिरूंगा उसी कैटेगरी में, दैट आई ऑल्सो यूज टू थिंक द सेम वे. बट नो, व्हेन आई लिसन टू दिस पॉडकास्ट तानिया पिंटो, ऑब्वियसली मैंने पॉडकास्ट में उस टाइम था नहीं, बट जब इन्होंने रिकॉर्ड किया है रुजबे एंड सैंडी ने, देन आई हर्ड बिकॉज उनके सारे पॉडकास्ट में सुनता हूँ. तानिया पिंटो सीनियर ट्रस्टी एंड पब्लिक ट्रस्ट है, उन्होंने आके काफ़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक पे उसको उस पर खुल के बात की है और क्या क्या कुछ करना चाहिए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो यस, आप मुझे ड्राइव लिखिए 5599 पे भेज दीजिए ताकि ये लिंक जो है ऑडियो लिंक आप तक पहुंच जाए. सेकंड पॉडकास्ट इज बियॉन्ड द डेप्थ, व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन, इस पे बात हुई, चर्चा हुई है बाय विजयन पूजा. काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने यू नो बातें की हैं इस पे, तो आपको इसको भी अगर सुनना है तो मुझे 5599 पे आप मुझे भेज दीजिए BF लिख के. BF बोले तो इनिशियल है ब्रेकफास्ट का.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
1: हाँ.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हम, a proud member of New Zealand's Master Builder, building high quality standalone and terraced houses. We're one of the award winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111. Indelible Homes, your building expert.
2: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
3: It's the one you've been waiting for. Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% off selected big brand clothing, footwear and more. Big brand, big savings. Get into Rebel Sport today. These deals and so much more. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex Pumped. Plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
5: Hey Neha, congratulations on your first home. Tune to kaha tha ki do banks ne loan dene se aur ek famous broker ne to case lene se hi mana kar diya tha. ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
5: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: Media Works complaints. How can I help?
9: Yeah. Hello.
8: Hi.
9: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
8: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
9: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
8: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
9: Great. Sing it to me.
10: Advertise with
11: Media Works.
10: New Zealand listens to us.
12: Zabardast hits.
13: Shuru ho jaye to rukte nahi.
12: Playing Bollywood's biggest hits.
14: Well, aaj lunchtime rent line ke liye kisi ka message nahi aaya. I feel like maybe ho sakta hai unka jo hafta gaya ho ya fir din gaya ho. It must have been went very very well. Well, मेरा सवाल मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, आर्टिकल 370 ने कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं? अभी रिसेंटली खबर आई थी, आदित्य धर ने बोला भी था कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट धुरंधर दिस टाइम, मे बी नेक्स्ट ईयर यू माइट हियर और यू आई मे कम अगेन फॉर धुरंधर, बट लेट्स जस्ट सेलिब्रेट अबाउट आर्टिकल 370 दिस टाइम। सो यस, कितने अवार्ड जीते थे ये मैंने पूछा था, एंड फॉर्चुनेटली सभी के आंसर एकदम सही आए हैं, जिसमें आदित्य किरण चेला एंड प्रकाश एंड आखिरी मैसेज आया है परमवीर का, इनका मैसेज आया है और इन सब ने सही आंसर दिया है। वेल, पहला अवार्ड तो जीता है उन्होंने बेस्ट फीचर फिल्म का, आदित्य धर को मिला है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस बाय आदित्य धर। उसके बाद सेकेंड अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम धर। जस्ट इफ यू डोंट नो, यामी गौतम इज एक्चुअली द वाइफ ऑफ आदित्य धर, जिन्होंने ये फिल्म बनाई जिसने धुरंधर भी बनाई है। उसके बाद बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन शाश्वत सचदेव, उनको मिला है इसका। सच ग्रेट राइट। वेल, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आई एम श्योर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब तक तो आ चुकी होगी, एनी ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म पे।
15: लंच बॉक्स विद केतन।
16: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
12: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए लेट्स टॉक अबाउट लेटेस्ट खबर अभी की, और वो है एड शीरन मूरल वैंडलिज्ड अगेन। जी हाँ, लंदन में एड शीरन का मूरल एक वीक में सेकेंड टाइम वैंडलाइज हुआ है, और इस बार मूरल पर डॉलर साइन लगाए गए हैं। शीरन के फोरहेड पर स्टार ऑफ डेविड बनाया गया। मूरल बाथ स्ट्रीट पर है और 2018 में आर्टिस्ट टेलर कैनेडी स्टेन ने बनाया था। पिछली बार मूरल पर फ्री पैलेस्टाइन लगाया गया था, और इस बार इन्होंने डॉलर साइन आ गया था। वैसे ये इंसिडेंट शीरन के टूर से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बाद हुआ है, जब रैपर मैकलेमोर को प्रो पैलेस्टीनियन कमेंट के बाद टूर से हटा दिया गया था। शीरन ने बाद में गाजा वॉर और सिचुएशन को लेकर माफ़ी भी मांगी थी, और कहा कि उनसे डिफ़िकल्ट डिसीजन में मिस्टेक्स हुई है। जी हाँ, तो ये उन्होंने उस पर जवाब दिया था। सिंपल शब्दों में कहूँ तो मूरल को बार बार पॉलिटिकल मैसेज के लिए डिफेस किया गया था, और लेटेस्ट इंसिडेंट में डॉलर साइन और स्टार ऑफ डेविड ऐड भी किया गया था। लंच के

0: Well, just to remind you again, आज के दिन हम कीर्तन संग्रह होने वाली है, रिकॉर्डिंग होने वाली है, जो कि वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो में होगा शाम के 7 बजे के बाद 25th September. So yes, आप आ सकते हैं, ज्वाइन करिए हमारी टीम के साथ एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट को लेके. एंट्री कंप्लीटली फ्री है, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट एंड कावा जो है वो सेल पे होने वाला है. तो यानी कि आप आइए एकदम मस्त अपनी फैमिली और यू नो फ्रेंड्स के साथ, एंड देन यू जस्ट एंजॉय ओवर देयर. एंड आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका होगा टू विन मेनी मेनी प्राइजेस. जी हाँ, जस्ट लॉक इट डाउन एंड विल सी यू टुनाइट एट वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
3: हम. लेडीज एंड जेंटलमैन,
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
6: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
7: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
4: TradeDepot.co.nz.
8: Freedom's Outdoor Furniture Flash Sale is on now. Get 30% off outdoor furniture and homewares. From outdoor lounges to outdoor cushions, save 30%. Hurry, sale ends Monday, only at Freedom.
9: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
10: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath, and you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
11: Reliance Ventilation System.
12: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
11: Moisture और ventilation का problem लगता है.
12: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
11: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
13: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 80.
14: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in store today.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: बॉलीवुड से खबर लेके आया हूँ. सोनाली कुलकर्णी 26 साल बाद फिर से एक मदर का रोल प्ले करने वाले हैं. मिशन कश्मीर 2000 में उन्होंने ऋतिक रोशन की एडॉप्टेड मदर का रोल किया था और अब द पैराडाइज में वो नैनी की मदर समाका बनी है. सोनाली कहती हैं कि मिशन कश्मीर के बाद उन्हें टाइपकास्ट नहीं किया गया. उसके बाद तुरंत उन्हें प्यार तूने क्या किया और दिल चाहता है जैसी डिफरेंट रोल्स मिले. द पैराडाइज में उनके नानी के साथ काफ़ी इमोशन सीन्स हैं, अनलाइक मिशन कश्मीर जहां ऋतिक के साथ उनका लिमिटेड सीन स्क्रीन टाइम था. सोनाली ने तेलुगु सीखी और फिल्म के लिए अपने डायलॉग्स भी खुद डब किए हैं. उनका कहना था कि द पैराडाइज में शमाका सिर्फ नानी की माँ नहीं, उसकी अपनी स्टोरी और प्रस्पेक्टिव भी है. यार ये देखनी पड़ेगी, नानी की माँ मीन्स व्हाट, पर नानी या फिर मदर का नाम, मतलब जो लड़की है उसका नानी है, नानी है नैनी. आई फील नैनी होगा, बट नैनी ऑल्सो डजेंट साउंड लाइक नैनी. आपको क्या लगता है, मुझे जवाब दीजिए. 5599 पे
3: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: Welcome back. Well, ye ra mera sawal. Sawal ye hai ki लीप ईयर के बारे में तो सभी को पता है कि लीप ईयर क्यों, आई मीन लीप ईयर का डिफरेंस क्या करता है, लीप ईयर क्या मेजर डिफरेंस लेके आता है फॉर द ईयर. ऑफ कोर्स वो एक दिन बढ़ा देता है, बट क्या रीजन है इसके पीछे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हैविंग अ लीप ईयर, जल्दी से मुझे आप 5599 पे बता सकते हैं. लेट्स सी कितने नॉलेजफुल लिसनर्स हैं मेरे यहाँ पे. आई एम प्रीटी श्योर सभी हैं, बट स्टिल मेरी थोड़ी कहते ना कि चुल मच रही है जानने की. सो यस, 5599 से नंबर जहाँ पे आप मुझे भेज

0: आवाज गूंजेगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स और मेरा नाम केतन है, आपका स्वागत करते हैं फिर से इस आर में और लंच बॉक्स शो में। अगर मुझे 12 बजे सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर मुझे आप अभी अभी ज्वाइन किया है तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप बस बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो अंटिल 3। सैंडी विल बी ज्वाइनिंग राइट आफ्टर दैट इन द कॉफी ब्रेक, एंड उसके बाद रुज भी उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो। पर अभी के लिए आप एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना, और मैंने सवाल किया थोड़ी देर पहले, फिर से दोहरा देता हूं कि लीप ईयर पता है क्या डिफरेंस लेके आता है? साल में एक दिन बढ़ा देता है, राइट? फेब के महीने में एक दिन बढ़ा देता है, बट व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड इट? तो ये मेरा सवाल था, कुछ जवाब मिले हैं बट आई फील लाइक यू नो थोड़े और आ सकते हैं। तो यस, 5599 नंबर जहां पे आप मुझे भेज सकते हैं।
1: बचाओ क्या,

0: एक अपडेट आया था कल, ऑकलैंड की सारी ट्रेन लाइन जो है उस पर थोड़ा सा डिले, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत डिलेज हो रहा था, प्लस कैंसिलेशन भी होती नजर आ रही थी। बट ये मेन प्रॉब्लम क्या था उसका, पेनरोज और ओरेकी के बीच पावर लाइन का इशू की वजह से ये सारी चीज़ें हुई और सारे पैसेंजर ने ये चीज़ की वजह से डिलेज फेस किया। इसके चलते नेटवर्क वाइड ट्रेन सर्विसेज अफेक्ट हुई थी। ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट ने पैसेंजर्स को स्टेशन पर लाइव डिपार्चर स्क्रीन्स चेक करने की एडवाइस दी है, यानी कि अभी तो सॉर्टेड हो चुका है, बट यस, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फिर से फेस करते हैं तो मेक श्योर कि आप लाइव अपडेट भी लेते रहें ऑन थ्रू योर ऐप। इससे एटलीस्ट यू विल हैव अ बैकअप रेडी जस्ट इन केस, बिकॉज ऑफ कोर्स हो सकता है आपको भी कहीं पे टाइम पे पहुंचना हो और इन चीज़ों की वजह से आप डिले हो या फिर आपका नुकसान हो, वो तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड, राइट। वेल, इशू भी ऑन गोइंग है, मतलब इस तरह की चीज़ें आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, बट होपफुली ये चीज़ जो है बहुत ही जल्द सॉर्टेड हो जाए सो दैट एटी से फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो आती रहेगी और यहाँ पे हम आपको बताते रहेंगे। सो यस, आप बस हमें तो जुड़ते रहिए, बट यस, एज आई मेंशन दैट आप ऐप जो है उसे उससे कनेक्टेड रहें, बिकॉज फ्यूचर में फिर से अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, बिकॉज ये ऑब्वियसली अनसर्टिनिटी है, यू नो, अगर नेचुरल चीज़ें, जब नेचुरल चीज़ें भी बिगड़ती हैं तो ये तो यू नो ये तो इंसानों ने बनाई, तो फॉर श्योर ये चीज़ होगी। सो आप चेक करते रहिए और वहाँ से अपडेट लेते रहिए, या फिर हमें तो आप सुनिए, बिकॉज हर आर में हम आपको कुछ ना कुछ लेटेस्ट खबर बताते रहते हैं। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का।
1: Sanathan World Cup Sports and Cultural Incorporated brings you Valentine's Buffet Restaurant, Lal's Transport in Ram's Group of Companies, 11th Sanathan World Cup 2026, hosted by NZ Sanathan Sports and Cultural Incorporated from September 30th. Auckland comes alive with soccer, netball, volleyball and golf teams from New Zealand, Fiji, Australia, Canada and America, competing across Bill McKinley Park and local venues. Unity through sport, culture and community. Contact to Chairperson Jiten Lal on 021-452-503. Stay tuned to Hub, your official media partner.
2: अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का, माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के साथ क्लीनिंग, स्टोरेज, शेल्विंग, रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स। टीज एंड सीज अप्लाई, एंड्स अक्टूबर 14। स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
7: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
8: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
7: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
9: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
10: Bunnings has great value nailed across the store. And with daylight savings starting this weekend, we can help you replace those smoke alarm batteries with EverReady 9-volt battery 2-pack, just $5.69. Head in store or online for more great value. Bunnings
11: Warehouse. This is Warehouse Country, where the best price on nature's fresh bread, the best price on eggs, and the best price on milk in the country can only be found at The Warehouse. Obviously.
12: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में। बिल कैट रियल एस्टेट एंड BNW डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट JW मैरियट ऑकलैंड, 10 AM टू 8 PM। देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड। डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन। रजिस्टर नाउ, विजिट bilcaps.com। प्रमोटेड बाय वेब टाइगर।

0: स्किप या रीप्ले।
1: वेल, एक नोटिस आया है उबर ड्राइवर स्पेशली के लिए। अगर आपको नॉट योर फॉल्ट सर्विस के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, उसके साथ क्लेम ऑलरेडी है अगर, तो वो प्रोसेस में चल रहा है। ये एक अपडेट न्यूज़ आई है, एक क्लेम्स मैनेजर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे बहुत ही जल्द। लेकिन अगर आपने अभी तक क्लेम अप्लाई नहीं किया है तो इनटेक फोर अब ओपन होने वाला है, यानी कि नए एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने जा रही है। फ़ोन टीम अभी फुली बिजी है, उनकी कैपेसिटी ऑब्वियसली उस पर डिपेंड भी करता है कि भाई वो उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। सो हायर चांसेस आर दैट दे माइट नॉट बी एबल टू पिक योर कॉल। तो आप बेटर वे ट्राई करिए, और वो है उनकी वेबसाइट पर जाके nyfservices.com पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म आप अब सबमिट कर सकते हैं। सो यस, एग्जिस्टिंग क्लेम्स जो हैं वो वेट करें, क्लेम्स मैनेजर कॉन्टैक्ट करेंगे आपको बहुत ही जल्द। बट न्यू क्लेम के लिए आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक. वेल यस, जल्दी से आपको अभी के स्पोर्ट्स की खबर बता देते हैं. न्यूजीलैंड टीम स्किपर नेथन नेपल्स में अमेरिकाज कप के नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी हो चुके हैं. उनका कहना है कि किसी भी राइवल टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि सब टीम्स ने काफी ट्रेनिंग ली होती है और प्रिपरेशन भी की होती है. आउटरीच के अकॉर्डिंग टीम न्यूजीलैंड का फोकस सिर्फ सेलिंग पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर भी है. उन्हें लगता है कि कंपटीशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा टफ हो सकता है. सो यस, टीम न्यूजीलैंड टाइटल डिफेंड करने की प्रिपरेशन में है. आउटरीच राइवल्स को सीरियस थ्रेट मान रही है. नेपल्स प्रेशर और परफॉर्मेंस टेस्ट करने का काफी इम्पोर्टेंट स्टेज माना जा रहा है.

एक सवाल है फायर फाइटर्स बूट कैंप के फिजिकल और मेंटल चैलेंज के बारे में. वेल, ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स को हैवी इक्विपमेंट कैरी करना, स्टेयर्स क्लाइंबिंग, कन्फाइंड स्पेस और हाई प्रेशर सिचुएशन हैंडल करनी होती है वहां पर. So yes, sir, is it easy to do it or not? Can you make it or not? So yes, sir, many people are applying to be part of it, to, you know, apply for this position. But yahan pe ye sari cheeze hoti hai, not just simple thing. So yes, sir, firefighters training kafi physically demanding hoti hai. Like, you know, running around, holding some heavy things, lifting people. You never know, right? And kuch burn wali cheeze bhi hoti hai. So you never know, yeah, what things you might come across. स्ट्रेंथ के सामने स्टेमिना, टीम वर्क और मेंटल रेजिलेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है. दैट मींस अगर जब पैनिक वाली सिचुएशन है, सो हाउ कैन यू हैंडल द सिचुएशन, ये सारी चीजें भी होती है. बूट कैंप का पर्पस कैंडिडेट्स को रियल इमरजेंसी सिचुएशन को के प्रेशर के लिए प्रिपेयर करना. और मेन सवाल यहाँ पे है कि क्या आप इतने इंटेंस चैलेंज को हैंडल कर पाएंगे या नहीं. That is a question, right? Lunchbox with Ketan. इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.

0: It's the one you've been waiting for. Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% off selected big brand clothing, footwear and more. Big brands, big savings. Get into Rebel Sport today. These deals and so much more. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
1: A Kogan fan is just like a fan. Both fans do very similar fan things, but with slightly different little logos, shapes and chords. One fan's a Kogan Smarter Home Heating and Cooling Bladeless Purifier fan. The other fan has a price you will not be a fan of. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith and Kogan.com. Clickin' awesome.
2: Did you know an EasyVote card makes voting easier and faster? To get yours, you need to enrol by midnight 4 October, so don't leave it too late.
3: Get your EasyVote card. Enrol by 4 October at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
4: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
5: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
4: इसीलिए एनजेड पीएमआई से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
6: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही एनजेड पीएमआई के पॉल से बात कीजिए एनजेड पीएमआई टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZ PMI.
7: राज, रोमांस, एक्शन और सुपर नेचुरल पावर से भरी कहानी एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एम तमन्ना
8: इस वन की काली शक्ति रात के साये से भी काले
7: द वन रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 25th सितंबर
9: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
10: हमें माता का बुलावा आया है
11: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
12: James, this is a radio ad.
11: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Tech Talk.
2: Well, ये काफी अच्छा लग रहा है मेरे को आर्टिकल रिगार्डिंग AI के पांच पॉसिबल डूम्सडे सिनेरियो डिस्कस करते हैं यहाँ पे. सारे हाइपोथेटिकल है, कोई इतना सीरियस वाली बातें नहीं है, स्पेशली सुपर इंटेलिजेंट AI के अराउंड. वेल, सुपर इंटेलिजेंट AI का क्या मतलब होता है? AI ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा केपेबल हो जाए और उसका गोल जो है वो ह्यूमन इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट करे. उसके बाद पेपर क्लिप प्रॉब्लम, AI को एक सिंपल गोल दिया जाए और वो उस गोल को अचीव करने के चक्कर में ह्यूमंस और रिसोर्सेज को ऑब्स्टेकल समझने लगे. दिस इज स्कैरी. आर्टिकल को ब्रॉडर पॉइंट का एक ही सिर्फ AI ही नहीं बल्कि AI के गोल्स को ह्यूमंस के गोल्स के साथ प्रॉपरली अलाइन करना ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. और जिन्होंने आर्टिकल लिखा उन्होंने ये भी बोला है कि करंट AI अभी ह्यूमन लेवल जनरल सुपर इंटेलिजेंट नहीं है, इसीलिए ये सिनेरियो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में एस्टैब्लिश इवेंट्स नहीं है. यानी कि अभी तक तो हाल फिलहाल टेंशन लेने की बात नहीं है, बट एज आई सेड लाइक यू नेवर नो व्हाट गोना हैपन टुमारो. एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि प्लीज आप AI से भी अपने आप को रूबरू कराएं एंड सीखिए.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. रिकमेंडेशंस के बारे में बातें करते हैं. कुछ मैसेजेस भी यहाँ पर आए हैं एंड शक मुझे लगता है गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. शक ट्रस्ट नो वन, मैंने इसका टीजर देखा है, बहुत अच्छी लग रही है ये. परिणीति चोपड़ा, जेनिफर विंगेट इस मूवी में है. ताहिर राज भसीन को हम बहुत देर बाद एक्चुअली में देखने वाले हैं. सोनी राजदान भी है इस मूवी में, जो कि आलिया भट्ट की मदर है. सो सुमित व्यास भी है इस मूवी में. सो दिस मूवी इज़ अबाउट 9 years, जब एक बेबी मिलता है, वेन द बेबी वॉज अबडक्टेड. तो 9 साल बाद की, उसके बाद की कहानी है. सो इट्स या सो शक ये आप देख सकते हैं. ये नेटफ्लिक्स पे है एक्चुअली में. ऑल्सो नेटफ्लिक्स पे जाकिर खान का पापा यार आया है, तो ये मैंने अभी तक देखा नहीं है, मेरी लिस्ट में है. तो आई थिंक शायद ये हिम्मत करके मैं देखूंगी. एंड अनदर वन मुझे लगता है कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, अभी हुमा कुरैशी की जो मूवी आई थी बेबी डू और डू डाई, वो एक्चुअली वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है. चुंबक की भी मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है, वो भी आप देख सकते हैं. मॉन्स्टर इज अनदर सीरीज़ जिसकी तारीफ सुनी है, इसकी भी रिकमेंडेशन यहाँ पर आई है मेरे पास. और मेरे पास एक रिकमेंडेशन गंधारी मूवी की आई है एक्चुअली में. यहाँ पे किसी का मैसेज आया है, गंधारी मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी है. ये तापसी पन्नू की है, इश्वाक सिंह है इस मूवी में. एक्चुअली एक क्राइम थ्रिलर है ये मूवी. सो अगर आपको ऐसे मौसम में कुछ थ्रिलर देखने का मन करता है, तो दिस इज दीज आर द फ्यू रिकमेंडेशंस जो आप देख सकते हैं.

कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं और आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स बहुत ही स्पेशल होने वाला है गाइस। ट्रेंड मेकर्स में सिंगर शर्ली सेठिया यहाँ पे लाइव आपके साथ शामिल होने वाली है। सो ट्रेंड मेकर्स आज डेडिकेटेड रहेगा शर्ली सेठिया को। हम हमेशा उसमें क्या करते हैं ट्रेंड मेकर्स में कि जिस आर्टिस्ट को हम ट्रिब्यूट सेलिब्रेट करते हैं उनके गाने हम प्ले करते हैं, बट यहाँ पे अपने गाने खुद ही आपके सामने लाइव लेके आने वाली है शर्ली सेठिया। सो दिस गोना बी अ वेरी स्पेशल वेरी डिफरेंट ट्रेंड मेकर्स। शर्ली सेठिया बॉलीवुड सिंगर तो है ही, लेकिन उनकी जर्नी न्यूजीलैंड से शुरू हुई। इंडिया में पैदा होके न्यूजीलैंड में आना एंड यहाँ से फिर बॉलीवुड का सपना देखना कि बॉलीवुड में जाना है एंड यूट्यूब से वीडियोस डालना शुरू करना, धीरे धीरे देन बॉलीवुड में पहुँचना स्ट्रगल करने के बाद, एंड देन बॉलीवुड में सेटल होना इज़ नॉट ईजी। एंड शर्ली सेठिया हैज़ डन अ लॉट। उसने ना सिर्फ गाने किए हैं, उसे मूवीज़ किए हैं जहाँ पे उसने एक्टिंग की है, उसे बहुत सारे वहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट्स किए हैं। न्यूजीलैंड में अभी तक कॉन्सर्ट नहीं हुआ है, तो उसका फीलिंग हम 6 बजे के बाद आज ज़रूर लेने वाले हैं। बट द वे शर्ली सेठिया ने अपनी जर्नी की है, इट्स नॉट ईजी। एक्चुअली में हमने उनके साथ एक अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है जो आपके लिए हम अगले हफ्ते रिलीज़ करेंगे, जहाँ पे शी शेयर एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्री जो बाहर से दिखाई देती है अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें शर्ली सेठिया ने हमारे साथ यहाँ पे शेयर की। और बहुत प्राउड फीलिंग आती है बिकॉज न्यूजीलैंड एक छोटा सा डॉट है पूरे वर्ल्ड मैप में। यहाँ से जब कोई बॉलीवुड में अपनी जगह बनाता है तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाली फीलिंग है। एंड रुजबे ने उसमें बोला भी है कि ऐसा फीलिंग आती है कि जैसे न्यूजीलैंड की बेटी वहाँ पे गई है। सो या आज हम सेलिब्रेट करने वाले शर्ली सेठिया की अचीवमेंट्स को 6 बजे के बाद, तो सुनना ना भूलेगा। टोटली फ्राइडे फील वाला ये आवर आपके लिए रहने वाला है। एंड टू गिव यू अ टेस्ट की शर्ली सेठिया के जो गाने आप वहाँ पे सुनने वाले हैं, उनका एक बॉलीवुड का ट्रेंडिंग गाना फिलहाल हम सुनते हैं।

कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं 20 सेंट्रल में 76 एंड मिडलैंड रीजन में 32 ऑफ द न्यू पोजीशंस 94 आर बीइंग एडेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट. सो नर्स टू पेशेंट रेशियो जो है हेल्थ न्यूजीलैंड ने कंसिडर किया है इंट्रोड्यूसिंग मिनिमम नर्स टू पेशेंट रेशियो. फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मॉडल जहाँ पे वन नर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 पेशेंट्स. But this has not been decided yet. Health New Zealand developed kari ek business case expected to be completed next year. So, jahan pe several possible staffing models rahenge. This was highly needed, yaar. And recently, jo kuch bhi hum face kar rahe hain, fixed nurse to patient ratio ke upar focus rahega, nursing hours per patient per day, staffing based on how sick or complex patients are, patient पर देखते हुए, then workforce availability and how healthcare services are delivered. ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा. जो existing care capacity department management system है has been used for around 20 years to determine nursing numbers, जो मुझे लगता था कि high time था change करने के लिए. Independent review ने काफ़ी problems found की है consistency को लेके, quality, reliability of the data. So, इसी के रिलेटेड एक्चुअली में हमारी कल नेशनल के रिप्रेजेंटेटिव से बात भी हुई है, जो कि मैनुरेवा एंड ओटा हु के कैंपेन मैनेजर है वहाँ पे नेशनल पार्टी के. सो नवतेज रंधावा, हमने कल इलेक्शन स्पेशल में जो इनसे बातें की है, ये चीज़ को इन्होंने एड्रेस किया था जब हमने ये उनसे सवाल पूछा. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यू नो ऐसा प्रॉब्लम फेस होता है, 6 आवर 9

आवर्स हमें वेट करना पड़ता है. ये सारे सवाल एक्चुअली में कल उनसे पूछे गए थे जो आपने यहाँ पे जाहिर किए हैं बहुत बार, जो यहाँ पे मैसेजेस भी आए थे रिगार्डिंग. हमने इमिग्रेशन के बारे में भी सवाल पूछा, इमिग्रेशन वीज़ाज के बारे में, ये सब चीज़ें. सो उन्होंने इस काफ़ी सवालों के जवाब दिए हैं. तो आप ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, ऑर्डर रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा. यू कैन हेयर द फुल एपिसोड अगर आपने कल मिस आउट किया था.

और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट डीएलडी डिफर्ड. डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन. रजिस्टर नाउ. विजिट बिलकैप्स.com. प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स.

0: கால் கரோ 0800 ரச்சனா. தட்ஸ் 0800-722-462 ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் பயர்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ், பிசினஸ் லோன், கமர்ஷியல் லோன் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்.
1: कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. रिमेम्बर आज कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग वैदिक सेंटर पापाटोई में होने वाली है, तो आप भी वहाँ पे लाइव देखने के लिए ज़रूर पहुँच सकते हैं. मैं और रुजबे भी वहाँ पे शो के बाद पहुँचने वाले हैं. एंड आज ड्राइव शो में और भी बातें होंगी, और भी डिफरेंट टॉपिक्स आपके लिए हम लेके आएंगे. स्टे ट्यून. अगर किसी टॉपिक पे आप चर्चा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर बातें होनी चाहिए, पॉडकास्ट होना चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए, 5599 इज अ नंबर जहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं.

0: accurate traffic.
1: Step into Antarctica at Snow Planet.
2: Showers overnight, a low of 10 on the northern. Town to Silverdale taking 50 minutes on the northwestern to Massey, 24 minutes the southern. Very slow heading north from East Tamaki Road to Green Lane and south from Spaghetti Junction to Sylvia Park to Drury from Town 1R 23. Got reports of delays heading south through Waterview on the southwestern. Town to the airport, 34 minutes.
1: Explore a frozen world inspired by Antarctic research bases only at Snow Planet.
3: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
4: Raaz, romance, action or supernatural power se bhari kahani. A thrilling fantasy adventure. The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna.
5: This one ki kali shakti. Raat ke saaye se bhi kaale.
4: The One, releasing in cinemas on 25th September.
6: Ab mujhe dheere dheere samajh aa raha hai. Jo kuch bhi ho raha hai, sab ek number ki bakwaas.
4: Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
7: Hame mata ka bulava aaya hai.
8: This is Warehouse Country, where on your way home from work, school or wherever, you can top up on eggs, nature's fresh bread and milk at the best price in the country. From, well, the warehouse.
9: Their mum can't work out why they always eat so well at mine. Well, it's the Woolworths chicken schnitzel. Maybe one day I'll tell her. But for now, my kind of Woolies keeps that secret between us.
10: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
11: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
12: Get the kids creating these school holidays with free arts and crafts workshops at Warehouse Stationery. From making slime or clay craft to creating loom band jewellery, there's free fun for everyone these school holidays. Sign up now at warehousestationery.co.nz.
13: Time check.
14: Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 00010.
13: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 4. A World of Wearable Art event in Wellington has been cancelled tonight after the death of a crew member. Wellington City Council has confirmed the person suffered a fatal medical event, describing them as a loved and valued team member. It says they've made the difficult decision to cancel the Glow Show, but a taste of wow at the Intercontinental Wellington will still go ahead. Affected ticket holders will be contacted directly. Labor is accusing Christopher Luxon of being missing in action. The party says it's been 2 days since he was seen in public. Leader Chris Hipkins argues the Prime Minister should be fronting about recent controversies, such as a pause on council amalgamations.
16: His own government caused chaos, cancelling work that had been underway around local government reform that they had insisted on.
15: A prominent New Plymouth District Councillor will stand for New Zealand First. Murray Chong has been announced as a candidate. Original Wallace and Gromit stop-motion models have been sold at auction in London. The highest valued item was a villain, Feathers McGraw, which fetched more than 100,000 New Zealand dollars. The money will go towards funding opportunities for emerging filmmakers. To sport, Formula One star Lewis Hamilton has been handed a reprimand for impeding after a close call with Kiwi driver Liam Lawson. The final practice for the Azerbaijan Grand Prix is at 8:30 this evening. Motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty. And the second to last round of rugby's NPC continues this evening. None of Auckland's returning All Blacks are putting on the boots this weekend.
17: Sports
0: Breakfast News.
13: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: Feels like 15 degrees, barish ho sakti hai idhar udhar har jagah, aur overnight bhi kafi barish rehne wali hai. Kal ka din bhi mila jula sa rahega, barish hi hai kal ke pure din. 6:20 pe aaj hoga sunset and feels like 15 right now.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbain, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
13: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Drive Show with Sandy and Rusbain.
18: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
17: 4:03, you are listening to The Drive Show with Sandy and Rusbain. Good afternoon.
19: A very, very good afternoon to you. Drive Show aapke liye yahan pe shuru ho chuka hai. And yes, happy Friday, Rusbain.
17: Happy Friday. Aur ye Friday bahut special hai. Kyun maloom hai, Sandy, aapko?
19: Kyun?
17: Kyunki ye last Friday hai humara, ya last day hai, aaj humara working day, jahan pe hum jab kaam se bahar niklenge aur andhera hoga.
19: इसके बाद थोड़ी रोशनी हमें दिखाई देने वाली है।
17: इसके बाद मंडे से हम जब बाहर निकलेंगे तो बाहर रोशनी होगी हमारे लिए।
19: सो डेलाइट सेविंग शुरू हो रही है दिस संडे एट 2 AM एंड संडे 27 सितंबर 2 AM पे क्लॉक्स गो फॉरवर्ड 1 आवर।
17: मैंने अपेरेंटली सुना है सैंडी, आज ही सुना मैंने ये। ऐसा स्टैट है, स्टैट्स है, ऐसे है कि डेलाइट सेविंग ये जो है ना, इसके बाद वाला जो मंडे है उस दिन पे सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं।
19: ओके
17: पता नहीं
19: उसका कुछ रीजन है।
17: रीजन कि वो स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं ना, एक घंटे कम स्लीप हो जाती है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो ऐसा बोलते हैं। अभी मेरे को मालूम नहीं है कि ये मैंने आज ही सुना,
19: पर मंडे को काफी लोगों के पास एक्सक्यूजेस रहेंगे। ओ आज ऐसा क्यों फील हो रहा है, बिकॉज यार 1 आवर स्लीप नहीं मिली ना, 1 आवर स्लीप कम हो गई।
17: संडे को नहीं होगा ना?
19: हाँ नहीं, संडे को इट विल बी 2 AM पे 1 आवर आगे फॉरवर्ड जाएगी ना,
17: तो संडे को स्लीप नहीं मिलेगी ना।
19: मैं कहा मंडे को लोगों के पास ये हाँ
17: संडे
19: को स्लीप नहीं मिलेगी, इट्स नॉट संडे नाइट।
17: तो आप मंडे को ये रीजन नहीं दे सकते हो?
19: संडे या मैं नहीं देती हूँ। एनीवे गाइस, आप बताइए आपके घर पे क्लॉक है प्रॉपर, जो डिजिटल क्लॉक नहीं है जिसका टाइम आपको खुद चेंज करना पड़ेगा? किस किस के घर पे ऐसी क्लॉक है, वॉल क्लॉक या फिर यू नो काफी लोग अपने घर पे रखते हैं एंटीक क्लॉक्स भी रखते हैं।
17: मेरे घर पे तो है वॉल क्लॉक, तो उसको चेंज करना पड़ेगा।
19: हाँ, वो चेंज करनी पड़ेगी।
17: काफी लोगों की गाड़ियों की जो पुरानी मतलब थोड़ी गाड़ी है उसमें गाड़ियों को चेंज करना पड़ता है। अभी तो आजकल अपडेटेड गाड़ी आया ना, काफी लोगों की ऑटोमेटिक भी हो जाता है। आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक होता है कि चेंज?
19: ऑटोमेटिक
17: है ना, देखिए फैंसी गाड़ी है। सो या बेसिकली रिमाइंडर है कि चेंज कीजिए, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट रिमाइंडर आज आपको लगाना है, शाम 6 बजे का रिमाइंडर।
19: या 6 बजे बहुत ही डिफरेंट ट्रेंड मेकर्स आपके लिए रहने वाला है। एंड बार बार जो हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट ट्रेंड मेकर्स है, तो आप सुन के देखिएगा, इट्स गोना बी टोटल डिफरेंट फील। बहुत कम होता है कि आर्टिस्ट स्टूडियो में आके अपने ट्रैक्स के ऊपर लाइव सिंगिंग करेंगे, सो ऐसा ही आज कुछ होने वाला है। So make sure कि 6 बजे आप जरूर यहाँ पे सुन रहे हैं, Shirley Sethia will be here.
17: Drive in concert आज 6 से 7 के बीच आपके लिए यहाँ पे होने वाला है। Shirley Sethia live यहाँ पे perform करने वाली है and it is going to be epic, it's going to be amazing. उनके साथ हमने एक podcast भी record किया है जिसके बारे में details और हम आप तक पहुँचाएंगे in the coming days. But yeah, आज 6 से 7 it's going to be class. You have to tune in. और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपके साथ।
19: इलेक्शंस को लेके हमने कल जो एपिसोड रिकॉर्ड किया था नेशनल पार्टी के नतेज रंधावा के साथ, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी इमिग्रेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके और भी बहुत कुछ, एक्चुअली में पॉलिसीज़ को लेके उनके साथ डिस्कशंस हुई थी। फ्यूचर ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कशन हुई थी। अगर आपने मिस आउट किया है, आप ड्राइव लेके भेजिए 5599 पर, आपको एपिसोड मिल जाएगा।

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, Papa To Band Bajaye. ये गाना आप सुन रहे थे अभी यहाँ पे. वैसे आपके लिए एक important हम message लेकर आए हैं. And this is a very important message. आप speaker का volume थोड़ा loud कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको कान खोल कर सुनना है.
1: कान खोल के.
0: या बताओ सैंडी, क्या बता रहे हो आप यार? बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने देखो इतना अच्छा प्रीसेट कर लिया.
1: हाँ, सबसे पहले तो ट्रिप के बारे में बताओ जो हम तो ईस्टर वीकेंड पे करने वाले हैं.
0: दैट इज द इम्पोर्टेंट वन. सबसे पहले नहीं, वो ही है इम्पोर्टेंट. तो आपको अपडेट देना चाह रहे हैं हम ट्रिप पे जा रहे हैं ईस्टर पे. बाली और बैंकॉक हम जा रहे हैं.
1: सो टू कंट्रीज और एक एपिक एडवेंचर हम करने वाले हैं. सो मैं और रुजबे तो जाने ही वाले हैं, हमारे साथ कुछ लिसनर्स जाने वाले हैं. फ्यू सीट्स बाकी है जो आप बुक कर सकते हैं हमारे साथ. सो इट्स गोना बी एडवेंचरस ट्रिप, मैं कह सकती हूँ, जिसमें कि एवरी थिंग इज पैकेज्ड.
0: सब कुछ पेड फॉर है.
1: या सब कुछ पेड फॉर है, जिसमें आपकी फ्लाइट टिकट्स, मतलब यू हैव टू बाय द पैकेज, आपकी फ्लाइट टिकट यहाँ से बैंकॉक, यहाँ से
0: बाली
1: टू बैंकॉक टू ऑकलैंड वापस. ईस्टर वीकेंड के अराउंड ये नेक्स्ट ईयर रहने वाला है, 23rd मार्च से लेके 2nd अप्रैल तक. एंड उस समय की जितनी भी अकोमोडेशन है वो भी इस पैकेज में है, वो भी 4 to 5 star अकोमोडेशन है. तीनों टाइम का खाना भी इस पैकेज में है. प्लस वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो होने वाली है, चाहे वो बाली में स्विंग है जो बाकी चीज़ें हैं घूमने फिरने की, या फिर क्रूज़ भी वहाँ पे, खाना भी होने वाला है, बहुत कुछ. सो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है. तो ये पैकेज डील जो है ये आप खरीद सकते हैं. इफ़ यू वर थिंकिंग कि भाई बहुत समय हो चुका है, हॉलीडे पे नहीं गए हैं, मुझे लगता है ये परफेक्ट पैकेज डील आपके लिए रहने वाली है. इनफैक्ट सन टूर्स ने क्या किया है ना रुजबे, इन्होंने बहुत अच्छा किया है. इन्होंने दिवाली ऑफर दिए है अभी.
0: ओ, दिवाली ऑफर भी है.
1: दिवाली ऑफर दिया है. सो दिवाली तक अगर आप बुकिंग करते हैं या उससे पहले अगर आप बुकिंग करते हैं, आज से शुरू हो गए, तो आपको मिल सकता है 2-night 3-day क्रूज पैकेज ऑफ कार्निवल क्रूज, विच इज़ वैलिड फॉर 1 year. एंड किसी के लिए भी ये ट्रांसफरेबल है. ये कार्निवल क्रूज होने वाला है 2 nights 3 days का. तो ये बिल्कुल फ्री आपको साथ में मिलने वाला है.
0: ये तो ऐसा हो गया कि
1: यू डोंट हैव टू पे फॉर दिस.
0: एक तीर दो निशान, मतलब अगर आपको भेजना है आपके बच्चों को तो बच्चों को भेजिए और फिर खुद क्रूज पे जाइए, या फिर आप हमारे साथ चलिए.
1: ट्रांसफरेबल है ना. इसको आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, एनीथिंग. सो ये किसी को गिफ्ट भी हो सकता है ना, क्योंकि ट्रांसफरेबल है. आप अपने फैमिली में किसी को दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. मोर डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हम एक चाय पे चर्चा करने वाले हैं. तो इफ़ यू वांट टू बी देयर, आपको स्नैक्स प्रोवाइड किए जाएंगे चाय के साथ. सो इफ़ यू वांट टू बी देयर, डिस्कस अबाउट दिस ट्रिप कि वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, कैसे आपकी जो मनी है वो इस ट्रिप में वर्थ होने वाली है. बिकॉज़ क्या होता है ना, जब बोलते हैं तो आपको इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आपके साथ हम डिटेल्स में सब कुछ शेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा आपकी मनी कहाँ कहाँ पे इस पैकेज में जाने वाली है, क्या क्या वहाँ पे होने वाला है. सो या ये हम चाय पे चर्चा करने वाले हैं मेरे और रुजबे के साथ. अगर अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं यहीं पर ऑकलैंड में ये चाय पे चर्चा, तो आपको करना क्या है, विच इज़ फ्री टू अटेंड, कोई टिकट नहीं है. इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ट्रिप, तो हमने एक कीवर्ड थोड़ा चेंज किया है, ट्रिप TRIP, ट्रिप लिख के भेजना है 5599 पर, और आपको ऑटो रिप्लाई में लिंक मिलेगा जो आपको फिल करना है. अदरवाइज ट्रिप लिख के सिंपल आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड, वी विल कॉन्टैक्ट यू. तो या ट्रिप इज अ कीवर्ड, फॉर्म फिल कर देंगे तो आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी.
0: तो फटाफट भेजिए, यहाँ पे 5599 इज द नंबर टू सेंड द मैसेज, सेंड द मैसेज एंड जॉइन अस फॉर चाय पे चर्चा, जहाँ पे हम आपको और भी इन्फॉर्मेशन देंगे ट्रिप के बारे में. हम और भी आपके साथ बातें करेंगे वहाँ पे कि क्या एक्सपेक्टेड है, और हमारे पास भी काफी सवाल है अनिल भाटिया के लिए, तो हम उनको वो सवाल
1: पूछेंगे ना
0: हम
1: वहाँ पे
0: जी, और उनको पूछेंगे कि भाई ये इसमें क्या होने वाला है, वहाँ क्या होने वाला है, एंड फिर उस हिसाब से हम लोग पूरा हमारा आइटनरी प्लान आउट कर लेंगे कि हम मस्ती क्या करने वाले हैं, कौन से जगह पे. क्योंकि हमें वो प्लान करना बहुत जरूरी है ना,
1: कि किधर कौन से
0: क्या एक्टिविटीज, क्या कॉम्पिटिशंस, क्या मस्ती, किधर क्या होने वाला है, ये सब पहले से ही प्री प्लान करेंगे हम लोग.
1: सो दिस इज लाइक अ गाइडेड टूर फॉर यू. जितना भी है ये टूर गाइडेड टूर रहेगा, लेकिन बीच में मतलब आपको अपना टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसा टाइम भी मिलने वाला है. ऐसा नहीं है यू ऑलवेज हैव टू स्टिक टुगेदर, ऐसा नहीं है. यू कैन स्पेंड योर ओन टाइम एज वेल बीच में. तो या आपको अगर इस ट्रिप के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत अच्छी डील है गाइज, ट्रिप लिख के भेजिए 5599 पर एंड जस्ट फिल द फॉर्म एंड हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे एंड देन लेट्स कैच अप.

0: क्या बात है यार, इस्माइल लांगा ग्रुप से आप सुन रहे थे ये बहुत ही बढ़िया सा गाना जो रिक्रिएटेड है और अपना ही एक अंदाज है उसमें, फॉर हिप्स डोंट लाई एंड मोरूडा का मैशअप.
1: या
0: नाइस,
1: तो कॉम्बिनेशन है इसमें. काफी लोगों ने यहाँ पे ट्रिप मैसेज किया है, तो आप भी अगर बाली बैंकॉक की ट्रिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं इसके रिलेटेड, तो ट्रिप लेके भेजिए 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में आपको फॉर्म मिल जाएगा जो आपको फिल करना है. एंड वैसे आज फिरजी कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग जो है ये वैदिक सेंटर में होने वाली है. महरूज में भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो आप भी वहाँ पर ज़रूर पहुँचेगा. इसी के साथ रुजबे सैटरडे यानी कि कल एक बहुत ही बड़ा दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो होने वाला है. एंड अगर आप हाई रिटर्न प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं ज़ीरो टैक्स के साथ, तो इस एक्सपो में आप जा सकते हैं जो कि 26 एंड 27 को होने वाला है, 10 AM टू 8 PM JW मैरियट में इन ऑकलैंड, जहाँ पे डेवलपर से भी आप मिल सकते हैं एंड आपका 1-to-1 कंसल्टेशन भी हो सकता है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट buildcaps.com या हमारी टीम को मिलेगा. कशिका विल बी देयर 10 AM ऑनवर्ड्स कल सैटरडे को.
0: वैसे पैसों की अगर हम बात कर रहे हैं, एक फ्रॉड हुआ है, 2.2 मिलियन, ऑलमोस्ट 2 मिलियन के ऊपर वर्थ के आइटम्स जो है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये एलिजली डिसऑनेस्टली ऑप्टेन किए एक एम्प्लॉय ने ऑफ अ मेजर न्यूजीलैंड कंपनी.
1: Oh my God.
0: 39-year-old ये मैन है और नियरली अ ईयर लॉन्ग पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसके ऊपर हो रहा है और कंपनी ने जो है वो क्लेम डाला है कि 2,225,436 इस बंदे ने गायब किए हैं कंपनी से.
1: Oh my God, that's quite a number यार. उसने किया
0: लार्ज स्केल फ्रॉड में माना जा रहा है ये.
1: और कैसे किया, क्या किया, ये, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या?
0: ये हुआ है 2017 से लेकर 2025 के बीच.
1: वाओ,
0: तो मतलब काफी टाइम.
1: धीरे धीरे
0: होले होले होले
1: क्या स्कैमर यार, इतना बड़ा घपला
0: क्या भी. और वैसे जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स देखे स्टफ ने, उसमें द मैन इज आल्सो चार्ज्ड विद ऑब्टेनिंग 28,520 फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी.
1: ओके,
0: तो दूसरे कंपनी से भी उन्होंने पैसे लिए हैं. वो फेक इनवॉइस बना के ऐसे कुछ किया होगा वो चीज में. या तो अभी
1: ऐसा भी होता है,
0: नेम सप्रेशन है तो इसलिए नाम नहीं पता कौन किसने क्या किया है, कंपनी का भी नेम सप्रेशन है इसमें. लेकिन 2.2 मिलियन वर्थ के आइटम्स चोरी किए गए हैं मेजर न्यूजीलैंड कंपनी से. अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ इसके ऊपर. देखो ये एक्सट्रीम है, ठीक है, लेकिन क्या आपने आपके वर्कप्लेस से कभी कुछ ऐसे उठाया है? एंड इट कुड बी एज लिटिल एज अ पेन और अ स्टेपलर या कोई फाइल या तो कुछ, यू नो, कुछ भी हो सकता है ऐसा
1: उठाया है.
0: हाँ यार, मतलब अभी देखो
1: मेरे को लगता है आई विल बी गिल्टी ऑफ स्टेपलर.
0: स्टेपलर आपने लिया है?
1: या स्टेपलर से मैं गिल्टी होंगी.
0: या और मेरे को लगता है मैं गिल्टी रहूंगा फॉर प्रिंटआउट्स.
1: प्रिंटआउट्स तो वो तो हम लेते हैं ना, प्रिंटआउट तो यहाँ पे.
0: हाँ लेकिन पर्सनल इसके लिए अगर ले रहे समझो, वैसे बोल रहा हूँ मैं, तो प्रिंटआउट्स के लिए तो डेफिनेटली मैं गिल्टी रहूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो भी कॉस्टी है ना कंपनी के लिए.
1: 100% आई एग्री.
0: जो मेरी जेब में गया वो मेरा हो गया, बात खत्म.
1: पेन मेरे को लगता है कि बहुत ही फ्रीक्वेंट होता होगा.
0: पेन तो यार मेरे को लगता है कि वो तो मेरे को लगता है कंपनी कंसीडर भी नहीं करती होगी.
1: लेकिन स्टिल कंपनी की छोटी कॉस्ट से है तो है ना.
0: हो सकता है पेन से ज्यादा महंगा वो मार्कर होते हैं ना, जो मार्कर्स.
1: ओ यार,
0: मार्कर्स भी काफी बार बहुत अच्छे होते हैं, कुछ क्वालिटी के होते
1: हैं. मतलब तुमने उठाया है क्या?
0: नहीं मैं, लेकिन मैं अपने बैग में एक रखता हूँ, बट दैट इज फॉर वर्क पर्पस.
1: क्योंकि हाँ, मैं मार्कर्स को वैसे जरूरत नहीं है ना,
0: क्योंकि मैं घर से अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे अगर यूज करना है मार्कर घर पे कोई ये करने के लिए, तो मैं वो तो काम के लिए यूज कर रहा हूँ ना. आई डोंट थिंक दैट इज कंसिडर्ड टू बी थेफ्ट. बट 0800-004-866, व्हाट डू यू थिंक आपके कलीग ने, आपके दोस्त ने या आपने ऐसा कुछ ऐसे उठाया है जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा हो गया?
1: कुछ ऐसा भारी उठाया है।
0: हाँ, कुछ ऐसा भारी उठा लिया जैसे कि पीएस वीएस वहां पे पड़ा था और उठा लिया पीएस के, अभी मैं घर पे जाके खेलूंगा इसको। मेरे मन में बहुत बार हुआ ऐसा, पीएस पड़ा है एक हमारे यहाँ पे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इसको उठा लेता हूँ मैं, किसको पता चलने वाला है। स्कूल हॉलीडेज के टाइम पे आके रख लूंगा, क्योंकि बच्चों के लिए होता है वो मेनली।
1: बट So, आपने कभी ये किया है तो बता सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा, बिना नाम बताए एक्चुअली कर सकते हैं,
0: बिना नाम बताए अनोनिमस होके बताइए, 0800
1: या फिर अपने फ्रेंड की कहानी बता सकते हैं।
0: फ्रेंड की कहानी वो सेफ रहता है।
1: तुम्हारे फ्रेंड ने और क्या कभी कुछ उठाया है कैसा?
0: मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं खुद के नाम पे लेके बोलूंगा। मैंने वो किया है, फाइलिंग वाला सिस्टम मैंने यूज किया है यहाँ पे मीडिया वर्क्स में, यूज किया मैं बोलूंगा ऑनेस्टली।
1: फाइलिंग वाला सिस्टम,
0: अरे यार वो होता है ना, वो स्प्रिंग फाइल बनाते हैं उसका, वो जो किया था।
1: हाय
2: हाय रुतबे, हाय सैंडी, गौरव दिस साइड।
0: ये गौरव बोलो,
1: बताइए गौरव।
2: देखो ऑफिस का तो नहीं, पर मेरे स्कूल में था, इंडिया के अंदर हम गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो वहां पे यही होता था कि भाई जो हमें दिखता था वो हमारा हो गया।
0: वाओ।
2: तो मेरा एक फ्रेंड था केमिस्ट्री लैब, हम 11th में थे, केमिस्ट्री लैब में थे, तो फर्स्ट डे था हमारा वहाँ पे, तो हमें दिखा वहाँ पे H2SO4।
0: H2SO4 तुमने तुम्हारी जेब में डाला?
2: उठा के ले गया।
0: क्या बात कर रहे हो, वो तो H2SO4 बाज भी मारता है ना। ओह माय गॉड,
2: हमारे ना जो ट्यूबलाइट थी उसके ऊपर एक शेड सा था, उसपे ना कबूतर आके अंडे देता था।
1: ओके।
2: तो उसने क्लोरोफॉर्म उठाया, एक उसमें रुमाल होता है हैंडकरचीफ, उसमें डाला और वहाँ पे ऊपर फेंक दिया ताकि कबूतर बेहोश हो जाए,
0: अरे रे,
2: ताकि वो उसके अंडे निकाल दे। अरे
0: वाह,
2: दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत कांडी है। तो
0: वो सक्सेसफुल हुआ? हाँ, काम हुआ कि नहीं? अभी वी आर इन्वेस्टेड।
2: हाँ हो गया, उसने अंडे बना के खाए।
0: छी, सीरियसली?
2: वो भी केमिस्ट्री लैब में।
1: Oh, wow.
0: Oh, my God. क्यों हमने पूछा? पिजन के अंडे खाए उसने?
2: हाँ हाँ, अरे उसके पापा पुलिस में थे, तो वो ना वो जंगली बच्चे होते ना वैसे परवरिश हुई थी उनकी।
0: बापरे,
1: कितने भी जंगली हो जाओ लेकिन यार फिर भी
0: मतलब यार ये चीज तो आई थिंक हैज बीटन कौवा बिरयानी आल्सो। मतलब कौवा बिरयानी इज द वर्स्ट दैट आई हैड हर्ड ऑफ, बट ये पिजन के अंडे का ऑमलेट, उफ, आई एम टर्निंग वेजिटेरियन। या गौरव, थैंक्स सो मच फॉर शेयरिंग।
1: थैंक यू गौरव,
0: बाय बाय। और अभी आप मैसेज करके बता सकते हो, 5599 इज द नंबर फॉर यू टू मैसेज।
3: आर यू रेडी? चैट बस्टर्स,
4: थोड़ा सा हॉल बना दे।
3: ब्रॉट टू यू बाय लाइफस्टाइल फर्नीचर, मानुको, माउंट वेलिंगटन एंड वेस्टगेट, अप टू 60% ऑफ।

0: Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku. Hum, accurate traffic.
1: Fresh savings from Bargain Chemist.
2: Showers overnight and a low of 10. The northern's heavy in both directions between Esmond and the Harbour Bridge and heading north through Albany. On the southern, town to Monaco, 48 minutes dreary, 1 hour 18. It's heavy heading north from Reagan Road to Green Lane, south from Spaghetti Junction to Orams Road, southwest and heavy in both directions between Mangere Bridge and Puhinui Road, all trains running on time.
1: Find fresh savings across health, beauty, baby, personal care and more, all at Bargain Chemist.
3: Professional financials hai saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
4: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
3: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
4: Professional financial solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
5: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex pumped, plus more on Super Pump Day. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
6: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
7: It's the final days of Big Save's Big Spring Sale. We need to clear $20 million worth of sofas, recliners, beds, bunks, sofa beds, dining and bedroom furniture. Get 50% off selected sofas. Yes, 50% off. King beds from only $999. And get two recliners for only $699. Plus, 36 months interest-free store-wide. TCs and credit criteria apply. Only at Big Save.
8: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Vitapet Morsum's Dog Treats 300 to 350 gram, just $12.99 each. And Purina One Cat Food 1.4 to 1.5 kg or Dog Food 2.5 kg, just $18.69 each. T's and C's apply.
9: Spruce your backyard for spring, trade tested. Smash the winter grime with a Karcher water blaster. Get a Hyundai chipper in to shred the branches or deal to the weeds with a fancy Greenworks electric garden sprayer. Be first up, best dressed this spring at trade tested.
10: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
11: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
12: Let's go.
11: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
13: एक चीज तो क्लियर हो गई सैंडी, हमारे जो लिसनर्स हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार एंड एथिकल है. क्योंकि वो उन्होंने कभी अपने ऑफिस से ऐसी कोई भी चीज नहीं उठाई है
14: या फिर कन्फेस नहीं करना
13: फॉर देयर पर्सनल यूज.
14: Yeah.
13: कोई भी ऐसी चीज अगर आपने उठाई है फॉर योर पर्सनल यूज फ्रॉम ऑफिस तो आप यहाँ पे शेयर करते थे कर सकते हो ऐसे हमने कहा था. एंड या वी हैवंट हैड एनीवन शेयर देयर स्टोरी ओवर हियर.
14: किसी ने शेयर
13: तो
14: नहीं
13: मतलब
14: किया
13: है ही नहीं ना, मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं ना कि कोई किसी ने किया ही नहीं है वो. आप और मैं ही हूँ जो ऐसे करते हैं. मैंने एक और चीज यूज की है पर्सनल इसके लिए. मीडिया वर्क्स में ना एक जगह पे ना ऐसे थैंक यू कार्ड्स आते थे. थैंक यू कार्ड होते थे. तो एक थैंक यू कार्ड मैंने यूज किया. अल्लाह आ गया एक मैसेज फाइनली. मैंने थैंक यू कार्ड भी यूज किए.
14: लैपटॉप चार्जर,
13: दैट्स अ गुड वन.
14: या लैपटॉप चार्जर तो भाई बहुत भारी चीज है.
13: होता है
14: या जो आपने लेके
13: मेरे मेरे मेरे काम पे से मेरा मोबाइल चार्जर घूम गया था
14: मोबाइल चार्जर घूम गया था। हाँ, घूमी तो मेरी भी चीजें हैं, वो तो ऐसा नहीं है।
13: हाँ, मतलब वो किसी और ने तो मारी होगी ना, वो घूमी मतलब
14: घूम गई, मतलब मुझसे तो घूमी ना।
13: बट मेरे को लगता है कि इसमें वो होता है ना, फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स। अगर
14: मतलब
13: अगर हम लापरवाह है अपनी चीजों को लेकर, तो जिसके हाथ लगी है फिर वो उसका। Like there's two school of thoughts for there. But anyway, आप यहाँ पे मैसेज करके हमें बता सकते हो। But anyway, हमारा जो इलेक्शन स्पेशल एपिसोड है, एपिसोड 2, जहाँ पे हमने नवतेज रंधावा के साथ बात की अबाउट इमिग्रेशन, हेल्थ केयर और न्यूजीलैंड का भविष्य, वो अब लाइव आ गया है आपके लिए। आपको ड्राइव लिख कर भेजना है 5599 पे एंड यू विल गेट द मैसेज,
14: फुल एपिसोड आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हमने कल नवतेज रंधावा से अबाउट इमिग्रेशन, हेल्थ केयर और भी ढेर सारी हमने डिस्कशन की थी। पॉलिसीज के बारे में भी एक्चुअली में हमने डिस्कशन की थी। वर्क फोर्स में जो चैलेंजेस है इस समय पर, यू नो आज ही आर्टिकल आया कि काफ़ी ओपनिंग्स जो है ये होने वाली है, और ये अभी हुआ नहीं है लेकिन नेक्स्ट ईयर से इसको कंसिडर किया जाने वाला है, तो ये आर्टिकल भी आज वैसे आया था। सो या ये फुल एपिसोड आप जरूर सुनिएगा।
13: हाँ, ये एपिसोड आप सुनिएगा। बट एक मैसेज आया यहाँ पे और इनका जेन्युइन कंसर्न है। इन्होंने कहा है कि सॉरी, आई यूज अ लॉट फ्रॉम ऑफिस बट आई वोंट एडमिट ओवर रेडियो, माई बॉस ऑल्सो लिसन्स टू
14: ऑब्वियसली। अब समझ में आ रहा है लोग कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
13: That's okay, that's okay.
14: सबको बोलेंगे अरे कटेगा तुमसे तुम्हारी तनख्वाह में कटेगा सब।
13: नहीं नहीं, वो बॉस को रियलाइज भी नहीं हुआ रहेगा। लाइक मेरे को मालूम है, मेरा एक दोस्त है वो ऐसा करता था पहले, ठीक है। फ्राइडे ड्रिंक्स होते हैं ना, काफी कामों पे ड्रिंक्स होते हैं फ्राइडे को, शाम को, दोपहर को, जो भी है, तो वहाँ पे ना चिप्स के पैकेट्स उनको देते हैं। तो वहाँ से चिप्स के पैकेट्स लेकर आता था, बोलता ये फ्लेवर बहुत बढ़िया है, ये मेरे को ट्राई करना है घर पे। तो वो चिप्स के पैकेट लेकर आता था।
14: ओके,
13: क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो?
14: नहीं, चिप्स के पैकेट ही थे ना, तो
13: हाँ चिप्स के पैकेट,
14: हाँ
13: नॉर्मल पैकेट्स चिप्स के ना, बट वो वहाँ पे खोल के खाने के लिए थे। और वो घर पे लेकर आता था कि नहीं मैं घर पे खाऊंगा।
14: और ऐसा लेकिन अलाउड होना चाहिए ना, कि अगर आपको टेस्ट करना है तो आप घर पे जाकर टेस्ट करो।
13: थोड़े बेनिफिट्स तो होने चाहिए ना काम पे। और आपने और क्या चीज़?

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज ठीक है, थोड़ी बारिश होने की संभावना है और कल भी बारिश रहने वाली है। वैसे ये पूरे वीकेंड पे इट्स लुकिंग क्वाइट सैड, बट एनीवे होपफुली वेदर ओपन्स अप। आज सनसेट होगा 6:20 पे।
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
3: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbe.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
1: 5:00 हैं और Power Drive at 5 आपके लिए यहाँ पे शुरू हो गया है। Good evening, hi Sandy.
5: A very very good evening. कैसे हो तुम रुसबे?
1: 25/9/26 आज की डेट है। मैं ठीक हूँ। आज फ्राइडे and looking forward to the weekend. क्या प्लान है आपका वीकेंड का?
5: वीकेंड का वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा भीगा सा वीकेंड है, बट लेट्स सी क्या होता है।
1: अच्छा,
5: या
1: हाँ, थोड़े बहुत कमिटमेंट्स तो है वीकेंड के जिनको पूरे करने हैं। बिजी होने वाले हैं, मेरे को लग रहा है
5: बिजी होने वाले हैं। यस, मेरे को लगता है कि वन ऑफ द डे गोना बी क्वाइट पैक्ड।
1: जी, एनीवे आपके क्या प्लान है दिवाली की? आपकी शॉपिंग और तैयारियां शुरू हो गई है अब तक कि नहीं? क्योंकि काफी लोग अभी उसकी तैयारियों में भी लग जाएंगे ना।
5: दिवाली की काफ़ी लोग ऑलरेडी तैयारी करना शुरू हो चुके हैं, सो बताइएगा हाउ इज़ इट गोइंग विद यू। दिवाली की तैयारियां आपने शुरू करनी की है? तैयारी तो बाद में होती है, पहले सफाई होती है।
1: अरे सफाई,
5: सो मेन काम है सफाई। पहले सफाई होती है, घर पे जितना एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल के फेंको। क्लटर जो होता है उस समय पर निकाल के फेंकना होता है।
1: मेरे को वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, मुझे लग रहा है।
5: मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं हमेशा क्लटर फेंकने के उसमें रहती हूँ कि बहाना मिल गया, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, और मेरे को एक्सक्यूज़ मिल जाता है घर पे बोलने के लिए कि देखो इस टाइम के लिए अच्छा नहीं होता है तो इसको फेंक ही देते हैं, इतना क्लटर इकट्ठा करना।
1: तो आप निकालते रहते हो क्लटर पूरा?
5: मुझे नहीं पसंद है, मुझे मतलब आई लाइक टू वो क्लटर निकालना।
1: वेरी गुड यार, वेरी इंपॉर्टेंट।
5: मेरे को बहुत मिनिमम चीज़ें चाहिए होती है कि अगर वो काम की नई चीज़ है, किसी के और के भी काम की नहीं है, तो निकाल दो, या तो दे दो किसी को जिसके काम आ जाए या निकाल दो।
1: या आई थिंक इट्स अ गुड अप्रोच। मेरे से नहीं होता है
5: वो, तो पड़ा रहती है चीजें यार।
1: आई एम अ होल्डर, मैं निकाल ही नहीं पाता हूँ चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये क्यों, ये बाद में इस यहाँ पे यूज हो जाएगा।
5: इज इट अ मेल थिंग? आई डोंट नो, मैं पूछना चाहती हूँ 0800 00 हम पर, डू यू थिंक दिस इज अ मेल थिंग घर पे चीजें इकट्ठी करना की यार ये एक दिन काम आ जाएगी, एक दिन काम आ जाएगी ये चीज़, ये मेल थिंग है या ये न्यूट्रल, मतलब ऐसा नहीं है, यूनिक थिंग है? आई डोंट नो, मैं जस्ट फिगर आउट कर रही हूँ।
1: आप बताइए, आप शेयर कीजिए। इफ लाइक यू नो, आई थिंक यू नो दिस क्वेश्चन व्हेन यू आस्क इज दिस अ मेल थिंग, दैट मींस यू आर इनवाइटिंग लेडीज टू गिव अ कॉल ओवर हियर, फीमेल्स टू गिव अ कॉल, जो बोलेंगे हाँ मेरा पति भी यही करता है, मेरा पति वो करता है। तो या ओके, कॉल इन, शेयर, डू यू थिंक इट्स अ मेल थिंग? मे बी इट्स ऑल्सो एन इन्विटेशन फॉर some of the men to give us a call over here and say नहीं नहीं मेरी बीवी ऐसा करती है।
5: You never know, इसलिए मैं figure out करना चाहती हूँ कि is it a male thing or do you think कि नहीं दोनों करते हैं ऐसा, depend करता है। तो बताइए, call कीजिए 0800 00 हम पर, ये बताइए कि आपके घर पे holder कौन है?
1: Who's the holder at your house? कि क्या आप
5: जिसको चीजें रखनी है,
1: हाँ जिसको रखनी है, या फिर एक ऐसे भी होते हैं उसमें भी एकदम opposite वाले भी होते हैं ना, जो बोलते हैं कि हर एक चीज निकालो, फिर वो जो दूसरे पार्टनर होते हैं वो बोलते हैं कि अरे ये मेरे को चाहिए था बट हो गया,
5: सब निकाल दिया,
1: सब निकाल दिया। सो या आप शेयर कीजिए यहाँ पे 0800 00 4866 नंबर है यहाँ पे कॉल करने का, कॉल लगाइए और या फिर मैसेज कर सकते हो आप 5599 पे। वेल व्हेन यू गिव अस अ कॉल ओवर हियर यू डोंट हैव टू टेल योर नेम बिकॉज यू कैन बी एनोनिमस एज वेल, सो फील फ्री टू गिव अस अ कॉल। वेल हमारे साथ यहाँ पे कोई जुड़ना चाह रहे हैं तो गाना भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इनसे बात कर ले। हाय
6: हेलो
1: जी, क्या नाम है? अगर नाम शेयर करना चाहते हो तो.
6: लता है.
1: हाँ जी लता, बोलिए
5: जी, बताइए लता.
6: मेरे ख्याल से डिपेंड्स करता है, सम प्लेसेस मेन करते हैं, बट बेसिकली अबाउट 80% लेडीज करते हैं.
1: 80% लेडीज करते बोलते हैं आप बोल रहे
6: जी?
1: 80% लेडीज करती है आप बोल रहे हो?
5: लेडीज करती है ऐसा?
6: हाँ लेडीज करती है. दे वो सोचती है इसको बटोर के रखो, कहीं ना कहीं उसको यूज हो ही जाएगा.
5: वाओ, ओके.
6: सम प्लेसेस इट डज, वो कहीं पे वो इस्तेमाल हो ही जाता है पुराने सामान को.
1: मेरे को लगता है लेडीज बहुत बार वो पुराने कपड़ों के साथ भी ऐसे करती है ना कि यार ये कपड़े को हम यूज करेंगे पोछे के लिए या फिर उसके लिए.
5: वो तो रीयूज हो गया ना.
1: मैं भी
6: कोई सामान होता है कुछ भी तो वो संभाल के रखते, बोलता कुछ नहीं तो उसमें से कुछ ना कुछ सामान यूज हो जाएगा. एग्जाम्पल अगर ले लो तो स्क्रू कहीं पे नीडेड है, बोलेगी ओ स्क्रू रखा हुआ है, ट्राई देयर फिट इट.
5: हाँ. ये भी सही है.
1: स्क्रू वाला मेरे को लग रहा है कि मेन ज्यादा होते हैं ना कि यार ये स्क्रू यहाँ पे फिट कर देंगे हम लोग, इसको ये यूज हो जाएगा. और
6: मेन लोग सीधा जाते हैं बनिंग्स और माइथेटेड. They won't look behind though, कि सही देखो कहीं पड़ा तो नहीं है, वो ही साइज हो व्हाटएवर.
1: That's right. Yeah. Yeah. Cool. Awesome, yeah, Lata. Thank you so much for sharing.
5: Thank you, Lata, for sharing.
6: Thank you very much.
1: Thank you. मैसेज आया यहाँ पे, एक कॉल भी आ रहा है, इनसे भी बात कर लेते. हाय.
7: Hi, hi, Rosie. I think it's my first ever call to you guys. So, what an interesting topic.
1: Wow, क्या बात है? क्या नाम है आपका?
7: Rosie, I'm Rajesh.
1: Okay.
7: And yeah, I'm not of your age group. So, मैं सुनता रहता हूँ आप लोगों को, but yeah, I keep on enjoying. I'm driving right now as well.
5: Very perfect.
7: So, yeah, but this is a very interesting topic, Sandy ji.
5: तो आप आप holder हैं क्या?
7: Yes. I am with Rusbe 100%, you know.
1: यार नहीं होता ना.
7: This is my wife's job, you know.
5: Yeah.
1: ऐसा मन नहीं करता है, ऐसे हमें लगता है कि emotionally attach हो गए हम लोग वो चीज के साथ, ऐसे मन ही नहीं करता है.
7: I can't even throw, you know, old greeting cards and everything, they are lying around with me.
5: Greeting cards तो चलो sentimental हो गया ना.
1: Yeah, but
7: sentimental को छोड़ो. I've got now cassettes, you know, जो कि मैं बजाता नहीं हूँ, but I don't want to throw because that's my music.
1: Yeah, 100%. और वो फेंकना भी मत कभी.
7: I've got CDs.
1: उसका सर.
7: I've got CDs. I've got cassette players. You know, and my wife says, कौन सुनेगा इनको? मैंने कहा अभी जब तक मैं हूँ around तो I might say, listen, but if I don't, I can't throw it. Antique. It goes with my grave, you know.
1: It's antique value also, ना.
5: Yeah.
7: Absolutely.
5: अच्छा आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो काम की नहीं है?
7: बहुत कुछ होगा.
5: बहुत कुछ होगा.
1: होल्डर है वो ना.
7: यू नो
5: कहाँ है गैराज है कि क्या है, कौन सी जगह है जहाँ पे सब खजाना है?
7: खजाना तो यू नो आई टेल माय वाइफ नॉट टू टच माय ड्रॉर्स.
5: ओह वाओ,
7: दैट इज आउट ऑफ बाउंड्स बिकॉज़ वो तो उसमें उथल पुथल कर देगी तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं. शी विल जस्ट क्लीन इट सो मच दैट आई वोंट फाइंड एनीथिंग.
1: या
7: सो या I think it's a man thing. We can't generalize in saying, you know, it's a man thing or it's a woman thing. It's quite individual, you know.
5: Yeah.
7: Women can be very possessive about things and not throw about, but
1: sometimes
7: we can't generalize, but yeah.
5: Depend karta
1: hai. Sometimes women also get too emotional about certain things and they don't want to discard it. They are like, nahi ye to mere ko chahiye. मैं यूज करूंगी इसको बाद में कभी.
5: एक दिन काम आएगी ये चीज. एक दिन
7: नहीं, मेरे वाइफ का सीधा फंडा है, कहती है शी विल कम टू माय वार्डरोब. यू हैवंट वोर्न दिस फॉर अ ईयर एंड प्लस, यू नो यू आर नॉट गोइंग टू वेयर इट, सो व्हाई डोंट यू गिव इट टू सम ऑफ देम. आई सेड नो, आई एम ट्राइंग टू यू नो
1: लूज वेट
7: इनटू देम अगेन.
5: वो जो हैंगर पे है ना वो आपके लिए मोटिवेशन है कि एक दिन आपको इसमें फिट होना है.
1: या मेरा भी वही होता है, मतलब ये मोटिवेशन है, ये रहने दो.
7: बिल्कुल, मैं मोटा तो हूँ पर मोटिवेशन कम होती है.
1: राजेश, यू शुड कॉल, यू शुड कॉल,
7: बट स्टिल यू नो दैट एक्स्ट्रा इंच यू नो स्टॉप मी फ्रॉम वेयरिंग सर्टेन पैंट्स, बट शी सेड कि यू आर नॉट गोइंग टू वेयर देम, यू नो. आई सेड नो, आई एम गोइंग टू गेट बैक इनटू शेप. चलता रहता है,
1: दैट कीप्स यू गोइंग.
7: बट आई थिंक व्हेन यू टच दीस काइंड ऑफ इयर्स, यू नो थिंग्स क्या बात कर रहे हो
1: आई वुडंट हैव गेस्ड दैट मेरे मैक्सिमम 45 लग रही है आपकी एज क्या बात कर रहे
7: हो थिंग इज की वो अब दोनों हम घर में अकेले हैं तो उसको कुछ काम चाहिए वो काम से वो भी पार्ट टाइमर है मैं भी पार्ट टाइमर हूँ
1: अच्छा
7: तो द डे शी इज फ्री तो उसको वार्डरोब खोल देगी और जो नहीं चाहिए अब शी हैज बुक्ड ऑलरेडी इन ऑर्गेनिक कलेक्शन यू नो
1: ओ माय गॉड
7: बिकॉज दिवाली आने वाली है तो उसने खाली करना है घर ना बट मैं टोल भी मेरे कमरे की चीजें मैं खिलाना मैं खुद ही हिलाऊंगा वो कहती है फिर तो हिल चुकी
1: वही तो फिर तो जा चुकी
7: फिर जा चुकी
1: थैंक यू
7: इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बट आई थिंक इट इज नॉट अ मैन थिंग और अ वुमन थिंग इट इज वेरी इंडिविजुअल यू नो
1: इट इज अ वेरी
7: यू कैन बी विद सर्टेन थिंग्स मेरे पास बाबा आजम जमाने की घड़ियां हैं वो कहती है तुम पहनते नहीं हो मैंने कहा पहनता नहीं हो तो मैं फेंक भी नहीं सकता हूँ उनको यू नो
1: उनको तो नहीं फेंक सकते यार
7: I don't know, have you heard about HMT? HMT की घड़ी होती थी हमारी
1: वही मत
5: देखना आपके पास अभी भी है
7: that was my first it was a winding kind of a thing you know so that was my first watch given to me by my grandfather in my class 8 you know I don't wear it anymore but it's sentimental value that's still there you know
5: yeah sentimental values hai wo to
1: but you know it's come back in fashion now aise purane style ki ghadiya
7: पुराने लोग भी आ जाए फैशन में तो क्या बात है ना
5: अरे आप फैशन में है राजेश जी
1: आपको एवरग्रीन बोलते हैं हम
5: अभी देखो ना हम सब 80s के ट्रेंड में चले हुए थे
7: अरे मैंने भी फोटो निकाली थी कोशिश करी थी मैंने भी AI जनरेट करके तो
1: क्या बात है आप AI यूज कर रहे हो आप
7: आई ट्राई टू I was in a full-time job till last year only, you know, retired, but I'm not sitting back home, I've started doing other things now, doing a part-time job for some kind of, I'm interpreting this way, that way, just to keep myself busy.
5: Very nice.
1: Kya baat hai?
5: It's very important.
1: That's so cool, yeah. Rajesh, yes. You should call us more often, yeah, please.
7: Yeah, let's see. I मेरे का पता है नंबर कभी क्या होता है I try वो नंबर नहीं मिलता then I give up जाने पे अभी मैंने try गाड़ी में था तो
1: हाँ और मैं आपको यहाँ पे राजेश ही बोलने वाला हूँ आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू सर अंकल ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला मैं राजेश ही बोलूंगा
7: यू कैन कॉल मी राज यू नो राजेश भी निकलाते लोग मुझे यू नो इट्स बिकॉज व्हेन आई जॉइन द बैंक यू नो नोबडी कुड प्रोनाउंस माय नेम राजेश रजीश राजेश व्हाटएवर दे यूज्ड टू से सो आई सेड ओके यू कट इट मेक इट राज यू नो सो द माय ऑफिशियल नेम हैज बिकम राज काइंड ऑफ अ थिंग
1: ओह वाओ
5: ब्रिलियंट
1: दैट्स कूल
5: तो भी कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लगा राज तो प्लीज आप यहाँ पे कॉल कीजिए
7: I'll try my best if I'm on the radio or I'm driving or whatever you know I'll definitely try
1: yeah.
7: So this is the first time always so today was the first time
1: that's so, awesome, man. so glad
5: thank you
1: for your call
7: awesome all good thank you guys.
1: Bye well gaana sunate aapko lekin dekho aapko yehi bata rahe ki yahan pe call karna bahut aasan hai 0800-004-866 is the number. काफी messages आए. इस गाने के बाद कुछ messages भी पढ़ेंगे आपके लिए. तब तक आप भी बताइए, are you a holder or are you a thrower?

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Traffic. Simplicity means lower KiwiSaver fees.
2: Shah's overnight, a low of 10 on the northern. It's heavy from Northcote Road to the Harbour Bridge and heading north through Albany. Northwestern all clear. On the southern to Manukau, 43 minutes, Drury an hour. Heavy heading north from East Tamaki Road to Green Lane. South from Town to Luke Street. Southwestern really slow from Dominion Road through to the southern and heading north from Cavendish Drive to Mangere Bridge.
1: Keep more of your money with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
3: अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का माइटन मेगा वेस्टन हेंडरसन के साथ क्लीनिंग स्टोरेज शेल्विंग रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स। टीज एंड सीज अप्लाई एंड्स अक्टूबर 14। स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माइटन मेगा वेस्टन हेंडरसन।
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
5: Oh, I was just overtaking someone, officer. Could have only been a couple of k's over. But just for a second to get round them, you know? You're not going to ping me for that, are you? Surely just a warning. I've never even had a...
6: Crash involving three injured parties. Reported speeding vehicle collided with an SUV at an intersection. Two victims, stat one. We've lost the driver. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
7: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में 3.9

0: kilometer vehicle warranty. More ways to save at Winger Motors East Auckland, North Shore and Pukekui or winger.co.nz. On now till 30th September. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
2: Power Drive at 5.
3: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
4: Kundi khadga.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
5: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. और हमने सवाल पूछा, are you a hoarder or not? और काफी सवाल पूछ मतलब इस पे था कि are men hoarders?
6: अरे bless you.
5: और women? और उसमें काफी messages आए. एक ने लिखा है, yes, it's a male thing to collect junk, regardless of whether it is used or not. इनका ये personally दिल से निकला है. एक और आया, नहीं, it is general for me, hoarder, that is what my daughters call me, but I do sharing and caring and bartofying. Yes, बिना फर्क का मैसेज आया यहाँ पे. Also request some good popular and melodious songs at this hour and less chit chat. Drive home with good songs is better. Okay. As you say. फिर एक और आया है यहाँ पे, one person's rubbish is another person's treasure. It depends on the object, not the gender. वाह, rhyme हुआ ये तो यार. And एक और आया, I'm such a hoarder. I keep chocolates and things until and sometimes things until and sometimes way after they have expired. अच्छा.
6: अरे चॉकलेट्स भी एक्सपायर हो जाती है आपके घर पे, क्या बात है.
5: मेरे यहाँ पे भी काफी बार हो जाती है यार. द ओल्डेस्ट थिंग आई हैव इज प्रोबेबली द हॉस्पिटल ब्रेसलेट फ्रॉम हॉस्पिटल फ्रॉम व्हेन आई वाज बोर्न.
6: वाओ,
5: ये रोशनी का मैसेज है, 15 इयर्स ओल्ड है ये, तो इनके पास ये है
6: जब वो पैदा हुई थी तो ब्रेसलेट होता है जो.
5: वाओ रोशनी, आप नहीं हो होल्डर, आपकी माँ होल्डर है शायद.
6: हाँ. वो उरोड़े संभाल के रखा हुआ है एंड इट्स प्रेशियस टू यू नाउ. अब आते हैं व्हाट एम आई क्वेश्चन पे. रुज़बे, आपको मैसेज करके भेजना है 5599 पर. ये क्या है, द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड, व्हाट इज इट?
5: द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड.
6: या द मोर यू टेक द मोर You leave behind.
5: Potty.
6: उसको take.
5: वो नहीं take कर सकते.
6: Yeah, yeah,
5: sorry,
6: please, यार.
5: The more food you take, the more processed food you leave behind.
6: The more you take, the more you leave behind. Please message करके बताओ 5599 पर. And hint अगर मैं इसका देना चाहूँ तो hint इसका ये है कि this is related. ये स्पेसिफिकली आपको तब एहसास होता है, नज़र होता है जब आप किसी ऐसी जब आप एक ऐसी जगह पे है जो कंक्रीट नहीं है.
5: अच्छा, समझ गए.
6: या

0: Rusbe. Coming soon.
1: Unfiltered with Sandy and Rusbe on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: जी हाँ, ये होने वाला है अनफिल्टर्ड में आपके लिए लेकर आने वाले एक ब्रांड न्यू एपिसोड बहुत जल्द।
3: थोड़ा सा हमने आपको टीजर दिया है कि अनफिल्टर्ड में क्या क्या होने वाला है, बट शर्ली सेठिया आज 6 बजे के बाद यहाँ पे आपके लिए बहुत ही डिफरेंट सेशन लेके आने वाली है। डिफरेंट अंदाज में बातें यहाँ पे होंगी, म्यूजिकल बातें होने वाली हैं।
2: या इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली
3: म्यूजिकल सेशन,
2: आई विल से म्यूजिकल सेशन। इट्स गोइंग टू बी, वी आर कॉलिंग इट ड्राइव इन कॉन्सर्ट।
3: या इट इज ड्राइव इन कॉन्सर्ट, आपको पता चलेगा एक्चुअली।
2: वी वांट यू टू एंजॉय इट। इफ यू लाइक शर्ली सेठिया, उनके गाने अगर आपको पसंद है, ये एक टीजर है। और मैं आज जो भी यहाँ पे शोज लेकर आते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनको बोलना चाहूंगा कि ये शो सुनिए आप 6 से 7 के बीच वाला शो।
3: आई थिंक हमें ये चाहिए अभी।
2: I think we
3: live
2: need
3: in Auckland, concert.
2: Auckland needs
3: homecoming चाहिए अभी।
2: Yeah, homecoming की जरूरत है। But anyway, अभी आपको हम बता दें कि it's normal to feel low sometimes, just like the weather changes. अभी बारिश भी हो रही है बाहर। Pay attention to your feelings, reach in and check how you're doing. Reach out and talk to a trusted professional. Support is available at Asian Family Services. Call Asian Families Asian Helpline on 0800-862-342 for free and confidential mental health support. If someone is in immediate danger, please call 111 or emergency services. और एक खास बात इनकी ये है कि ये आपकी भाषा में आपकी मदद कर सकते हैं।
3: Yes, तो इन्हें आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये Uber drivers के लिए है। If you already have a claim with not your fault services, it is moving forward and a claims manager will be in touch with you. So agar aapne apply nahi kiya hai abhi tak, intake 4 abhi open hai. Please note ki not your fault services ki phone team jo hai abhi capacity pe hai, to aap call mat kijiye, instead aapko online apply karna hai. nyfservices.com is a website.
0: Let's go
1: straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. Drive Show with Sandy and Rusbe.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: छह बज चुके हैं. ट्रेंड मेकर्स आपके लिए लेकर आए हैं आज फ्राइडे एक अलग ही स्पेशल शो है. आज ट्रेंड मेकर्स में सैंडी
4: बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ शो आज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं. यहाँ पे शर्ली सेठिया इज ऑलरेडी, रुजबे इज मेकिंग हिज परफेक्ट कॉफी फॉर हर राइट नाउ.
3: राइट नाउ तो मैं बात कर रहा हूँ,
4: इसके बाद
3: हाँ अभी एक ब्लैक कॉफी हो जाएगी और उसके बाद वी आर गोइंग टू बी राइट इन टू आवर ड्राइव इन कॉन्सर्ट विद शर्ली सेठिया. एंड
4: पॉडकास्ट भी बहुत ही जल्दी हम रिलीज करने वाले हैं गाइस. ये तो कुछ नहीं है, मतलब ये तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सर्ट आप यहाँ पे सुनने वाले हैं ड्राइव इन, लेकिन बहुत सारी बातें आप बाद में पॉडकास्ट में सुनेंगे.
3: डेढ़ घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है शर्ली सेठिया के साथ, डेढ़ घंटे का. सो ये अगर आपको सब कैचअप करना है इसके साथ तो You have to stay tuned with us. Rua पे आपको podcast मिल जाएगा या Spotify या wherever you listen to podcast.
4: Next week, but
3: आज अभी आप ये enjoy कर सकते हैं show from anywhere in the world through Rua. तो hum.rua.nz पे आप जाइए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो शर्ली के फैन है.
4: And we will try ये एपिसोड को बाद में हम रोवा ऐप पे डालने के लिए,
3: लेकिन अभी आप लाइव इसको सुनिएगा क्योंकि लाइव में इसका अलग ही मजा आएगा. सो या आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम. एक गाना आपको सुनाता हूँ क्विक, तब तक एक
4: शर्ली सेठिया का ही गाना है और उसके बाद स्ट्रेट अवे शर्ली सेठिया से बात करेंगे.

0: लगी था
1: माय गॉड अलग ही था ये सीरियसली बिकॉज़ ये मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है.
2: ओह थैंक यू.
1: This is first time experience, you know, कि जहाँ पे like on track live आप यहाँ पे बात भी कर रहे हो track के बारे में and then you are singing as well. तो इसमें तुमने ये कभी experience किया है?
3: मेरे लिए बहुत surreal moment था ये, like you know, it's like live. I'm attending your concert.
2: So actually, almost. This is
1: and you are the engineer.
2: Mixing. He's my sound engineer.
1: Yeah.
3: And I goofed up.
2: Yeah, man.
3: Yeah. No, sorry. Yeah.
2: Yeah. No.
3: I'll do better with the second track. Yeah. Now. Yeah.
2: अब प्रैक्टिस हो गई ना चलेगा. सो या एक्चुअली दिस इज़ फॉर माय रिहर्सल एंड प्रैक्टिस. ये जो अभी है विदाउट द वॉइस ये मैं शो से पहले खुद सुनती हूँ सबके पार्ट्स याद करने के लिए क्योंकि हमारा जो सेटलिस्ट है वो बहुत लाइक प्रॉपर लाइक कट टू कट सबके पार्ट्स एग्जैक्टली जैसे डिज़ाइन है वैसे एंड देन इफ पीपल वांट टू ऐड मोर टू इट दे कैन बट इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम
3: राइट.
2: तो
3: बीट शुड नॉट बी मिस्ड
2: या
3: बिकॉज़ एवरीवन इज इन सिंक.
2: एवरीवन इज इन सिंक या सो दे इवन द म्यूजिशियंस दे यूज दिस एज लाइक प्रैक्टिस फॉर देम एंड देन वी प्ले लाइव. सो ये ऑब्वियसली इससे थोड़ा आपको आइडिया आएगा और थोड़ा फील आएगा कि लाइव कैसे साउंड होगा बट व्हेन वी एक्चुअली प्ले लाइव इट साउंड्स अ लॉट बिगर एंड बेटर
1: बिकॉज दैट्स डिफरेंट. आप स्टेडियम या कहीं पे परफॉर्म कर रहे हो वो डिफरेंट साउंड होता है.
2: एंड आई थिंक इवन विद म्यूजिशियंस व्हेन दे प्ले लाइव उसकी एनर्जी बिकॉज एवरीवन बाउंसेस ऑफ देयर एनर्जी तो वो अलग ही होता है. मतलब हमने कितनी बार ऐसे किया है साउंड चेक पे हम जाते हैं और अपने लेवल सेट करते हैं बिकॉज हमारे इन ईयर मॉनिटर्स होते हैं यू नो फॉर टू हियर साउंड बैक टू हियर आवरसेल्व्स बैक. तो हम साउंड चेक पे जाके वी गेट ऑल द लेवल्स सॉर्टेड विद द साउंड इंजीनियर एंड देन जब हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं साउंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज बैंड में एनर्जी आ जाती है और फिर वो फुल अटैक से अरे वो अटैक मतलब इवन द कीबोर्डिस्ट विल प्ले विद लाइक फुल अटैक गिटारिस्ट कुछ अपना वो करेंगे तो एकदम प्रॉपर उसके साथ. सो एवरीवन प्लेज विद अ लॉट मोर एनर्जी
3: And it's also the audience, na?
2: It's also the audience and you can 100%.
1: And what live mein kya hota hai? You can change things around with the band.
2: Yeah.
1: Ki achha, kisi ko wo achha lag raha hai, toh saath mein aap flow ke saath jaate ho
2: phir then. Haan, correct.
3: So what is the largest audience you've played for?
2: Oh, I don't know. But a lot. 10,000 plus. Haan, maybe. 10,000
3: plus. Wow, 10,000
2: plus. Yeah.
1: Wow.
2: Colleges mein bohat hota hai.
3: Yeah.
2: And it's just a beautiful experience, honestly.
3: Wow. Yeah.
2: Goosebumps aate hain and it's so amazing.
1: Wow.
2: I can't explain that in person. Yeah. Hopefully, I don't know. I've never performed in New Zealand.
1: मैं वही बोलने वाली थी. क्या बोलते हैं New Zealand में? You should have like क्या कहते हैं उसको? Back home नहीं क्या कहते हैं उसको?
3: हाँ हाँ.
1: What is
3: home,
1: that? Term?
3: Homecoming.
1: Home coming.
2: Home coming to Chennai. I've had that at the back of my mind, but I've been thinking about it a lot like the last couple of years and honestly to bring all my musicians here from there is like very expensive. But I think hopefully now kuch raste maybe hum figure out karenge to make this happen. Yeah,
3: you've got a strong sponsor backing na Raj Motors.
1: You have a business backing you. मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ कभी यहाँ पे हो तो उस समय पर अगर ऐसा होमकमिंग होता है ना वुड बी अमेजिंग.
2: I know I would really love to and I think अब तो मेरे दो स्पॉन्सर्स हो गए हैं. हम FM will also join.
3: 100%. Yeah. But you are live with Shirley Setia today from our studio. Trendmakers आपके लिए जा रही है और भी हम इनसे गवाने वाले हैं और भी इनसे बातें करने वाले हैं.
1: Live tracks, different feeling आपको concert वाली feeling आज यहाँ पे मिलने वाली है.
3: Stay tuned.
4: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
5: रुस्बे टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की. बाली बुला रहा है
5: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती.
5: फातिहा.
4: बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
0: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
4: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
4: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।
8: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
9: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
10: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
11: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
12: Flooring Extra. Adore your floor.
13: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pokekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pokekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
3: बहुत ही मजे आ रहे हैं आज. ड्राइव शो जा रही है आपके लिए ट्रेंड मेकर्स में. वी हैव अ स्पेशल गेस्ट शर्ली सेठिया इन द हाउस. हाय शर्ली.
2: हाय.
3: हाउ आर यू फीलिंग सो फार?
2: मतलब इन like in
3: studio
2: your studio
3: mein.
2: amazing
1: yeah aisa to nahi feel ho raha ki oh ho
2: nahi matlab agar ho raha hota to fir main bolti chalo yaar ho gaya ghar
1: chalte hain
3: dusre brand mein itna maza aaya tha kya?
1: Come on, yeah, this is not a good question to ask.
2: Aaya hi tha. I owe a lot of my opening up, matlab jo because again I mentioned my introvert. मुझे सत्येन जी ने ट्रेनिंग करी दी थी. सो आई यूज्ड टू गो एंड सिट नेक्स्ट टू हिम और उनका मैं सीखती थी उनसे.
1: वेरी नाइस.
2: सो आई थिंक आई ओ अ लॉट टू हिम, पवन जी, एवरीवन. एक्चुअली दे वर वेरी काइंड. या
3: दैट्स सो कूल. या
1: सो कमिंग टू नेक्स्ट ट्रैक, आप बता रहे थे देयर इज अ फनी स्टोरी अराउंड दिस.
2: हाँ. सो ये अलग ये वाला जो गाना है, दिस इज कॉल्ड नहीं हो जाना. दिस इज कम्पोज बाय रवि सिंगल. ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जो मैंने इंडिया जाके रिकॉर्ड किया था ओरिजिनल. लेकिन ये रिलीज ही नहीं हो रहा था एंड आई थिंक ये काफ़ी सालों के बाद रिलीज हुआ. आफ्टर लाइक जब कोई बात एंड ऑल दीज अदर सॉन्ग्स.
3: क्यों रिलीज क्यों नहीं हो रहा था? मतलब
2: सो जनरली व्हाट वी यूज टू डू पहले, अभी भी एक्चुअली काफ़ी लोग करते हैं, यू नो, यू मेक अ गुड सॉन्ग एंड यू फील लाइक दिस सॉन्ग डिजर्व्स अ लिटिल बिट मोर देन व्हाट वी कैन गिव इट. इंडिपेंडेंट वाइज, तो शायद अगर हम लेबल को देंगे तो दे विल बी एबल टू प्रमोट इट बेटर, या यू नो मेक अ गुड वीडियो आउट ऑफ इट, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज वेरी कॉस्टली, एक्सट्रीमली कॉस्टली. सो वी ट्राइड अलॉट उस टाइम पे, बट नहीं हुआ तो हमने उस चीज़ को फिर पार्क, वी जस्ट पार्क इट असाइड एंड देन वी वर्कड ऑन अनदर सॉन्ग. हमने दूसरा गाना किया था कोई शोर, वो गाना हमने खुद ही शूट करके, मैंने खुद एडिट करके उसको यूट्यूब पे डाला था. हाँ, एंड देन इवेंचुअली लेटर ऑन ये गाना रिलीज हुआ. बट द फनी स्टोरी इज दैट इस गाने का वीडियो किसी ने, उसमें मैं ही हूँ वीडियो में, किसी ने तो वो वीडियो अपलोड किया दुआ गाने के ट्रैक के साथ.
1: वाओ, यो शंघाई मूवी का गाना. हाँ, ओके.
2: और वो भी आई थिंक किसी का कवर है, वो मैंने नहीं गाया है, बट उस पर मेरा नाम लिखा है, संग बाय मी. एंड उस वीडियो को हमारे खुद के गाने के वीडियो से आई थिंक बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं. या लाइक आई थिंक इट हैज़ लाइक 67 मिलियन और ऐसे कुछ है उसके व्यूज़ उस गाने, मतलब उस वीडियो को. सो वीडियो हमारे गाने का है
3: बट गाना कोई और है.
2: गाना कोई और है.
3: ओह माय गॉड.
1: ओह वाओ.
2: या
3: क्या यार, और तो उसका पैसा किसको जाएगा फिर?
2: एंड लोग कमेंट में बोल रहे हैं ओह माय गॉड, इसको देख के ऐसे लग रहा है, बिकॉज आई क्राई इन द वीडियो एंड इट्स लाइक अ इमोशनल स्टोरी.
3: या
2: तो एकदम हार्ट टचिंग वीडियो, ऐसे ऐसे मतलब वेरी गुड कमेंट्स एंड लाइक भाई गाना तो सुन लेते, मतलब ये गाना भी अच्छा है, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छा है. लव दैट रेंडिशन ऑफ दुआ एज वेल, एंड दुआ इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, बट मतलब जिस गाने के लिए बनाया है वो वीडियो चेंज हो गया ना.
14: खुश हो के उदास हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है
2: वो कि अच्छा चलो मेरे लोग मेरे वीडियो को लोग देख रहे हैं उसके लिए मैं खुश हूँ, बट मेरा गाना भी सुन लेते तो.
3: लेकिन मेरे को मैं जेन्युइन क्वेश्चन है, तो उसका यूट्यूब रेवेन्यू जो होता है वो किसको जाता है फिर?
2: आई थिंक वो तो जो गाने का कॉपीराइट ओन करता है उसी को जाएगा. सो दुआ, हां आई थिंक दुआ इज टी सीरीज, आई एम नॉट श्योर.
3: नहीं वो तो उसका वो होता है ना, इफ यू डू cover then you have to like share your
2: no
3: aisa nahi hota hai pura jata hai
2: ha
3: hoila
2: yeah matlab depends
3: okay
2: label to label
3: okay
2: you can okay. take the call if you want to share or not
3: the label can take the call.
2: The label decides yeah okay. and you don't know till the time you upload unless and until agar aapne unke sath pehle se koi deal kari hai
3: right
2: to fir
1: aap cover bana rahe ho to wo ek different cheez hai
2: but yeah. mere sath aise tha nahi mera to sab proceedings everything went to the labels.
1: चैरिटी
2: नहीं मतलब मुझे भी तो मिला कितना कुछ.
3: सो वी आर गेटिंग इनटू आवर सेकंड सॉन्ग. सो या ओवर टू यू शर्ली. वी हैव गॉट शर्ली सिंगिंग लाइव इन द स्टूडियो.
1: लाइव इन द स्टूडियो.
2: सो इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स प्लीज माफ कर देना.
1: हम सिर्फ ट्रैक बैकग्राउंड ट्रैक यहाँ पे प्ले कर रहे हैं जैसे आप कॉन्सर्ट्स में देखते हैं. एंड यहाँ पे लाइव कंसर्ट हो रहा है आपके लिए.
3: अगर उसमें मैं कोई गलती कर दूँ तो मुझे माफ कर देना.
2: आपको भी आना है.
3: मुझे भी आना है. हाँ, चलो ठीक है.
2: सैंडी को भी करवाएंगे. सैंडी फिर बाद में एडिट कर लेना अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो.
3: ये ये लाइव लाइव जा रही है अभी. एंड नाउ प्रूफ है हमारे पास. यू हैव आस्क्ड मी टू सिंग.
2: टू सिंग. अच्छा हां तो अच्छा हो. अब तो हम एडिट भी नहीं कर सकते.
1: या
2: ओ डैम. ओके ओके.
3: हियर वी गो. लेट्स हिट इट. आ रहा है.
2: Okay.

0: मैं साथ में नहीं गा रहा हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज हो रहा है मैं कितना बेसुरा गाता हूँ।
1: अब तुम्हें रियलिटी चेक मिला।
0: सीरियसली यार, गाना छोड़ दूंगा मैं। You know, at this point, I am really missing one person. एक हमारा फ्रेंड है, बताता हूँ।

0: मैं वही सोच रहा हूँ, यहाँ पे सिंगर है हमारे पास यार।
1: नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग, मतलब इसके बाद वाला।

0: वाओ यार
1: अमेजिंग
0: दिस इज लाइक लाइव कॉन्सर्ट जो आप सुन रहे हो फ्री में
2: मैं खुद भी डर रही हूं यहां पे
1: लेकिन इमेजिन द वाइब बी सो गुड
2: या इट्स अ लॉट ऑफ फन
0: This is so good, yeah. Wow.
2: Thank you.
0: My God, yeah. This was simply outstanding. I was saying something. Matlab,
2: you were missing someone.
0: I was missing my very, very dear friend, who works with us on the radio. His name is Ketan. And he's a singer himself.
2: Oh, wow.
0: And he's sung Kesariya ka cover and all that.
2: Oh, he would have really enjoyed that. Unko hum join kar sakte
1: hai. Uska message aa raha hai ki, arre yaar, dash, mujhe kyun nahi bulaya? Aur phir bol raha hai, woh galat message. Ruzbe ko bhejna.
0: But yeah, I'm really, I didn't know this was going to happen. Yeah, to be honest, random.
2: Actually, even I didn't know. I had to ask my manager कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं क्योंकि usually हम ये सारा चीज live play करते हैं.
0: Yeah.
2: ये सिर्फ मेरे practice के लिए हमने मतलब record करके रखा हुआ है.
1: This was great idea.
2: So I thought कि यहाँ पे तो
0: concert हो गया ये.
1: हाँ. 100%. Actually मेरे concert में क्या होता है हमने उसका teaser दिया है यहाँ पे एक छोटा सा.
2: Correct.
0: Because obviously concert में when live like you already said that live musicians जब play कर रहे हैं और
2: the energy is just something else.
0: Oh my god. And I can feel क्या feel कर रहे होंगे audience ना like when they're watching you perform live all of this oh my god wow
1: कितने concert किए अभी तक
2: तो नहीं पता
1: नहीं पता ना countless numbers नहीं
2: है but it's
0: kiss and don't tell kiss and don't count
2: but this is a very special one because my dad has never been to any of my concerts
0: what
2: so this is the first time पहली बार सुन रहे
1: he's experiencing this first time
2: yeah पहली बार
0: तो आपको कैसा feel हो रहा है live आप सुन रहे हो
3: ये मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ऐसा लग रहा है कि मैं बिलीव करना मैं आईज ही बंद कर ली थी मैंने कुछ इतना अच्छा लग रहा है इतना मतलब कुछ डिवाइन फीलिंग आ रही है कुछ अलग से मजा आ रहा है
1: नाउ यू आर प्राउड कि आपने वो जो शर्ली को जाने दिया कि जा जी ली अपनी जिंदगी
2: हाँ मेरे साथ वैसी मोमेंट हुई है ना
3: आज मेरा अमरीश जा सिमरन जा
0: That's so good, yeah.
2: Yeah.
0: But और भी बातें करने वाले हम शर्ली के साथ यहाँ पे hopefully time हमारे पास बाकी रहे.
4: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: You went to Big Boss.
2: I
1: right?
2: went there once. Yeah.
0: That was for Nikamma, na?
2: For Nikamma, yes.
0: So, what do you think about Salman Khan?
2: मैंने सलमान सर

0: anywhere you get your podcast.
1: Hum, accurate traffic.
2: New tasty rise bars and bites.
3: Showers overnight and a low of 10 on the northern. Half an hour to Silverdale at the moment from town. Heavy from Northcote Road to the Harbour Bridge. The northwestern to Massey 16 minutes. On the southern to Manukau 28 minutes. Drury 42. It's heavy heading north from Highbrook Drive to Green Lane and south from Ellerslie Panmure to Princes Street. Southwestern's heavy from Puhinui Road north to Onehunga.
2: New tasty rise low carb protein bars and bites. Less carbs, better snacking.
0: Spring just got fresher with these great deals at New World North Island this week. Get avocados, 2 for $2.50, or whole chicken legs, $7.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: Briscoe's Half Price Birthday Blowout is on now with half price off the entire store. That's right, every single item in store nationwide is half price. All stores open till 9 tonight. Plus, we're giving away $25,000 cash.
5: See online for TZs and exclusions.
6: Hey! City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
7: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
8: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
9: CRL first trip. Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
10: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
11: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
12: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
0: Raaz, romance, action or supernatural power se bhari kahani. A thrilling fantasy adventure. The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna.
13: Is one ki kaali shakti, raat ke saaye se bhi kaale.
0: The One, releasing in cinemas on 25th September.
14: Ab mujhe dheere dheere samajh aa raha hai. Jo kuch bhi ho raha hai, sab ek number ki bakwaas.
0: Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
15: Hame mata ka bulava aaya hai.
16: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
17: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
18: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend makers.
19: You're listening to the Drive concert tonight because today we're here.
2: Trend makers
4: Drive concert.
2: Yeah, as trend makers we're trending. Shirley CTI is here.
19: Yeah, Shirley, welcome back. Yeah,
2: and thank you.
19: My God, what an experience it's been. Yeah, like it's literally been like a concert. We've been to a concert.
4: Yeah, I'm glad. I thought that we karna chahiye and I'm glad you all are liking it. Yeah,
19: yeah. No, we love it. So, okay, now tell us about Biba. Is gaane, like, I personally love this song.
4: Thank you.
19: And the music is killer. Like, yeah. I always play this on the radio.
4: Yeah.
19: But uske saath saath jo video hai na, yaar, main sabko video bhi dikhata hoon kyunki mujhe pata nahi kyun mereko bahut
4: it's amazing video. It's a very cool video.
19: It's a very cool video. And the last shot, jahan pe wo Shahrukh Khan ke saath kar raha hai, naam to suna hoga.
2: No, this Shahrukh Khan ke saath ye jo video banayi hai. I have any memories.
4: अरे सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं एक्चुअली द सॉन्ग आई हैड सो मच फन वर्किंग ऑन द सॉन्ग इवन इन द वीडियो एंड बहुत ही कूल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था बिकॉज ऑब्वियसली मार्शमेलो यू नो ही वेयर्स दैट एंड
19: सो यू हैव सीन मार्शमेलोस फेस
4: या
19: ओह यू हैव सीन इट
4: ओके या ही इज सुपर स्वीट एक्सट्रीमली स्वीट ऑल ऑफ देम एंड इन फैक्ट जब मुझे पता लगा दैट शाहरुख सर इज गोना बी इन द वीडियो I was like, oh my god, मैं रुक जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जब तक मैंने अब मेरा शूट हो गया था मेरा अच्छा। हाँ मेरा शॉट खत्म हो गया था. सो आई सेड नहीं मुझे तो मिलना है, मतलब मेरे हम साथ में वीडियो कर रहे हैं. दैट इज इनसेन. ही इज माय फेवरेट एक्टर, लाइक आई एब्सोल्युटली लव हिम. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पता नहीं मैंने कितने गजिलियन बार देखी होगी. तो मुझे बहुत बहुत पसंद है वो. एंड या इट थोड़ी ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ कि हमने सेम वीडियो में काम किया पर हम मिल नहीं पाए.
19: सो यू वेटेड बट स्टिल नहीं हुआ.
4: मैं तो हाँ मुझे एक्चुअली मैं रुकी बट फिर कुछ टाइम के बाद फिर मुझे बोला कि नहीं अभी और मत रुको क्योंकि पता नहीं फिर उनका शूट आई थिंक अलग टाइम पर था या एंड अदर पीपल ऑल्सो नीडेड द वैनिटी
2: ओके
4: मैन. सो आई सेड ओके फिर मैं मुझे बताओगे बाद में कब होगा. तो फिर ऐसे कुछ पता नहीं लगा बट या इट या आई थिंक बिकॉज ही प्रॉब्ली उनका थोड़ा सीक्रेटिव भी हो सकता है क्या पता. कम लोगों को रखे एंड यू नो या आई डोंट नो आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट बट या आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बी यू नो
19: In the same video.
4: Featured, yeah, in the same video as him and on the same
2: मिले
4: track.
2: नाज़े, लेकिन वीडियो में तो साथ में होना मतलब एक ही वीडियो में हो.
4: Yes, yes, absolutely. And you know, even to be featured alongside Pritam Da,
2: oh, yes.
4: Marshmallow,
2: yeah.
4: It's been like a huge, huge thing for me. Yeah.
2: Yeah.
4: मैं अपने shows में गाती भी हूँ ये गाना actually.
19: अच्छा, you sing the song live?
4: हमेशा, yeah, quite like in my college shows. Yes.
19: But your college, your shows that you're like singing, I am seeing your tracks here. They're all long, long tracks.
4: Yeah, na? They're all medleys.
19: Yeah. So like you have to continuously sing for how many hours you like your total concert goes on for?
4: So it depends. Usually it's around. 1.5 hours to 2 hours.
19: Okay.
4: Yeah. In between.
19: Break hota hai.
4: In between 90 minutes to 120 minutes. Okay. Nahin, break nahin hota.
19: Break nahin hota.
4: Nahin, nahin,
2: non-stop.
4: Nahin. Non-stop. Yeah, yeah.
2: Okay, wow.
4: And I am the only singer.
19: Wow.
4: Yeah.
19: So, how ye gala kaise fir matlab manage karta hai itna, because it's like.
2: Do you eat ice cream?
4: इंडिया में नहीं खाती.
2: या
4: नहीं
19: इंडिया में नहीं खाते हो
4: नहीं.
19: और ये ठंडी कंट्री में आके खा रहे हो.
4: यहां आके खाते हो.
2: अभी छुट्टी है ना. अभी छुट्टी चल रही
4: है. अभी छुट्टी है.
2: Because I remember when Arman Malik came, he said ki no ice cream for him.
4: Yeah.
2: So it's like strictly no ice cream.
4: And actually मुझे डेयरी से थोड़ी एलर्जी है.
19: Okay.
4: जो मुझे ज्यादा इंडिया में ही होती है.
19: यहाँ पे मैं भैंस का दूध होता है ना.
4: पता नहीं यहाँ पे मैं पी सकती हूँ मिल्क बट वहाँ पे मुझे इफ आई हैव इवन लाइक कॉफी विद मिल्क और व्हाटएवर तो मुझे आई एम एलर्जिक लाइक आई गेट crazy things happening.
19: Wow.
4: Yeah.
19: lactose intolerance kind of.
4: Yeah, it's strange, right? Because I don't know and I don't understand it. यहाँ पे क्यों नहीं होता और वहाँ पे क्यों.
19: यहाँ पे गाय का दूध है ना.
4: अच्छा.
2: वहाँ पे गाय का दूध बहुत कम यूज होता है.
4: ऐसे
2: या
19: वहाँ पे भैंस का दूध होता है शायद से. एनीवे वी आर नॉट
4: ओके. एनीवे आई डोंट नो.

0: So अगर ये जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो लाइव करते हो तो यू विल डू द स्टेप्स एंड ऑल आल्सो
1: आई डू फूलें तो ये भी मस्त है या इट्स फन पीपल आल्सो परफॉर्म मतलब लोग भी करते हैं
2: हां हां मैं यहां पे नाच रहा हूं यार स्टूडियो में
3: हां मेरा बहुत मन
2: है साथ में गा रहे हैं हम एक्चुअली
1: या इट्स फन आई एम ग्लैड थैंक यू
0: नो इट वाज सो गुड या सो
2: आई थिंक यू नीड द होम कमिंग टूर वेरी सून शर्ली यू नीड टू वर्क ऑन दिस एक्चुअली
4: एवरी 3 मंथ्स
0: So how often do you come here?
4: After two years.
1: हाँ इस बार दो साल के बाद आई हूँ.
0: बाप रे.
1: A year 8 months.
2: Wow.
1: Yeah.
0: तो बीच में फिर पेरेंट्स से मिलना होता है कि?
1: हाँ पापा आ गए थे लास्ट ईयर. फिर मम्मी भी आ गई थी लास्ट ईयर और हम फिर कहीं कल लास्ट ईयर घूमने गए.
0: मिलते रहते हैं.
1: हाँ.
2: Okay.
1: बट मुझे घर की बहुत याद आती है
2: न्यूजीलैंड की.
1: तो दिस टाइम आई वाज लाइक मैं ही आ रही हूँ. कोई भी मत आओ किसी को आने की जरूरत नहीं है मैं आ रही हूँ. समटाइम्स यू फील लाइक ओके यू नो आई मीन ऑब्वियसली लाइक इट्स रियली नाइस टू हैव योर पेरेंट्स कम विजिट यू बट उससे वो फीलिंग मतलब वो पूरी फीलिंग नहीं कम्प्लीट होती. मुझे वो मेरा बेड चाहिए मुझे हम मतलब you know it's like a small thing
2: your home your country
0: also a lot of times it's not just home also it's also tumhari galiya yaar like tum yahan se jaake wo are yahan pe oh ye yahan pe ye ban gaya ye to pehle tha bhi nahi
1: correct
0: you know that feeling
1: so true
0: because we have that feeling when we go back to India you know like are itna sab ho gaya that way
2: and yahan pe bhi ho raha hai jab hum bhi ab trip karne ke liye India ya kahin pe bhi jate hain wo miss back home ke are yaar wapas jana hai abhi jaldi you know missing wali feeling aati
0: hai to wo Mumbai ko miss kar rahi hogi na abhi
1: काम को यस
0: काम को
1: यस मुंबई को भी मिस कर रही हूँ
0: या
1: बट घर घर है
0: सो देन नाउ यू शुड मेक वन कमिटमेंट ओवर योर ऑन एयर विद अस
1: ओह गॉड
0: सो एवरी टाइम यू कम हियर यू हैव टू कम एंड पे अ विजिट टू अस
1: ओह यस एब्सोल्युटली या वो तो हो ही जाएगा
2: आई थिंक हम फोन पे भी काफी कन्वर्सेशंस करने वाले हैं ओवरसीज
0: दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर रिचुअल नाउ
1: या डन
0: या
1: डन
0: क्या
1: बोलो यार मतलब बस थैंक यू बोलना चाहूंगी सबको. मुझे बहुत लोग सपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड से भी सो इट रियली रियली मीन्स सो मच टू मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. थैंक यू टू एवरी वन लिसनिंग एंड थैंक यू टू यू गाइज You both to Hum FM for calling me here. I hope ke ye chota sa mini concert aap sabko acha laga ho.
2: Na thanks to you Shirley and I know aap yahan pe you know aayi thi chutti ke liye ki thoda relax lene ke liye to uske beech mein aisa hota hai ki yaar ye main kaam to karti rehti hu wahan pe na.
1: So generally jab main bahut kabhi kabhi aise hota hai ki main bahut kam samay ke liye aati hu maybe like 8 days 10 days to tab to fir main kisi matlab tab to fir main ghar mein mera lockdown hota hai kisi guest se bhi nahi milti hu main koi and they know ke किसी को बुलाना नहीं है बिकॉज आई एम जस्ट इन माई ओन लाइक आई नीड टू रिचार्ज माई बैटरी इट्स लाइक माई टाइम टू रिचार्ज बैटरीज टाइप बट इस टाइम थोड़ा एक्सटेंडेड ट्रिप था एंड आई एम अलॉट मोर चिल अलॉट मोर रिलैक्स्ड सो इट्स बीन रियली गुड बट वील स्टे कनेक्टेड आई हैव सो मेनी सॉन्ग्स रिलीजिंग एंड आई कांट वेट फॉर यू गाइस टू प्ले देम ऑन एयर मजा आएगा
2: एंड वी आर गोना टॉक अबाउट देम लेटर
1: यस
0: राइट सो विद दैट
2: थैंक यू शर्ली
0: एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वील सी यू अगेन वेरी सून
1: थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस यस एब्सोल्युटली वेरी वेरी सून

0: Playing Bollywood's biggest hits. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbi, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
3: Fatiha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk street food aur raaton ki rangin duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
9: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
10: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
11: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
10: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
12: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
13: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
10: हाँ. अच्छा,
13: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
14: मिसेस सिंह.
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
16: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 0928130 50 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ड्राइविंग यू होम Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ है।
4: ये गलत बोल दिया यार।
3: और पहनता भी नहीं है उसको।
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
4: अभी ब्रांड हो गया ना
3: रुस्बे के बाल लगे उस
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
6: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI
9: The Specsavers Specstravaganza store-wide sale is on now.
10: Phew, bit of a tongue twister, hey?
9: Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200. Hurry, offer ends October 3. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
11: It's double points week at Woolworths. Simply hit Boost in the Everyday Rewards app, spend $50 or more in store or online and scan your Everyday Rewards card and collect double points on every shop. In Sunday, TCs and exclusions apply.
12: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
13: Drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
14: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
15: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
16: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
17: पूरे शहर पे कब्जा होगा राज होगा
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
17: लेट्स गो
0: द वीकेंड स्टार्ट्स हियर
18: फ्राइडे नाइट रेव
0: हम

0: शुरू उन्होंने किया है, खत्म मैं करूंगा।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Clocks are about to go forward, which means you're about to lose an hour's sleep. That's better than losing your life. Install smoke alarms where you sleep this daylight saving. This message is brought to you by Fire and Emergency New Zealand.
5: Grab your friends and whānau, pull out your pinkest outfits and join Pink Ribbon Walk this October. Walk together, have some fun and show your support for people affected by breast cancer across New Zealand. Get tickets now at pinkribbonwalk.co.nz.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
2: Winger Motors hai aapka home of cherry, jahan naya SUV lena is easier than you think.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Ladies and gentlemen.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan aate hain.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz
7: For 30 years, Avana Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
8: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
9: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
10: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है.
9: एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया. Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
11: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
12: राज रोमांस एक्शन और सुपर नेचुरल पावर से भरी कहानी एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एम तमन्ना
13: इस वन की काली शक्ति रात के साए से भी काले
12: द वन रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 25th सितंबर
14: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास
12: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
15: हमें माता का बुलावा आया है

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तू क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Flight on Hum.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
2: Playing Bollywood's biggest hits. Budget gaane

0: Night Flight on Hum.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Rusbe, tickets book ho gaye.
3: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
3: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
4: Fatiha.
3: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
2: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
5: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
6: Hello everybody.
1: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
7: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
1: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
8: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिल्ड कैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट बिल्डकैप्स.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स
9: Let's go.

0: रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
2: व्हाट इफ योर नेक्स्ट हॉलिडे वाजंट जस्ट अ हॉलिडे बट द एडवेंचर एवरीवन स्टिल टॉकिंग अबाउट. दिस इज द बाली एंड बैंकॉक वन एपिक ट्रिप. 5-star ऑल इंक्लूसिव स्टेज, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सॉर्टेड, रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम ऑकलैंड टू बाली to Bangkok and back, sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Put your head to Gandhi.
3: Night Flight.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: Night Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
4: अभी. ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J2.
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
9: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
10: Flooring Extra. Adore your floor.
11: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में. बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM. देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड. डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन. रजिस्टर नाउ, विजिट bilcaps.com. प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स.

0: Night Flight on Hum.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ. बोली बस मेरा फोकस है.
2: हाँ. अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
5: राज रोमांस एक्शन और सुपर नेचुरल पावर से भरी कहानी एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना.
6: इस वन की काली शक्ति रात के साये से भी काले.
5: द वन नाउ शोइंग इन सिनेमास.
7: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास.
5: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
8: हमें माता का बुलावा आया है.

0: Night Flight on Hum.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

0: Flight on Hum.
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very
3: acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This
4: record,
3: is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The breakfast show with VJ and Pooja.

0: 10 a.m.
1: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
2: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
3: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
0: राज रोमांस एक्शन और सुपर नेचुरल पावर से भरी कहानी एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना
4: इस वन की काली शक्ति रात के साए से भी काले
0: द वन नाउ शोइंग इन सिनेमास
5: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है
6: जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास
0: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म रेटिंग टीबीसी
7: हमें माता का बुलावा आया है
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
9: हाँ। अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में। बिलकैच रियल एस्टेट एंड BNW डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट JW मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM। देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड। डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन। रजिस्टर नाउ, विजिट bilcaps.com। प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स।
2: Reliance Ventilation System।
3: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: Oh, that's not good। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
5: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111. और इमरजेंसी सर्विसेज।
6: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
7: कभी भी कहीं भी। सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
8: आ गया, आ गया, आ गया।
7: यू आर लिसनिंग टू अविनीत।
9: क्या रा बुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं हूं आपका साथी अवि, आ गया हूं हमेशा की तरह हर शनिवार आपका साथ देने के लिए। जबकि घड़ी की ओर देखते हैं तो सुबह की 6 बज चुके हैं, तो ऐसे में आप भी जाग गए हैं, रास्ते में हैं, सफ़र कर रहे हैं, या फिर यूं ही घर बैठे बैठे आप तैयार हो रहे हैं और हम का साथ आप दे रहे हैं। ऐसे में आपको विश करते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आ गया हूं आपके लिए, आप इन्हीं स्टूडियोज़ में एक नई ताजगी और एक नया एहसास लेकर। और इट्स अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग। हाँ, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है बाहर, तो आप घर से जब निकले तो इसके लिए भी बिल्कुल तैयार होकर निकले। अभी से लेकर आज 1 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा, और इन बिटवीन ढेर सारी बातें भी आपसे होती रहेंगी, और कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी भी सुनेंगे, और इसके साथ साथ कुछ कोट्स भी है हमारे पास में जो आपके साथ में सुबह सुबह शेयर करते रहेंगे, और गाने भी अच्छी तरीके से बजाएंगे ताकि जो आपका स्टार्ट है बिल्कुल बैंग ऑन रहे। तो 26th of September है, मैं हूँ अभी आपके साथ में, आप मुझे सुन रहे हैं 104.2 FM, साथ में रोवा पर आपका खास स्वागत करता हूँ। और आपको शुभकामनाएं देते हुए, आपको गुड मॉर्निंग विश करते हुए इस पहली गीत को आपके लिए लेकर आया हूं इस प्रोग्राम को सजाने के लिए, जो है सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो।

हम पर आप सुन रहे थे अमाल मलिक को और साथ में श्रेया घोषाल को। और जबकि मैं स्टूडियो से बाहर निकला था तो यहाँ पर सीबीडी में काले काले बादल अब भी छाए हुए हैं। तो बादलों की बात करते हुए आपको आज के मौसम के बारे में बता दूं ताकि आप भी अपने दिन को अच्छी तरीके से प्लान कर सके। ओकेशनल रेन फोरकास्ट किया गया है और खासकर सुबह को आपको पॉसिबल हैवी रेन देखने को मिल सकती है जो बाद में थोड़ा ईज होकर आइसोलेटेड शावर्स में बदल सकती है। और साथ में इधर उधर कुछ ना कुछ बूंदाबांदी होती रहेगी। जो सनराइज़ है आज का ये है 6:08 AM पर, यानी कि बस होने ही वाला है। और या फिर कई जगह पर आपको पहली किरण की भी सुबह सुबह आपने देखा होगा। और इसके साथ में जो दिन का आज टेम्परेचर है करीब करीब 16 डिग्रीज तक रहेगा अगर जो हम बातें करें ओकलैंड सीबीडी की। और अगर जो नेशनली देखा जाए तो काफ़ी और इलाकों में टाउन्स एंड सिटीज़ में भी ऐसा ही मौसम फोकास्ट किया गया है। खासकर नॉर्थ आइलैंड में काफ़ी टाउन्स एंड सेंटर्स जैसे हैमिल्टन हुआ, रोतोरुआ हुआ, फांगरे हुई और इसके साथ में टोपो हुआ यहाँ पर, और साथ में वेलिंगटन में ऐसा ही मौसम फोकास्ट किया गया है। साउथ आइलैंड की ओर देखते हैं तो जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर काफ़ी काले काले बादल फोकास्ट किए गए हैं विद सम हैवी रेनफॉल, लेकिन क्राइस्टचर्च हुई, साथ में डनीडन हुआ, क्वींसलैंड हुआ, यहाँ पर वेदर कंडीशंस मिक्स्ड रहेंगे। 6:12 हो रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आज का मौसम कैसा रहेगा जिसके बाद में आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं। और भी बातें होती रहेंगी, थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करूंगा कुछ ऐसे खबर जो शायद ओवरनाइट हुई हैं और जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है, तो कुछ सुर्खियां भी लेकर आऊंगा आपके लिए। लेकिन 0800004866 साथ में 5599 हमारे मैजिक नंबर्स है।

0: एक बड़ा ही सूदिंग और प्यारा सा नगमा आप सुन रहे थे अरिजीत साथ में पलक की आवाज़ में। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे कुछ समाचार विभाग के साथी मिले तो हमने उससे पूछा, भाई कुछ हुआ है ओवरनाइट जो हम अपने लिसनर्स को बता सके? तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। एंड समटाइम्स दे से नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो कोई ब्रेकिंग समाचार ऐसी कुछ नहीं है जो आपके साथ में मैं अभी शेयर कर सकूँ। लेकिन 8 पर जो सुबह की पहली न्यूज़ रहेगी ये आपके साथ में रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर जो आप इंग्लिश प्रीमियर लीग को फॉलो करते हो तो एक बीबीसी ने ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है कि कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी एक काफ़ी फेमस और नामी क्लब ठहरी हुई है पिछले 10-12 सालों में, लेकिन अब इनको गिल्टी फाइन किया गया है क्योंकि इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल रूल्स को ब्रीच किया है। ऐसा कुछ रिपोर्ट सामने आया है कि कुछ 115 फाइनेंशियल रूल्स को ब्रीच किए गए हैं जहां पर बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, और इसके कारण काफ़ी टाइटल्स इनसे वापस लिया जा सकता है। तो एक ऐसी खबर है ब्रिटेन से जहां पर मैनचेस्टर सिटी एक काफ़ी फेमस क्लब है और फाइनेंशियल रूल्स को ब्रीच करते हुए इनके जो टाइटल्स इन्होंने ओवर द ईयर्स जीते हैं अब इनसे ये वापस लिया जा सकता है। 6:22 हो चुके हैं और ऐसे में जितने भी और स्पोर्ट्स की खबर है आपके साथ में शेयर करता रहूंगा।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: You went to Big Boss,
4: I
3: right?
4: went yeah. there once, yeah.
5: That was for Nikamma, na?
4: For Nikamma, yes.
5: So, what do you think about Salman Khan?
4: Maine Salman se

0: हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
1: That's right, ये है सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो. मैं हूँ अभी आपका साथी और जबकि आज है 26th of September, आप भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनकी खुशियां आप हमारे साथ में बांटना चाहते हैं तो 5599 पर अपना प्यारा सा जो टेक्स्ट है आप हमारे पास में भेज सकते हो. आपके लव्ड एंड डियर वंस का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो ये जो खुशियां हैं 5599 पर आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हो, या फिर शादी की सालगिरह है इसकी भी खुशियां आप हमारे साथ में बांट सकते हो. और पहले पहले सुबह की जो पहली बर्थडे मैसेज है ये आया हुआ है भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, जिन्होंने बताया है कि इनके एक मेम्बर है सविता मल्होत्रा जी माउंट रोस्किल से, ये आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. तो ऐसे मौके पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं सविता जी. हैव अ वंडरफुल डे एंड वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी ओर से और हम की पूरी टीम की ओर से. सो देयर यू गो, आप भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. 5599 इज द नंबर.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: आप भी अपने सुबह की पहली चाय की मजा ले रहे हैं तो ऐसे में आपको भी शामिल करते हैं. और जो पहला टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप हो चुका है हमारे प्लेटफॉर्म पर, गुड मॉर्निंग अभी क्वीन सुन रही हैं तो आप भी हमें सुन रहे हैं, 5599 पर अपने मैसेज ज़रूर भेजिए ताकि हमें पता तो चले कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊँ कि एक इंस्पिरेशनल कोट है या फिर एक सेइंग है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ. आपने लोगों को देखा होगा कि आम से लदे हुए पेड़ पर ही ये पत्थर मारते हैं. और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि जब ये पत्थर आम के पेड़ पर मारेंगे तो कहीं ना कहीं इनको बदले में, जवाब में जो पेड़ है आम ही देगा. तो ऐसे में अगली बार कोई आप पर शब्दों से वार करे, पत्थर जैसे शब्दों से वार करे, तो इतना ही समझ लीजिएगा कि आपके पास में कुछ ना कुछ तो स्पेशल है देने को जो उनको चाहिए.

0: हम्पर दिस इज मी अवी कीपिंग यू कंपनी इट्स 17 अवे फ्रॉम 7 और आपका साथ दे रहा हूँ 104.2 FM साथ में रोवा पर. अगर जो अभी तक आपने हमको यानी कि हमारे हम के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम डालते रहते हैं. जैसे कि कल हुआ फिजी कीर्तन संग्रह का रिकॉर्डिंग वैदिक सेंट्रा पापटोए में, और यहाँ पर हमने जो रिकॉर्डिंग की है इसकी कुछ झलकियाँ हमने डाली है हम फेसबुक पेज पर, और आपको ये देखकर पता लगेगा कि जो यूथ है कितने तैयार हैं और इनके जो आवाज़ में जो कीर्तन गाए हुए हैं जल्द से जल्द इसको आप रोवा पर सुन सकेंगे.
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
5: Spring just got fresher with these great deals at New World North Island this week. Get avocados, 2 for $2.50, or whole chicken legs, $7.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: हाँ पर मैं अभी आपके साथ में कुछ कम्युनिटी न्यूज़ शेयर कर लेता हूँ और आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि महिंद्रा एनजेड दिवाली 2026 ये होने वाला है मेनेकाओ वेलोड्रोम पार्क पर, जिसे आप मेनेकाओ स्पोर्ट्स बाउल के नाम से भी जानते हैं। तो मोहम्मद सदी की टीम ये लाइव आ रही है इंडिया से, साथ में डीजे लकी भी आ रहे हैं भारत से, जहाँ पर डिलिशियस फूड स्टॉल्स ये सभी कुछ रहेगा, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट, फन राइड्स और साथ में फायरवर्क्स का एक फिनाले भी रहेगा। तो ये सभी कुछ रहेगा मेनेकाओ वेलोड्रोम पार्क मेनेकाओ में, ऑल्सो नोन एज मेनेकाओ स्पोर्ट्स बाउल, जहाँ पर आप जा सकते हैं सैटरडे 3rd of October को। याद रहे ये डेट, ये तारीख आप मार्क कर लीजिए, सैटरडे 3rd of October, जहाँ पर 1 PM से लेकर 9 PM तक ये पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। एंट्री बिल्कुल फ्री है और एनजेड दिवाली 2026 महिंद्रा साथ में एनजेडआई कम्युनिटी ट्रस्ट NAMI ने ये आपके लिए एक तैयार किया है, दिवाली का धमाका सैटरडे 3rd October को 1 PM से लेकर 9 PM तक। इसके साथ में वेद प्रचार वीक रहेगा मंडे 28 सितंबर से लेकर संडे 4th October तक, जिसके लिए आप जा सकते हैं 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोय में हर इवनिंग 6:20 PM से। ये जो हाईलाइट है इस इवेंट का कि ये 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, जबकि आर्य समाज को न्यूजीलैंड में एस्टेब्लिश हुए कुछ 30 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसके लिए आप जा सकते हैं 28 सितंबर से लेकर 4th October तक 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोय हर शाम 6:20 PM से।

हम पर मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ शुभकामनाएं शनिवार की. सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो है हम पर. आपको विश कर रहा हूँ अ वेरी गुड मॉर्निंग. आप भी घर से निकल पड़े हैं, काम की ओर बढ़ रहे हैं. हैव अ वंडरफुल डे एंड अ प्लेजेंट वन.

0: Saturday breakfast on Hum.
1: Yo, main hoon chhota sa chhora.
2: You're listening to Avineet.
3: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और सुबह के साथ बज चुके हैं. ऐसे में आपकी भी दिन की शुरुआत हो गई है. Welcome to the show. Saturday breakfast show है ये अभी के साथ में on your favorite dial. हम playing Bollywood's biggest hits, जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर. तो इसी तरह से साथ देती रहेगा जबकि ये कारवा चलता रहेगा आज आपके साथ में टिल वन. जी हाँ, 12 तक नहीं, 1 तक मैं आपका साथ दूंगा यहाँ से. और ढेर सारी बातें भी हैं और अभी थोड़ी देर में इस आवर पर आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ ओकलैंड में हो रहा है जहाँ पर आप जाकर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं. हाँ, यही बेटा वर्ड रहेगा कि अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं. कुछ ऐसी इवेंट्स है ओकलैंड में आज हो रही हैं, खासकर अगर जो आपने कुछ प्लान नहीं किया है और घर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि वीकेंड को यूँ ज़ाया ना करें, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए आउट एंड अबाउट. तो ये डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ. लेकिन अभी इस आवा को शुरुआत करते हैं के की साथ में और उनकी आवाज़ में. इस आवा की शुरुआत होने जा रही है. हाँ, 5599 अभी भी मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, आपको भी बारी बारी से शामिल करते रहेंगे. आपने अभी तक अपना जो संदेश है नहीं भेजा है, 5599 इज़ द नंबर जहां पर आप अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस हमारे पास में भेज सकते हैं.

0: से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी
2: सुबह हो गई मामू
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
3: सरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम अभी के साथ में 7:10 हो चुके हैं 7:10 और मैं भी अपने चाय की पहली चुस्की का मज़ा ले रहा हूं ऐसे में जो मैसेज आया है हमारे पास में रोनल आपने मैसेज किया थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग अभी भाई फ्रॉम ब्रदर्स एट सेंट्रल ग्रुप फोकलीव्स और हैव एन ऑसम डे अहेड गॉड ब्लेस शुक्रिया आपके मैसेज के लिए आपका दिन भी बिल्कुल प्लेजेंट रहे बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं क्या कुछ आपके आसपास ओकलैंड में हो रहा है जहां पर आप जाकर कुछ ना कुछ देख सकते हैं इसमें भाग ले सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं बस थोड़ी देर में आपके साथ में ये डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ

हाँ, पर मैं अभी आपका साथ दे रहा हूँ और आपको बता दूं कि आज ग्रीनवुड्स कोना स्प्रिंग फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर जो आप एप्सम ओकलैंड के आसपास है तो ये बेहतरीन मौका है आपके पास में, जबकि सुबह 9 से लेकर टिल 2 इन द आफ्टरनून यहाँ पर जो स्प्रिंग फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा ग्रीनवुड्स कोना में। और आपके लिए ढेर सारे एंटरटेनमेंट का भी बंदोबस्त किया गया है, जैसे कि लाइव म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट रहेगा, ढेर सारे डिलीशियस फूड स्टॉल्स भी रहेंगे, और इसके अलावा जो मार्केट स्टॉल्स है ये भी लगाया जाएगा। और आपको शायद ये जानकर आप इसको अग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट स्टॉल्स में काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें आपको मिलती हैं जिससे आप अपने घर को सजा सकते हैं। तो ये सभी कुछ मौका है आपके पास में, आप जाकर स्टॉल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा फैमिली एक्टिविटीज से भरा रहेगा ये दिन, अगर जो आप जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज के साथ में। तो आपको सिर्फ जाना होगा ग्रीनवुड्स कोना विलेज 1 नरोमा रोड एप्सम ओकलैंड में, और यहाँ पर सुबह 9 से लेकर शाम 2 तक यहाँ पर जो फेस्टिविटीज़ है चलती रहेगी। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा अगर जो आपको आज मैं $10 में एक ओल्ड टाइम क्लासिक फिल्म उमराव जान दिखा दूँ और आपको देखने का मौका दूँ तो कैसा रहेगा। $10 में ही आप एक ओल्ड टाइम क्लासिक चेकआउट कर सकते हैं। कैसे, बस थोड़ी देर में ये डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा।

0: दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rewind. सिर्फ रोवा पर.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
5: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
7: हाँ, अच्छा
6: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह.
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.
10: Auckland, time's running out to make your emergency plan this daylight saving weekend. What would you do if extreme heat caused a power outage? How would you get home if the bridge is closed in a storm? If you received a tsunami warning, where would you go? Take the time this weekend to sit down and make an emergency plan. Brought to you by Auckland Emergency Management and Auckland Council. Make your plan at aem.govt.nz.
11: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Saturday Breakfast on Hum.
12: यह है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो अभी के साथ में, और हमने कहा था कि आपको बताएंगे कि कैसे $10 में आप एक फिल्म चेकआउट कर सकते हैं आज. तो आपको याद होगा 1981 में एक क्लासिक मूवी उमराव जान रिलीज हुई थी, जिनमें आपने देखा था रेखा को प्लेइंग द टाइटल रोल. तो ये जो फिल्म है, इसके जो सेलेक्टेड सीन्स हैं, ये आपके लिए 5 PM से लेकर 8 PM तक ये स्क्रीन किए जाएंगे एट एलन मेलविल सेंटर, हाई स्ट्रीट और फ्रेबिक प्लेस के कोने में है. तो अगर जो आप एलन मेलविल सेंटर पहुँचेंगे 5 बजे, तो आपके पास में चांसेस रहेगा इस फिल्म को चेकआउट करने के लिए, जो सिचुएटेड है 2 फ्रेबिक प्लेस ओकलैंड में. ओकलैंड CBD में ये है, और आज शाम 5 बजे से ये स्क्रीनिंग शुरू होगी. $10 ही एंट्री है, और अगर जो आपको चेकआउट करना है तो आतिर जैदी को आपको कॉल करना होगा 0220450602 पर. तो यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. स्पाइसेस लिमिटेड है, 50 सीट्स पर सेशन, लेकिन एक ओल्ड टाइम क्लासिक जिसे कुछ नेशनल अवार्ड, फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. तो ये एक मौका है आपके पास में, खासकर अगर जो आप रेखा के ज़बरदस्त फैन हैं तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं. एक और एक मैसेज आया है पार्वती आपकी, आपके पास से. वेरी गुड मॉर्निंग आपको विश करते हैं, और आपको एक खास गाना सुनना है कल से. कल भी आपने रिक्वेस्ट की थी, तो ये जो गाना है आपने रिक्वेस्ट किया है, ये हम फॉरवर्ड करेंगे हमारे म्यूज़िक के जो इंचार्ज है पूजा को, ताकि ये आपके लिए जल्द से जल्द हम डाउनलोड करके आपके लिए ओनिया प्ले कर सकें. ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, आपका साथ देता रहूँगा टिल वन. अब की बार विशाल मिश्रा को शामिल करते हैं. हाँ, आप भी हमें सुन रहे हैं, आप गाड़ी में है, सफ़र कर रहे हो, अपने काम की ओर बढ़ रहे हो, या फिर आप घर बैठे बैठे रोवा पर आप हमें सुन रहे हो, तो ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत कीजिए, 5599 पर अपना जो मैसेज है हमारे पास में भेजिए, ताकि हम जानें कि कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. 5599 इज़ द नंबर. मैं हूँ आपका साथी अभी.

0: इस 18 अवे फ्रॉम 8 अभी के साथ है और आपको बता दूं एक नए रूल के बारे में जो अक्टूबर फेस्ट से इन्फोर्स हो जाएगा। अभी हाल ही में ये कानून बनी है जहां पर जो बसेस है अगर जो ये बस स्टॉप से पुल आउट कर रही हैं तो आप एज अ मोटरिस्ट अगर जो आप ऐसे रास्ते पर हैं जहां पर स्पीड लिमिट इज 60 किलोमीटर्स या लेस तो आपको फेस चेंज उस बस को देना पड़ेगा जो बस स्टॉप से पुल आउट कर रही है। तो ऐसे में इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो कानून है अक्टूबर फेस से इन्फोर्स हो जाएगी तो आप अभी से ही उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो एक आदत डाल लीजिए कि अगर जो आप बस स्टॉप्स पर बसेस को देख रहे हैं पुल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ऐसे रास्ते पर है जहाँ पर स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर से कम है तो आप क्या करें इनको वे दीजिए ताकि ये भी निकल कर सफ़र कर सके। जबकि बस ड्राइवर्स के पास में भी काफ़ी जिम्मेदारी होती है, काफ़ी लोगों को ये कैरी करते हैं और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक में हम देखते हैं कि बसेस अक्सर अपने जो इंडिकेटर्स है ये सिग्नल करके खड़ी रह जाती है, वेट करती है कि कब इनको मौका मिले। तो जबकि अक्टूबर फेस से ये रूल इन्फोर्स हो जाएगी जहाँ पर आपको बसेस को मौका देना पड़ेगा।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: 80s ke retro gaane.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
2: राज, रोमांस, एक्शन और सुपरनेचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, एम तमन्ना।
3: इस वन की काली शक्ति रात के साये से भी काले।
2: द वन, नाउ शोइंग इन सिनेमास।
4: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है,
5: जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास।
2: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग टीबीसी।
6: हमें माता का बुलावा आया है।
7: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
8: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
9: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरिज ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट bilcaps.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर
10: Playing Bollywood's biggest hits.
11: Toast, coffee aur hum ka energy. Saturday breakfast on hum.
12: सुबह सुबह जो कॉफ़ी की अरोमा होती है इसकी अलग बात होती है, इसकी खुशबू की अलग बात होती है। तो आप भी फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं या फिर बेकरी में हैं और जो फ्रेशली बेक्ड जो गुड्स है इसका आप मज़ा ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको याद करते हैं, आपको शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो विद अवी।

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: यो मैं हूँ सुता सा छोरा
0: You're listening to Avineet.

That's right, मैं हूँ अभी आपका साथी और 8:03 हो चुके हैं और ऐसे में आप वेरी गुड मॉर्निंग आपको विश करते हैं। इधर ओकलैंड सीबीडी में बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए हैं और आप भी रास्ते पर है, सफर कर रहे हैं तो होले होले ट्रेवल कीजिएगा सो देट यू रीच योर डेस्टिनेशन सेफली और हमका साथ देते रहे ताकि आप एंटरटेन्ड भी रहे और ये सभी कुछ आपके साथ में रहेगा। आप देश में हैं सुन रहे हैं हमें, साथ में विदेश में आप रोवा के जरिए आप हमें सुन रहे हैं या फिर 104.2 FM के साथ में आप हमारा साथ दे रहे हैं। लेट मी नो ऑन 5599 कि आप हमें सुन रहे हैं, अपना नाम, एक प्यारा सा संदेश या फिर आप कुछ सुनना चाहते हैं ये भी हमारे पास में भेज सकते हैं। मैं हूँ अभी आपका साथ देता रहूँगा टिल वन, अभी ही आपने ट्यून इन किया है। वेलकम टू द शो, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो मेरे साथ में।

पर रवि के साथ है और जबकि ब्रेकफास्ट का समय है, काफ़ी जगहों पर आप ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे और साथ में हम का मज़ा ले रहे हैं साथ साथ में। तो फ्रेज एक न्यूजीलैंड की ब्रेड कंपनी है, इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रमोशन रन किया है अपने कंज्यूमर्स के लिए, जहां पर इन्होंने पूछा अपने कंज्यूमर्स से कि अपने लिए ये खुद एक सैंडविच तैयार करें और सैंडविच तैयार करने के बाद में उस सैंडविच का एक फ़ोटो ले और साथ में फ़ोटोज़ लेने के बाद में क्या रेसिपीज़ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुई है इसका एक लिस्ट तैयार करके वो इनके पास में भेजे। तो फिर उसके बाद में जितनी एंट्रीज आई फ्रेज ने अपना टॉप 5 सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद में अपने वेबसाइट पर उसको लिस्ट किया है। जैसे रिचर्ड है वेलिंगटन से, उन्होंने अपने सैंडविच का नाम दिया है द जेंटलमैन फार्मर। और फिर उसके बाद में कीवी एज किचन एक सैंडविच है, साथ में समा इन अ सैंडविच लुइस ओकलैंड से इन्होंने पार्ट लिया जिनका सिलेक्शन हुआ है, और साथ में द रीगल लक्स एक और एक सैंडविच है कीवा ओकलैंड से, इन्होंने इसमें पार्ट लिया है। और फिर रिलीज द क्रंच, यहाँ पर जो 5 सैंडविच है इनको सेलेक्ट करके डाल दिया है अपने वेबसाइट पर, जहाँ पर लोग जाकर वोट कर सकते हैं। तो सबसे कम वोट्स अगर जो मैं आपको बताऊँ, समा इन अ सैंडविच को मिले हैं लुइस को ओकलैंड से, साथ में कीवा ओकलैंड से इनको द रीगल लक्स के लिए सबसे कम वोट मिले हैं, और साथ में रिलिश द क्रंच ये भी सबसे कम वोट्स पर है, यानी कि दे आर ऑल इक्वल विथ 3 वोट्स, जबकि कीवी एस किचन ये लीड कर रही है विथ 37 वोट्स। तो अगर जो आप कुछ ऐसे सैंडविचेस को देखना चाहते हैं तो फ्रीज के वेबसाइट पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी आम लग रहे हैं, लेकिन क्या कहें कि शायद सिलेक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ देखकर हुआ होगा। लेकिन जो सबसे कम वोट्स है द रीगल लक्स, अगर जो मैं इसको देखूं तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है हॉट स्मोक्ड सेमन का, साथ में एवोकाडो और क्रीम चीज़, तो ये सभी कुछ मिलाकर तैयार किया गया है द रीगल लक्स को। जबकि 8:12 हो चुके हैं, तो इज इट टू एली टू आस्क, आई होप नॉट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट सैंडविच, आप क्या फिलिंग पसंद करते हैं अपने सैंडविच में, इफ़ यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट तो कौन सी सैंडविच आपको ज़्यादा पसंद है, इसके बारे में 5599 पर आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। इज़ देयर अ फेवरेट वन जो आपको बेहद पसंद है, जिसके बारे में आप हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं घर पर, तो ये जो सैंडविच है इसके बारे में आप हमारे पास में 5599 पर भेजें। और अगर जो ज़्यादा टैक्सिंग ना लगे आपको, यानी कि बहुत मुश्किल ना हो, तो ये भी बताएं कि क्या फीलिंग आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो 5599 पर आप अपने सैंडविच के बारे में हमारे पास में शेयर कर सकते हैं। 8:13 हो चुके हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई ना कोई आप में से ज़रूर अपने सैंडविच के बारे में बताकर भेजेगा।

0: पर बातें हो रही हैं सैंडविच को लेकर, जबकि फ्रेस ने अपने जितने भी कंज्यूमर्स हैं इनके लिए ऑर्गेनाइज किया था सैंडविच कंपटीशन, जहां पर 5 सिलेक्शंस हुए हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ में शेयर किया। और फिर मैंने कहा कि आपका फेवरेट सैंडविच क्या है, अगर जो आप हमें बता सके तो 5599 पर, व्हाट सैंडविच डू यू रियली लाइक एंड प्रिफर, और क्या क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं, कैसे आप उसको तैयार करते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं टुगेदर विद, अगर जो आप फोनली उस सैंडविच को कोई नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास में 5558 ने मैसेज किया है, आई लाइक मुंबई क्लब सैंडविच, जो तैयार किया जाता है मिंट चटनी के साथ में, टोमेटोस को लेकर, साथ में आलू को लेकर और साथ में एवोकाडो को लेकर। वाह, वंडरफुल, बिल्कुल हेल्थी टेस्ट है आपका और आई एम प्रीटी श्योर ये खाने में भी काफ़ी मज़ेदार रहेगा। तो हाँ, क्लब सैंडविच, मुंबई क्लब सैंडविच, दैट्स राइट, मिंट चटनी साथ में टोमेटोज, पोटेटोज और एवोकाडो को लेकर तैयार किया गया है। अगर जो आपका भी कोई पर्सनल प्रेफरेंस है जिसे आप पसंद करते हैं, या फिर अभी इस समय एज यू स्पीक आप इसका मज़ा ले रहे हैं अपने सैंडविच का, तो ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें 5599 पर, कौन सी आपकी फेवरेट सैंडविच है, क्या फीलिंग आपको पसंद है।
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम

0: हम पर रवि का साथ है और जबकि 8:22 हो चुके हैं, तो आपको बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो के बारे में बता दूं जो आज और कल रहेगा JW मेरियट ओकलैंड में। तो सुबह 10 से लेकर रात 8 तक ये जो एक्सपो है ये चलती रहेगी, दैट्स फॉर टुडे एंड टुमारो। तो अगर जो आपको भी एक हाई ROI की तलाश है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विद जीरो टैक्स, तो ये सभी कुछ बातें आपके साथ में रहेंगी आफ्टर 10, जबकि कशिका जी हमारे साथ में जुड़ जाएंगी 10 के बाद में, लेकर आएंगी आपके लिए लाइव रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ में शेयर करती रहेंगी, ताकि आप भी एटलीस्ट जो दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो है इसके बारे में आप जाकर और भी जानकारी हासिल कर सके, इन्फॉर्मेशन आप ले सके, और ताकि अगर जो समय आने पर आपको लगे कि दैट इज़ अनदर एवेन्यू जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहे इसके लिए। तो ये सभी कुछ आपके साथ में रहेगा आफ्टर 10। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक पेज पर मैंने आज सुबह सुबह एक वीडियो अपलोड किया है, एक इंस्पिरेशनल वीडियो जहां पर मैंने कहा है कि लोग अक्सर जो पेड़ पर लदे हुए आम हैं, यानी कि जो आम से लदे हुए पेड़ हैं, यहाँ पर अक्सर लोग उसको तोड़ने के लिए लकड़ी या फिर पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जो आपको भी कोई ऐसा शब्दों पत्थर जैसा शब्द का इस्तेमाल करके आपको भी या फिर आप पर भी वार करता है, तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके पास में कुछ है स्पेशल है जो उनको चाहिए, जो उनके पास नहीं है। तो ये वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, एंड हाँ, वहाँ पर कमेंट्स में आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी।
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
6: That is very that is a very acceleration.
5: That's a very acceleration. Yeah.
6: Amazing acceleration.
5: This is my fancy English. That's a very.
6: अरे होता है यार, सब चलता है, आधी नींद में हूँ मैं।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: यह सैटरडे ब्रेकफास्ट शो विद अवी, और जबकि आज है 26th ऑफ सितंबर, तो ऐसे में आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं सविता मल्होत्रा जी, माउंट रोस्किल की ये रहने वाली हैं। आज आपका जन्मदिन है, ऐसे मौके पर आपके लिए ढेर सारे विशेज आए हैं। भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट ने आपको सुबह सुबह याद किया है और आपको विश किया है अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आज आपका जन्मदिन है, हमारी ओर से, पूरी हम की टीम की ओर से, दिस डे बी अ स्पेशल वन फॉर यू। आप भी इंजॉय करते रहें, आपको ढेर सारा प्यार और उपहार मिले आज दिन भर। और इसके साथ में अगर जो आप भी कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है, तो आप 5599 पर अपना जो संदेश है, मैसेज है, हमारे पास में भेज सकते हैं।

हम पर रवि का साथ है और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आपके साथ में चर्चा करते रहते हैं। जबकि लेटेस्ट समाचार ये आया है कि ईरान ने प्रपोज किया है एक डील टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज 7 दिनों के अंदर अंदर, अगर जो यूएस उनके कंडीशंस को मान लेती है। तो ये जो एक विषय है जो खिसता ही जा रहा है। और मैंने जबकि फ्यूल पर एक नज़र दौड़ाया है तो कुछ जगहों पर आज $3.31 पर लीटर तक अनलीडेड आपको मिल सकता है, तो आपको शॉप अराउंड करना पड़ेगा। जबकि हमने आपको लास्ट वीक बताया था एक ऐप के बारे में जहां पर आपके एरिया में चीपेस्ट फ्यूल आपको मिल सकती है। इसके बारे में अगर जो आप जानना चाहते हैं तो 5599 पर हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं। जबकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुलने के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, जबकि ईरान ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर जो इनके कंडीशंस को मान लेती है, जिनमें शामिल है जो नेवल ब्लॉकेड है इसको ईरानियन पोर्ट से हटाना, साथ में जो सेंक्शंस दिए गए हैं ईरानियन ऑयल सेल्स पर ये भी हटाना, इसके अलावा जो सीज फायर है उसको ऑब्जर्व करना, तो ये सभी कुछ जो समाचार है आप 10 पर सुन सकेंगे। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए कुछ $3.31 तक मैंने फ्यूल प्राइसेस देखे हैं पर लीटर। और अगर जो आपके एरिया में, आपके इलाके में कोई सस्ते डील्स भी अवेलेबल है इसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं 5599 पर। लेकिन ऐप्स भी है, फ्यूल ऐप्स, अलग अलग सर्विस स्टेशन के जो ऐप्स होते हैं, अगर जो आप इनको भी डाउनलोड कर लेते हैं तो जो डिस्काउंट्स है, रिवॉर्ड्स है, ये आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल या फिर फ़ायदा उठा सकते हैं।

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है, जबकि कुछ 17 मिनट बाकी है 9 बजने में। 9 के बाद में आपकी बातें करवाएंगे जितेन लाल के साथ में भी, जो अध्यक्ष है, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स है और चीफ कंपोनेंट है फॉर 11th सनातन वर्ल्ड कप 2026 जो कि ऑकलैंड में होने को है फ्रॉम 30th ऑफ सितंबर। तो इसके बारे में भी ढेर सारी जानकारियां आपको जितेन जी देंगे आफ्टर 9। कोशिश यही रहेगी हमारी। इसके साथ में 6544 आपने मैसेज किया है, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, और ज़रूर इस पर जो इन्फॉर्मेशन है मैं बस थोड़ी देर में ढूंढ कर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं ऑन दी एयरवेव्स ऑफ हम।
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी
2: सुबह हो गई मानो
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
3: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: Media.
1: Streaming on Rover.
2: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
3: 3, 2, 1, rush!
4: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards rush.
5: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
7: This weekend's to-do list is filling up fast. Kids' activities, visiting the grandparents. But Woolworths takes going shopping off the list with delivery right to my door. I can even sit down before it arrives. That's my kind of Woolies.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
9: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में. बिल्डकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM. देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड. डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन. रजिस्टर नाउ. विजिट buildcaps.com. प्रमोटेड बाय वेबटाइम.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best. Hamari good brands nahi hai.
10: Hum. Saturday breakfast on Hum.
12: सरडे ब्रेकफास्ट शो हम पर है और जितने भी हमारे राइट शेयर ड्राइवर्स हैं आप आउट एंड अबाउट हैं हम पर हमारा साथ दे रहे हैं वेलकम टू द शो. खासकर ये अगला सूचना अटेंशन टू ऑल उबर ड्राइवर्स. अगर जो आपने क्लेम लॉन्च कर दिया है विद नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज आपका क्लेम प्रोसेस हो रहा है और एक क्लेम्स मैनेजर जो है आपसे जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करेंगे. और अगर जो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो इनटेक फो इज नाउ ओपन. प्लीज़ नोट कर ले कि जो नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज जो फोन टीम है ये पूरे कैपेसिटी पर काम कर रही है तो आप प्लीज़ इनको कॉल ना करें. इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एट nyfservices.com पर.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with electoral commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enroll, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर। 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।
4: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and

0: Saturday Breakfast on Hum. Masti Meter on Hum.
1: Yo, main hu chhota sa chhora.
0: You're listening to Avineet.
2: हम पर रवि का साथ है और 9 बज चुके हैं. आमतौर पर वी वुड हैव बीन हाफवे थ्रू द शो, लेकिन हमारा और आपका साथ आज एक तक रहेगा. और इस मोड़ पर आ चुके हैं जहां पर आपके लिए लेकर आए हैं मस्ती मीटा, जहां पर फन कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई क्विज आपके साथ में रहता है. पूरा का पूरा इंटरेक्टिव सेशन ये रहता है ये आवा, और इसके साथ में कुछ अजीबो गरीब और हॉट एंड हैपनिंग सॉन्ग्स भी रहते हैं जो बिल्कुल मस्ती भरे अंदाज में रहते हैं. ये सभी कुछ आपके साथ में बस थोड़ी देर में. लेकिन सबसे पहले सनमपुरी आ रहे हैं अपने साथियों के आवाज़ में, और इसके बाद में एक फन कॉन्टेस्ट आपके साथ में खेलेंगे.

हम पर यह है मस्ती मीठा अभी का साथ है और आज के लिए हम आपको कोई म्यूजिकल इंट्रो नहीं सुनवाएंगे लेकिन लेकर आए हैं एक हंसी का क्लिप। हाँ, हंसना ज़रूरी है इसीलिए आपको ये सुनवाने जा रहे हैं और ऐसे कॉमेडियंस की ट्रेडमार्क हंसी है शायद जिसे सुनकर आप पहचान ही जाओगे और दो दिग्गज कलाकारों की हंसी है इस क्लिप में। आप इनमें से एक भी पहचान जाए तो पहचानने के बाद में जो जवाब है 5599 पर आप अपने नाम के साथ में हमारे पास में भेजिए और उसी मैसेज में अगर जो कुछ और भी आपको सुनना है, कोई गाना है जिसको आप सुनना पसंद करते हो आज सुबह सुबह, तो ये भी आप हमारे पास में लिखकर उसी मैसेज में भेज सकते हो। तो हियर इट गोस, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और इस हंसी को सुनने के बाद में बताइए कि किस कलाकार की ये हंसी है जिसे आप सुनने जा रहे हैं। तो दो कलाकारों की आवाज है अगर जो आपको, एक इसमें से काफी ऑब्वियस है, इनकी ये ट्रेडमार्क हंसी थी और अगर जो आपको जवाब पता चलता है तो 5599 पर अपने नाम के साथ में भेजें। एक बार फिर आपको सुनवाता हूँ।

कुछ लोगों की अलग अलग हंसने की स्टाइल होती है, अंदाज होती है। कुछ लोग हंसते हैं ऐसा लगता है कि कुछ इंजन कहीं किसी गाड़ी की स्टार्ट होने वाली है, या फिर कुछ अलग यूनिक हंसी होती है। तो आपको अगर जो जवाब पता चला है 5599 पर अपना जो जवाब है, मैसेज है हमारे पास में, भेज सकते हैं।

आपको फिगर आउट करना है कि किसकी हंसी है. कुछ लोग होते हैं ना जो आप उनको कितना भी बता दो, कुछ जोक्स बता दो या कुछ हंसी के इंसिडेंट्स बता दो, लेकिन आप शायद कितना भी सुनकर उसको हंसने लगेंगे, हंसकर लोटपोट होने लगेंगे, लेकिन जिनको आपने ये बताया है वो शायद हल्की सी एक मुस्कुराहट ही देंगी या देंगे. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यूँ कहा जाता है कि हंसने में पैसे लगते हैं. तो अगर जो आपने आइडेंटिफाई किया है ये किस कलाकारों की, किन कलाकारों की आवाज़ है, जो कॉमेडियंस है, ट्रेडमार्क हंसी इनकी है, अगर जो आपने सुना है और आपको सुनने के बाद में लगता है कि कहीं ना कहीं पर्दे पर आपने इनको देखा है या फिर इस हंसी को सुना है, तो आप हमारे पास में 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हो. और जैसा कि हमने कहा था कि जब आप जवाब भेजें तो कोई गाना अगर जो आप सुनना चाहते हैं इसका भी डेडिकेशन रिक्वेस्ट हमारे पास में आप भेज सकते हैं. तो पल आपने सही पहचाना, आपने वन ऑफ द कॉमेडियंस को पहचाना है, तो आपने जवाब भेजा है और आपने गाने की रिक्वेस्ट की है, ये भी आपके लिए बजाएंगे. और साथ में कीर्ति है फांगरे से, प्रोग्राम को सुन रही है, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया साथ देने के लिए. और आपने भी सही जवाब दिया है, आपके लिए भी गाना बजाने की कोशिश करेंगे जबकि मस्ती मीटर का ये सफ़र है. तो चलो एक बार फिर आपको सुनवा ही देते हैं ताकि आप सुनने के बाद में फिगर आउट कर सके कि किन कलाकारों की ये हंसी है. डबल 5999 पर आप अपने जवाब हमारे पास में भेज सकते हैं.

0: आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM, साथ में रोवा पर। आपको याद दिला दूं कि कशिका जी घर से निकल चुकी हैं, जबकि वह पहुंच रही है बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो में। जी हां, वो आपके लिए लेकर आएंगी रिपोर्ट्स 10 बजे के बाद से, और आपको बताएंगी क्यों आपके लिए इन्वेस्टमेंट इन दुबई एक फ़ायदेमंद प्रपोजल हो सकता है। क्योंकि जो सबसे पहला जो एडवांटेज है कि जीरो टैक्स इन्वेस्टमेंट्स शायद आप कर सकते हैं विद अ हाई रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। तो अगर जो आपको आउट ऑफ न्यूजीलैंड कोई इन्वेस्टमेंट की तलाश है, तो इसके बारे में कशिका जी 10 बजे के बाद में आपको बताएंगी। लेकिन जो सवाल हमने किया था आपसे, और शेरिन आपका भी जवाब आया है, थैंक यू सो मच, आज आप प्रोग्राम सुन रही हैं। इसके साथ साथ में शवीन आपने भी ट्राई किया, शुक्रिया दोस्त। और इसी तरह से एक बार फिर आपको सुनवा ही देते हैं ताकि इसके बाद में जो जवाब है आपके साथ में शेयर कर लेंगे। सो हियर इट गोज। और शायद शेरिन आप थोड़ा सा स्लिप हुई थी, तो एक बार फिर आप इसे सुन लें। हाँ, तो ये आपको पता लगाना है, 5599 पर हमारे पास में जवाब देना है। और बस इस प्रोमो के बाद में, कुछ प्रोमो के बाद में ये जो जवाब है आपके साथ में शेयर ही कर लेंगे। Playing Bollywood's biggest hits. Budget hit the gaane.
1: Have you been to Big Boss?
2: I
1: right?
2: went yeah. there once, yeah.
3: That was for Nikamma, na?
2: For Nikamma, yes.
3: So, what do you think about Salman Khan?
2: मैंने सलमान सर

0: anywhere you get your podcast.
1: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और कीर्ति की रिक्वेस्ट पर जो फांगरे से प्रोग्राम सुन रही है ये अगला तराना आपके नाम कीर्ति एंजॉय दिस वन आउट देयर जबकि मस्ती मीठा है ये 10 तक चलता रहेगा ये कारवा और फिर 10 के बाद में कशिका जी का साथ भी रहेगा जबकि वो लेकर आएंगी आपके लिए दुबई एक्सपो का आउटडोर ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट्स

0: मस्ती जरूरी है मस्ती मीटर के साथ।
1: That's right, मस्ती जरूरी है लाइफ में, स्पेशली आफ्टर ए हेक्टिक वीक, जबकि वीकेंड का समय है, माहौल है। ऐसे में जो क्लिप हम आपको सुनवा रहे थे, काफी लोगों ने सही पहचाना, जिनमें शामिल है 8654, साथ में 402, और इसके अलावा 8654 आपने दोबारा भेजा था, और शविन आपका भी मैसेज हमारे पास में आया है। तो आप सभी ने सही अंदाज़ा लगाया था, इसके साथ में पल थी और आपने भी सही पहचाना था। ये आवाज़ें थी जोनी लेवा साथ में दिनेश हिंगू की। दिनेश हिंगू के बारे में अगर जो आपको बताए तो ये अभी 86 ईयर्स के हैं और April 13, 1940 में इनका जन्म हुआ था, और साथ में काफ़ी अरसों से ये फिल्मों में काम कर रहे हैं। हालांकि इनकी शुरुआत हुई थी एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह, ये शुरू शुरू में नज़र आते थे, और ख़ास करके किशोर कुमार की म्यूज़िकल शोज़ में ये इनका एक स्लॉट होता था जहां पर ये कॉमेडी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते थे ऑन स्टेज। और अभी हाल ही में ये भी बताया गया है कि जोनी लेवा ने कहा है एक इंटरव्यू में कि इनको शुरू शुरू में ब्रेक देने वाले दिनेश हिंगू ही थे जिन्होंने इनके टैलेंट को पहचाना और बाद में इनको स्टेज शोज करने के लिए इनकरेज किया, साथ में काफ़ी सपोर्ट भी किया। और जो आवाज़ें थी दिनेश हिंगू और जोनी लेवा की, इन दोनों की आवाज़ थी ओवर टेलीफोन कॉन्वर्सेशन फ्रॉम बाजीगर, तो ये आपको सुनवा रहे थे। तो ये सभी कुछ मस्ती मीटा में आपके साथ में चल रहा था, लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब की बार के लिए आनंद राज आनंद को शामिल करते हैं।
2: Yeah! Satisfied! We're winners! Give one reason to come alive!

0: हम पर यह है मस्ती मीठा, और जबकि मस्ती भरी बातें हो रही हैं तो आपको याद दिला दूं बाली इन बैंकॉक जो गेटवे है ये 50% सोल्ड आउट हो चुका है। तो याद रहे जो सेंडी और रुस्बे का जो ट्रिप है टू बाली इन बैंकॉक, ये मार्च 2027 ईस्टर गेटवे है, इस पर जो 50% की टिकट से ये सोल्ड आउट हो चुकी है। तो ऐसे में अगर जो आप भी इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि यू फील मोर कम्फर्टेबल ट्रेवलिंग अमोंग अ ग्रुप, तो ये आपके लिए खास है। आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके, या फिर आप सन टूर्स को 0800 4786 868, नंबर एक बार फिर से 0800 4786 868 पर आप उनको कॉल करके अपने टिकट्स के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ में जितने कॉस्ट है उसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा पैकेज डील है जहां पर आप पैसे भरकर फिर उसके बाद में जब आप बैंकॉक या फिर बाली में घूम रहे होंगे तो इट्स ऑल पेड फॉर, जहां पर आप डेस्टिनेशंस का पूरा मजा ले सकते हैं।
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल, और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
4: अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का, माइटिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के साथ क्लीनिंग, स्टोरेज, शेल्विंग, रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स। सीजन सीज अप्लाई, एंड्स अक्टूबर 14th। स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माइटिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
5: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us, Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
6: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
7: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर। 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।

0: ये है मस्ती मीटर।
1: मस्ती मीटा है और मैं हूं अभी आपका साथी। अगर जो आपने नेटफ्लिक्स पर चुंबक नहीं चेकआउट किया है तो आई विल रिकमेंड कि आप इस वीकेंड उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। जबकि एक ऐसी कहानी एक कॉलोनी पर बेस्ड है जिसका नाम है चुंबक कॉलोनी और ये चेंबूर मुंबई के एरिया में बेस्ड हुई कहानी है और एक कॉमेडी फन फील्ड अफेयर है जहाँ पर अच्छे अच्छे कलाकारों को आप देख सकते हैं जिनमें शामिल है नीना गुप्ता, साथ में दिवेन भोजानी। दिवेन भोजानी इज़ टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपने पहले भी इनको देखा है कॉमेडी रोल्स में लेकिन इस बार के लिए ही हैज टेकन इट अ नॉच हायर। इनके साथ में अर्जुन बिजलानी जैसे कलाकार हैं, साथ में सुमित व्यास है, सुमित राघवन है और साथ में हेली शाह है। तो इट्स अ गुड वॉच जिसे मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। मैंने कुछ 8 एपिसोड इसके देख लिए हैं और हाँ, हंसने के लिए, टाइम पास के लिए बिल्कुल फन फील्ड है और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो याद रहे चुंबक इज़ करंटली स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। एक और ऑप्शन है जिसे आप देख सकते हैं।

0: मीठा ऑन हम।
1: अब तो समय हुआ कि आपके लिए मस्ती मीठा को रैपअप करे और 10 पर आपके लिए रहेगा न्यूज और उसके बाद में और भी बातें रहेंगी, लेकिन अभी के लिए इसावा का जो फाइनल सॉन्ग है ये है एक धमकी भरा सॉन्ग। क्यों सुनिए।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J. Crew.

0: ब्रेकफास्ट में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर।
1: यो, मैं हूँ सूटा सा छोरा।
0: You're listening to Avineet.
2: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में। 10:02 हो चुके हैं और ऐसे में ये मोड आ गया है जुगाड़ जंक्शन का, हमारा और आपका साथ रहेगा टिल वन टुडे। जी हाँ, 12 तक नहीं बल्कि 1 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आप हमें सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर, शुक्रिया ऐसा ही साथ देते रहें। इसके अलावा एक और एक जरिया है जहाँ पर आप हमें प्यार दे सकते हैं, हमारे हम फेसबुक पेज पर, हम 104.2 FM का जो फेसबुक पेज है आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा 5599 पर, हालांकि ये आहिस्ता था लेकिन आहिस्ते आहिस्ते लोग मैसेज भेज रहे हैं। अगर जो आपका भी कोई लैंडमार्क ओकेजन है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ खुशी की बात है, आज आपका जन्मदिन है, तो हमारी ओर से आपको विश करते रहेंगे। लेकिन अगर जो शादी की सालगिरह भी है, इसकी खुशियां भी आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं बाय टेक्सटिंग मी ऑन 5599। ये सभी कुछ रहेगा, खासकर कुछ टिप्स भी रहेंगे हमारे साथ में, लेकिन बीच बीच में कशिका जी से भी मुलाकात होती रहेगी, जबकि वो आपके लिए लेकर आएंगी लाइव रिपोर्ट्स, जबकि वो पहुंचने ही वाली है और जाकर आपके लिए आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में कि कैसे आपको दुबई में प्रॉपर्टी लेने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जबकि दुबई प्रॉपर्टी का जो एक्सपो है ये आज और कल रहेगा 10 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक एट JW मेरियट इन ओकलैंड। तो इस पर कुछ बातें कशिका जी भी आपको बीच बीच में बताती रहेंगी।

हम पर यह जुगाड़ जंक्शन अभी के साथ में 10:10 हो चुके हैं और पहला टिप आपको बताने वाले हैं आज। अगर जो आप एक प्राउड का ओनर है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके जो गाड़ी की बैटरी होती है, अगर जो हाइब्रिड नहीं है तब मैं आम गाड़ी की बैटरीज की बात कर रहा हूँ, तो इनको क्लीन करना, इनके टर्मिनल्स को क्लीन करना ज़रूरी है। अक्सर जो बैटरीज है ये 3 से लेकर 5 साल तक चलती है, और अगर जो आप इन बैटरीज को देखेंगे तो कभी कभी एक ग्रीन इंडिकेटर होता है जो दिखाता है आपको दैट द बैटरी इज़ स्टिल हेल्थी और ये चलेगी अभी। लेकिन अगर जो आपको ये इंडिकेटर्स नहीं दिख रहे हैं या फिर आपको याद नहीं है कि कितने साल हो गए हैं आपको लास्ट बैटरी चेंज किए हुए, तो यू कैन गो टू अ लोकल जो का पार्ट सप्लायर्स है इनके पास आप जा सकते हैं। मोर देन वन ओकेजन ये आपको हेल्प कर सकते हैं और आपके लिए बैटरीज भी चेक कर सकते हैं, दे कैन गिव यू एन एडवाइस। तो याद रहे जो बैटरीज है आमतौर पर 3 से 5 साल तक चलती है, लेकिन अगर जो आपको याद नहीं है कि कितने दिन हुए बैटरीज रिप्लेस करने में, तो आप जाकर इनको दिखा सकते हैं, दे कैन एडवाइस यू कि आपकी बैटरी जो है हेल्थी है या नहीं। जो हाइब्रिड की बैटरीज होती है, आई हैव बीन एडवाइस्ड कि अगर जो आप इनको कभी जंप स्टार्ट या फिर बैटरीज डाई आउट हुई तो खुद जंप स्टार्ट करने की अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि जो हाइब्रिड बैटरीज है काफ़ी हाई पावर्ड बैटरीज भी होती हैं, तो उनसे आप इनके लिए आप किसी मैकेनिक को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो आम तौर पर आपकी आम गाड़ी है तो इनके लिए आप टर्मिनल्स को आप साफ़ कर सकते हैं विद अ वायर ब्रश। तो ये सभी कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर करते रहते हैं ताकि आप स्ट्रैंडेड ना रहे किसी भी इंस्टेंस में।

पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। और जुगाड़ जंक्शन में आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप फ्यूल रिफ्यूल करने जाए तो सर्विस स्टेशंस पर ज़रूरी है कि आप अपने टायर प्रेशर्स को एक बार फिर रीगेज कर लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, नॉर्मली जो टायर्स है अपना प्रेशर नेचुरली लूज़ कर देती है, और ये होने से जो आपके फ्यूल है ज़्यादा कंज्यूम करने लगेगी गाड़ी, और इसके साथ में कहीं ना कहीं एक अनइवन राइड रहेगी। उसके साथ साथ में जो टायर है इसकी ड्यूरेबिलिटी को भी नुकसान पहुंचेगा, यानी कि ज़्यादा दिन तक टायर्स चल नहीं पाएंगे। तो इसके कारण आपको ज़रूरी है कि जब भी आप सर्विस स्टेशन जाए तो ये याद रखें कि एटलीस्ट वंस अ मंथ आप अपने टायर प्रेशर्स को चेक कर लें। इसके अलावा मार्केट्स में ऐसे गैजेट्स मिलते हैं, या फिर यूँ कहें टोकन्स मिलते हैं, जिससे आप अपने टायर के थ्रेड्स नाप सकते हैं, क्योंकि टायर्स टाइम से समय से बदलना ज़रूरी है, एक तो आपकी सेफ्टी के लिए, दूसरी अगर जो आपको कहीं रास्ते पर जो नीली और लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल गई तो ये आपको जब टिकट्स देगी तो ये टिकट के बजाय अगर जो आप एडवांस में अपने टायर्स चेंज कर लेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर जो आप चाहते हैं कि किसी तरह से अपने टायर ट्रेड्स को आप चेक करते रहें तो आप किसी भी स्टोर में कार स्टोर में जाकर पूछ सकते हैं कि जो टायर ट्रेड्स नापने वाली जो छोटी से सिक्के की तरह होती है इसे आप खरीद सकते हैं और फिर अपने गाड़ी के टायर्स पर आप नज़र रख सकते हैं। ऑल ऑफ दिस हैपनिंग ऑन जुगाड़ जंक्शन विद अभी, हम पर आप मुझे सुन रहे हैं।

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: cash. Ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
2: Bunnings has great value nailed across the store. And with daylight savings starting this weekend, we can help you replace those smoke alarm batteries with EverReady 9-volt battery 2-pack, just $5.69. Head in store or online for more great value. Bunnings
3: Warehouse. Playing Bollywood's biggest hits.
4: Put your head to Gandhi.
5: Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
6: ये है जुगाड़ जंक्शन अभी के साथ है और हमारे पास में मैसेज किया था विमलेश ने पोर्ट वेकातो से और आपने बॉम्बे वाइकिंग्स का कोई भी गाना सुनना चाहा था तो आप आपके लिए ये पेश करने जा रहे हैं आई एम होपफुल दैट आप अभी भी सुन रहे होंगे एंजॉय दिस वन आउट देयर

0: अंबर, मैं हूँ आपका साथी अवि, और हमने कहा था कि ये आपकी बातें करवाएंगे कशिका जी के साथ में, जो कि भीगती भागती हुई पहुंच चुकी है बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट, और ये है JW मेरियट ओकलैंड में। तो कशिका जी हमारे लाइंस पर है, ये आपके साथ में शेयर करने वाली है क्या कुछ हंगामा वहां पर हो रहा है। कशिका जी आपका
1: थैंक यू सो मच अवि, थैंक यू वेरी मच, एंड आई कैन से खुशामदीन, बिकॉज यू नो आई एम फीलिंग टोटली एट होम After so many years, 15 साल हो गए मुझे दुबई को छोड़े हुए, and I'm feeling at home with all the people talking here, you know, with the Arabic accent, and I've got Kasif with me from Buildcap, and they are all here from Dubai, going to be talking to us about what is Buildcap all about with the kind of investment. How are you, Kasif? And a very, very warm welcome on Hum. How have you been?
2: I'm very good, Kashika. Thank you for the warm welcome. We're here in the JW Marriott in Auckland City Centre. We're showcasing Dubai properties and Ras Al Khaimah properties as well. One of the sort of projects that we have is with Radisson Blu branded, and of course the benefits of Dubai, where you have 0% tax, also residency visa opportunities as well. So we're here in the JW Marriott, hopefully introducing all the opportunities to everyone that will be here.
1: Brilliant. हम बहुत सारी बातें और भी करने वाले हैं, लेकिन just to let you know what we have been talking about is a zero tax, and the second thing is about the golden visa. So I have with me here another lady, a gorgeous lady who's come down from Dubai. You know the authenticity of this is what I can say कि जब जो लोग दुबई से आए हैं हमारे पास, वो लोग आपको exactly बताएंगे कि क्या हो रहा है. So a warm welcome, and how are you today? And how have you been? Your name is a little difficult.
3: Karunya.
1: Okay, Karunya, welcome on Hum.
3: Thank you so much, New Zealand, for welcoming us. It's been amazing 1 week here. So we are doing back-to-back events in Hamilton, Wellington, and also in Auckland. We're getting amazing response from New Zealand people, especially from all the nationalities, you know, not only Indians. So that's amazing. And also, the best part of New Zealand is all are welcoming and they're eager about Dubai. And half of the Indians are already in Dubai and they know how it works. And this is the first place after war where we are coming and we're getting amazing response, because some of them say, you know, it's war and they cut the conversation. But here they said, I know, we know what is war, so that's okay. We know what is Dubai. We have been there. At least the connecting flight, they've been there, so they know Dubai. So we really like the trust that they have in UAE, and especially when you mentioned 0% tax, of course the property tax is zero, and now we know as Indians are also here, they're paying a lot of tax here regarding even the car or the property or corporate tax. Everything is zero in Dubai. Whatever you earn, whatever you put the money, that's all completely yours. So yes, please do visit us here whenever you're free, and we'll be more than happy to explain you the further projects.
1: ग्रेट, हम अभी थोड़ी बातें और भी करने वाले हैं यहाँ पे करुण्या के साथ एंड कासिफ के साथ, और भी लोग यहाँ दुबई से आए हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग कहीं पे भी हैं, मैं चाहूंगी, मौसम भीगा भीगा सा है, आई नो ये बादल हटने वाले बहुत जल्दी, सो टेक अ ड्राइव डाउन टू सिटी एंड कम डाउन टू JW मैरिट्स ऑकलैंड, जहाँ सुबह 10 बजे से लेके अब शुरू हो चुका है रात 8 बजे तक, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन टुडे एज वेल एज टुमारो. सो टेकिंग यू बैक टू द स्टूडियोज from JW Marriott's Buildcap has brought a beautiful idea for all of us. I'll see you soon. Over to you, Abhi.
0: थैंक यू सो मच. तो ये थी हमारी साथी कशिका, जो कि शामिल हो गई हैं JW मेरियट ओकलैंड से, और ये रिपोर्ट्स दे रही हैं आपको बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो के बारे में. तो थोड़ी देर में और भी बातें इनके साथ में होंगी, ताकि ये आपको और भी इन्फॉर्मेशन दे सके, और आप इनसे जाकर मिल भी सकते हैं, और वहाँ पर ढेर सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ मौजूद है जो दुबई से आए हैं और आपको दुबई के बारे में ढेर सारी बातें भी बताने को तैयार हैं.

0: Junction on Saturday Breakfast.
1: That's right, यह जुगाड़ जंक्शन, और आपको बता दूं कि 30th सितंबर से 11th सनातन वर्ल्ड कप ये भी शुरू होने वाला है ऑकलैंड में, जहां पर ढेर सारे गेम्स रहेंगे, ढेर सारी टीमें आ रही हैं जगह जगह से, फिजी से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, साथ में कनाडा से आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, तो ये जो सनातन टीम्स है ऑल ओवर द ग्लोब से आ रहे हैं यहाँ पर ऑकलैंड में भाग लेने के लिए, जबकि फुटबॉल का कंपटीशन रहेगा, साथ में गोल्फ रहेगा, नेटबॉल भी रहेगा और साथ में वॉलीबॉल के भी जो गेम्स है ये होने को है। तो फुटबॉल के जो मैचेस है ये खासकर बिल मैकिनली पार्क में होने को है, साथ में ओमिस्टन प्राइमरी ग्राउंड्स में, साथ में बैरिकेडिस पार्क के में जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन बिल मैकिनली में खासकर जो गेम्स है ये ज़्यादातर होंगे। और इसके साथ में और भी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, आने वाले दिनों में आपको देंगे। और 30th सितंबर से, तो मार्क द डेट्स, जबकि काफ़ी आपके ऐसे दोस्त भी आने वाले हैं जो इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे, तो आप उनसे भी कैचअप कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस फेस्टिविटीज हैपनिंग विद सनातन वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड, जो ला रहे हैं आप तक 11th सनातन वर्ल्ड कप।
0: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स,
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: You're listening to Avineet.
1: मैं हूँ अवि, आपका साथ देता रहूँगा टिल वन और एक तक. मैं और आपका, हमारा और आपका जो साथ है ये बनता रहेगा. ऐसे में ये देसी बीज शाउट आउट का मोड है. आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो 5599 पर ज़रूर भेजें ताकि आपके बिजनेस को एक शाउट आउट दे सके हम पर ऑन दी वेव्स ऑफ हम. अगर जो आप चाहते हैं किसी तरह से प्रमोट करें आपके बिजनेस को तो 5599 इज़ द नंबर और यहाँ से आपको शाउट आउट देते रहेंगे. मैं आपको बता दूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास में है टिल 12 है तो ऐसे में पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि लोग जान सके क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं, क्या क्या जो बिजनेस वेंचर है आपकी और किस एरिया में आप इसे ऑपरेट कर रहे हो. सो ऑल ऑफ दिस विद अवि ऑन हम. जबकि हमारा और आपका साथ टिल 1 रहेगा लेकिन इस आवा पर आपके साथ में ये मौका है सुनहरा सा ताकि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके. तो चलो देखो, इशू ने मैसेज किया है. उनके कंपनी का नाम है गेरा प्लम्बिंग लिमिटेड और अगर जो आपको किसी भी तरह की प्लम्बिंग सर्विसेज चाहिए, हाउस मेंटेनेंस आपको करवाना है अराउंड ओकलैंड, तो गेरा प्लम्बिंग लिमिटेड इज़ द नेम जहाँ पर आप इशू से बातें कर सकते हैं. इशू 02216633 पर आप गेरा प्लम्बिंग कॉल करके इशू से बात कर सकते हैं ताकि जितने भी आपके प्लम्बिंग नीड्स हैं या फिर हाउस मेंटेनेंस है, जबकि दिवाली भी आने वाली है, लोग अभी से घर के इर्द गिर्द काम करवाना शुरू कर देंगे तो आप कर सकते हैं. 02216633 पर कॉल और बात करें इशू से, जबकि ये गेरा प्लम्बिंग के हैं और ओकलैंड में अपनी सेवाएँ ये प्रोवाइड करते हैं. और आपके पास में भी कोई बिजनेस वेंचर है जिसके बारे में आप शेयर करना चाहते हैं डिटेल तो 5599 पर जरूर टेक्स्ट करें हमें.

0: कैफे और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: पर अभी के साथ है और हमारे पास में प्यारा सा टेक्स्ट आया है. कोमल ने मैसेज किया है, मैंने कहा उसे आप हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. गुड मॉर्निंग अभी, होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड. यू टू कोमल, एंजॉय योर डे. वीकेंड है, बिल्कुल मजा करते रहें और ऐसे में मौसम जैसा भी हो आप बिल्कुल हम के साथ में ऑसम रहें.

आप सुन रहे मुझे, मैं हूं अभी आपका साथ दे रहा हूं हम पर 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आपका साथी हूं। और अगर जो आपको वीकेंड में यू डोंट फील लाइक कुकिंग तो मेरे पास में सोल्यूशन है, क्योंकि आप जा सकते हैं एज वोटर टेकअवेज जो पकुरंगा में है, 113 तीरकाउ ड्राइव, जहां पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है, साथ में बेस्ट फिश एंड चिप्स भी यहां पर अवेलेबल है। तो अगर जो आपको आज बनाने का दिल नहीं कर रहा है तो आप एज वोटर टेकअवेज जाकर विजिट कीजिए, जो कि है 113 तीरकाउ ड्राइव। यहां पर मैंने ट्राई आउट किया है इनका अमेजिंग फूड, आई कैन से दे आर रियली लवली, ग्रेट सर्विस, हमेशा आपको सर्व करते हैं विद अ स्माइल। और इनका ये भी दावा है, कहते हैं कि ये हमेशा जो खाना बनाते हैं ये फ्रेश ही बनाते हैं, कभी कोई चीज़ किसी भी फूड आइटम को ये फ्रीज नहीं करते हैं, ओवरनाइट फ्रोजन नहीं रखते हैं, इट्स ऑलवेज कुक्ड फ्रेश फॉर यू। सो एज वाटर टेकअवेज इज़ द प्लेस पकुरंगा में, 113 तीरकाउ ड्राइव, आप वहाँ जाकर विजय और मोनिका को मिल सकते हैं। तो ये सभी कुछ बातें आपके साथ में हैं देसी बिज शाउट आउट में। अगर जो आपको भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो 5599 पर आप भेजिए। आप अगर जो एडवर्ट्स बनाएंगे तो काफ़ी पैसे लग सकते हैं, लेकिन फॉर आवर देसी बिजनेस हाउसेस जो हैं, हमारे लिसनर्स हैं, हमारे साथी हैं, आपके लिए ये स्पेशल आवा डिज़ाइन किया गया है कि आपके भी सहूलियत के लिए, आपको भी सपोर्ट करने के लिए इन दिस हार्श इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपके लिए ये प्रमोशन जारी किया गया है जिसका नाम है देसी बीज शाउट आउट, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और जब आप टेक्स्ट करते हैं 5599 पर, और अगर जो इसको कंपेयर करेंगे विद एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, तो ये बिल्कुल नहीं के बराबर है।

0: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी जबकि 11:15 हो चुके हैं। ऐसे में हमने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ तो हंगामा हो रहा है JW मेरियट ओकलैंड में, जबकि बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो जारी है। और एक बार फिर आपको क्रॉसओवर कराते हैं कशिका के साथ में, जिनके पास में है लेटेस्ट जानकारी। वेलकम कशिका।
1: थैंक यू सो मच अभी। एंड ये एक लॉन्ग टर्म सिटी का विजन रखते हैं बिल्ड कैट्स, जो आपको एक लॉन्ग टर्म लॉन्जिटिविटी देते हैं, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। आई हैव विद मी हियर बिल्ड कैप्स रियल एस्टेट जो दुबई के हैं और दुबई से इनकी टीम जो आई है। तो यहाँ के सीईओ जो है प्रियांक दुबई से आए हैं, JW मैरिज में हमारा साथ दे रहे हैं। सुबह 10 से यहाँ पर हंगामा शुरू हो चुका है और रात 8 तक चलने वाला है ये सैटरडे को हंगामा, और कल भी चलने वाला है। लेकिन इसके पहले कि मैं कुछ फर्दर बात करूं, एक पहले तो आपको वेलकम करती हूं प्रियांक, हाउ आर यू?
2: मैं बस बहुत ठीक हूं और इट्स एन अमेजिंग टू बी हियर इन ऑकलैंड।
1: सर एक छोटा सा सवाल था, ये व्हाट इज द रीजन ऑफ विवेक ओबेरॉय? ये विवेक ओबेरॉय कहां से बीच में आ गए?
2: विवेक ओबेरॉय हमारे साथी है, उनकी कंपनी है BNW डेवलपमेंट्स और उसी का ये ग्रैंड एक्सपो हो रहा है ऑकलैंड में।
1: ओके, एंड बिल्ड कैप्स हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एज वी ऑल नो दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, यू नो लॉट ऑफ हैप्पी कस्टमर्स, 18 साल से भी ज्यादा आप हैं। टेल अस समथिंग अबाउट यू नो इफ यू हैव टू ट्रैवल टू दुबई और यू डिसाइड टू सेटल डाउन इन दुबई, व्हाई दुबई जबकि वहां गल्फ वॉर चल रहा है?
2: दुबई में कभी वॉर था ही नहीं, दुबई को सिर्फ टारगेट किया गया बाय मोस्ट ऑफ द मीडिया चैनल्स एंड सोशल मीडिया, चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, एग्जेगरेट किया गया। हावेवर दोज हु आर लिविंग इन दुबई दे नो दैट दुबई इज एब्सोल्युटली सेफ एंड देयर इज नो नथिंग लाइक वॉर। मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस हुए जिसमें ईरान, इसराइल और अमेरिका ने अपने जो भी पर्पज के लिए जो ये फाइट किया, उसमें दुबई का कोई रोल नहीं था। दुबई इज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड और आज भी 4 million से ज्यादा लोग दुबई में रहते हैं और इंडियंस उसमें सबसे ज्यादा है, और इंडियंस को आप कभी भी पूछो तो दुबई इज ऑलवेज सेफ फॉर देम।
1: ओके, एंड विच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइक यू सेड दैट यू कुड इन्वेस्ट हियर, सो टेल मी समथिंग, ये बिल्ड कैप्स का जो है ये एक कैपिटल ग्रोथ, यू टॉक अबाउट कनेक्टिविटी, हाई रेंटल्स, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आर यू ब्रिंगिंग इन हियर?
2: सो हम अभी ऑकलैंड में पूरे दुबई की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो लेके आए हैं, लोगों को एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहे हैं। दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम अभी है, क्योंकि जो कोविड के टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज थी, जब प्राइजेस अच्छे थे और पेमेंट प्लान अच्छे मिल रहे थे, सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी राइट नाउ पीपल हैव इन दुबई, कि अभी आप अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है सबसे अच्छे रेट पे, सबसे अच्छे पेमेंट प्लान पे, और आने वाले टाइम में यहीं पे आपका वेल्थ बनेगा। क्योंकि वॉर सिचुएशन के बाद ग्लोबल इन्फ्लेशन इज राइजिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग टू राइज, सो प्रॉपर्टी प्राइस वुड डेफिनेटली राइज फ्रॉम हियर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी ऑलवेज रेकमेंड पीपल टू इन्वेस्ट नाउ, डोंट वेट फॉर द फ्यूचर, इन्वेस्ट नाउ।
1: वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट इनसाइट, आई कैन से दैट। वैसे इसके साथ और भी बातें करेंगे हम एंड जानकारी हासिल करेंगे। इट्स नॉट जस्ट वन प्रॉपर्टी बट देयर आर अ होल लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच बिल्ड कैप्स इज कम अप विद, और ये एक आपके लिए वेल्थ बिल्डिंग पार्टनरशिप रेडी कर चुके हैं। मैरियट्स होटल JW मैरियट्स आप सिटी में पहुंच सकते हैं, रात 8 तक ये होने वाले हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ कल का दिन भी 10 to 8 ये होंगे यहाँ पर। वेल टॉकिंग अबाउट पार्किंग, वीकेंड पे पार्किंग आर वेरी रीजनेबल, कुछ एरियाज में फ्री भी है और आसपास जो पार्किंग काफी सारी मिलने वाली है। टेकिंग यू बैक टू द स्टूडियो, दिस इज कशिका फ्रॉम दी हम।
0: तो ये थी हमारी साथी कशिका, आपको दुबई के बारे में बता रही थी और बताती रहेंगी बस और भी रिपोर्ट्स के साथ में। तो अगर जो आप भी एक नए डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो दिस इज़ एन ऑप्शन जहां पर इन्फॉर्मेशन खुद यानी कि एक्सपो आपके पास में ओकलैंड तक चलकर आया है, तो आप यहां पर जाकर जो जानकारियां हैं हासिल कर सकते हैं। इसके साथ में वापस रुक करते हैं हमारे देसी बिज शाउट आउट में। बिल्डिंग अ हाउस शुड बी अ हैप्पी जर्नी, जाने कि आप अगर जो घर बनाने की सोच रहे तो इट शुड बी अ मेमोरेबल एंड अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर यू। तो ये सभी कुछ पॉसिबल करने के लिए आपको हायर करना होगा प्लेन जोन लिमिटेड को, जहां पर फरीदाद्दीन आपके लिए जितने भी आपके आरसी बीसी ड्राइंग्स है, आपके जितने भी बेसिक प्लानिंग है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, ये सभी कुछ आपके लिए कर सकती हैं। तो अगर जो आप चाहते हैं एक ऐसा यूँ कहें एक्सपीरियंस गाइडेंस, तो आप फरीदा से बात करें ऑन 02111-02618। तो अगर जो आपने प्लॉट ले लिया है, ज़मीन ले ली है और आप बिल्ड करने के सोच रहे हैं, तो प्लेन जोन लिमिटेड की फरीदाद्दीन से आप बात करें 02111-02618 पर आप इनसे बातें कर सकते हैं, ताकि आपके लिए ये जो जर्नी है बिल्कुल एक हैप्पी और मेमोरेबल वन रहे। तो आपको भी कुछ बताना है अपने बिजनेस के बारे में, तो 5599 पर टेक्स्ट करें।

0: Wow.
1: हम पर मैं हूँ अवि और स्टेन्स ऑटो पार्ट्स के बारे में आपको बता दूं जो सप्लाई करते हैं सभी तरह के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑटो पार्ट्स। तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको आप ढूंढने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो स्टेन्स ऑटो पार्ट्स ये साउथ ओकलैंड में बेस्ड है और ये आपके लिए जो पार्ट्स आप ऑर्डर करोगे इसको ये लाकर आपके लिए डिलीवर भी करेंगे और स्पेशल प्राइसिंग टू ऑल द वर्कशॉप्स। तो क्वालिटी पार्ट्स जो आप तक चल कर आए इसके लिए आप रॉब्सन को कॉल करें ऑन 0224711421। Number once again, 0224711421 for all your quality parts from Stains Auto Parts. इसके साथ में एक और एक गैरेज है राज ऑटोमोटिव एंड टायर जो सिचुएटेड है 11K रायन प्लेस मेनेकाओ में जहां पर ढेर सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप यहां पर जब सर्विसिंग करवाते हो वारंट करवाते हो तो इनके पास में आफ्टर पे का भी प्रोविजन है यानी कि आप काम करवा सकते हो फिर सहूलियत से पेमेंट भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये इंश्योरेंस जॉब्स भी करते हैं नो जॉब इज टू बिग और स्मॉल फॉर देम। तो 11K रायन प्लेस मेनेकाओ में ये सिचुएटेड है आप जाकर राज ऑटोमोटिव में अपने गाड़ी का मरम्मत करवा सकते हैं। ये इनका नंबर है 0212107669 0212107669। ऑलवेज अवेलेबल है आपके लिए और एक फ्रेंडली सर्विस के साथ में विद अ फ्रेंडली स्माइल ये अवेलेबल है राज ऑटोमोटिव एंड टायर 11K रायन प्लेस मेनेकाओ में।
2: Saturday breakfast on Hum. The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Puri planning se aaye hain 100% tumko subah yahan se le jayenge.
4: 0 to 800 kilometers per hour, that's a massive
5: That's a very acceleration.
4: Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है यार सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Saturday breakfast on Hum.
1: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और समय की ओर देखते हैं तो इट्स अराउंड 11:30 AM और हमने आपको बताया था पहले कि 30 सितंबर से ओकलैंड में ढेर सारी एक्टिविटीज होने को है जबकि 11 सनातन वर्ल्ड कप 2026 ओकलैंड में होने जा रहा है तो 30 सितंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है लेकिन बिहाइंड द सीन्स ढेर सारे काम हो रहे हैं जहाँ पर इवेंट चेयरपर्सन जितेन लाल जी हमारे लाइन्स पर है और हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं कुछ और डिटेल्स. जितेन जी आपका स्वागत है.
2: गुड मॉर्निंग अभी, कैसे आप?
1: गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो?
2: एकदम ठीक है, थोड़ा टायर्डनेस है बट दैट्स ओके. यू नो ऑर्गेनाइजिंग यू नो इवेंट लाइक दिस इज ऑलवेज हार्ड यू नो एंड पीपल गेट टायर्ड विद ओवरनाइट वर्क दैट वी डू एज अ टीम फ्रॉम न्यूजीलैंड सनातन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल लिंक. सो या बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम.
1: थैंक यू. आप हमें ये बताइए कि मैंने देखा है फिक्स्चर्स और साथ में 30 सितंबर से जो फुटबॉल है ये शुरू होने को है बिल मैकिनली पार्क में, साथ में बैरिकेटिस ग्राउंड्स पर और एक और एक कोई ग्राउंड था. जितेन भाई आप बता दे.
2: वेल वी गॉट फाइव फुटबॉल फील्ड्स. वन इज द मेजर हमारा जो ये इवेंट होगा ये बिल मैकिनली पार्क. पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ बिल मैकिनली पार्क, देयर इज लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स हैपनिंग देयर. और हम भी ये इवेंट जो सनातन वर्ल्ड कप हम बिल मैकिनली पार्क पे करेंगे और साथ में विलियम ग्रीन डोमेन फुटबॉल टेफ ये जो 600 पेकुरांगा रोड पर है जस्ट राइट ऑपोजिट द न्यू पैक एंड सेफ. पीपल आई मीन फुटबॉल प्लेयर्स देयर नाउ बट इफ पीपल वांट्स टू गो एंड सपोर्ट देयर टीम देयर इट्स राइट ऑपोजिट द न्यू पैक एंड सेफ इन ऑन पेकुरांगा रोड. देयर इज ओनली वन पैक एंड सेफ इन पेकुरांगा रोड. सो इट्स 600 पेकुरांगा रोड. साथ में ओमस्टन प्राइमरी स्कूल जो यहाँ पर फ्लैट बुश में है ये भी एक टेफ फील्ड है, ये हम यूज करेंगे. और दो हमारा जो नॉर्मल फील्ड्स है बैरिकेटस पार्क 1 और 2 ये 163 चैपल रोड पर यहाँ पर ओमस्टन फ्लैट बुश में है.
1: थैंक यू. और जो ओपनिंग सेरेमनी रहेगी इसके बारे में कुछ डिटेल्स हमारे लिसनर्स के लिए.
2: ओपनिंग सेरेमनी विल बी ऑन थर्सडे बिल मैकिनली पार्क पर रहेगा क्योंकि हमारा फेस्ट यू नो द सनातन झंडा बंधन ये वेंसडे को होगा 7:20 PM पर बिल मैकिनली पार्क पर. और उसके बाद में थर्सडे को हम करेंगे ये जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी ऑफिशियल ओपनिंग. यहाँ पर काफी गेस्ट आ रहे हैं 7:30 PM पर तो लोग इसमें भी भाग ले सकते हैं.
1: और तो ये ओपन इनविटेशन की तरह है, अगर जो लोग आना चाहते हैं तो इस सेलिब्रेशन में आकर ओपनिंग सेरेमनी में आकर भाग ले सकते हैं.
2: Definitely, I mean football, when we talk about football, football starts on Wednesday at 10 AM, a din mein shuru hoga. So an entry for any venue is free, right? So log jo apna team ko support karna chahte hain, you know, chahe koi bhi field par, the entry is completely free, we're not charging anyone for this.
1: Okay, aur maine dekha hai ki aapne golf ko bhi include kiya hai is saal.
2: Definitely, yes, saath mein golf, netball, volleyball, sabhi ये इवेंट्स होगा बट मोस्टली गोल्फ विल हैपन ऑन वन डे फ्राइडे जो 2 अक्टूबर रहेगा तो ये हुआ पाई गोल्फ कोर्स में होगा जो रिवर हेड में. एंड आई थिंक एज ऑफ यस्टरडे वी गॉट 103 प्लेयर्स. दिस इज आई मीन गोल्फ जो क्लब है ये शौक कहा गया कि पहली बार हमारे पास 103 प्लेयर्स इन वन डे आ रहा है. तो हमारा जो कोऑर्डिनेटर है विनीत शर्मा ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और साथ में जो नेटबॉल रहेगा हमारा जो ओपन नेटबॉल है विथ 17 टीम्स ये होगा ओकलैंड नेटबॉल कोर्ट मोरिन रोड इन पेनमिया में. तो दिस द बिगेस्ट नेटबॉल कोर्ट इन न्यूजीलैंड इज वेल. और साथ में वॉलीबॉल विल हैपन ऑन संडे फ्रॉम 8 AM एट सिनेजी इवेंट जो रहा है 36-42 पोर्टेज रोड इन न्यूलिन. सो यू नो लाइक पीपल कैन गो देयर एंड वॉच द वॉलीबॉल. वी गॉट अबाउट 15 टीम्स इन वॉलीबॉल इज वेल एंड सम ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम ओवरसीज. अभी
1: दैट्स गुड न्यूज़. और साथ में काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स है, काफ़ी हाई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है. और इसके साथ साथ हम जानते हैं कि ओकलैंड से भी आपको होम टाउन होस्ट टाउन से भी काफ़ी सपोर्ट मिलती रहेगी.
2: Definitely, I mean, यहाँ पर तो सपोर्ट और स्पॉन्सर्स नहीं रहता है कोई इवेंट में, it's never success. So, I mean, like while you were there, I mean, I'd like to mention my major sponsors, Valentine's Buffet Restaurants, Lal's Transport Limited, और जो Rams Group of Companies है, ये तीन हमारा major naming sponsors है. साथ में हमारे पास और भी sponsors है, Nanak Homes Limited, IXL Financial Solutions, propeller shaft services from Sydney, Kalatech powder coating from Sydney, IAAA antennas from Sydney, Ends Funeral Homes and Cremations, Get Fresh Supermarket, Ping Bins, और साथ में NZ Visa Solution. ये हमारा जो और भी अन्य sponsors इस event को support कर रहे हैं.
1: थैंक यू सो मच जितेन भाई, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाला है हमारे लिसनर्स के लिए जानकारी लाकर. और भी बातें आपसे आने वाले दिनों में होती रहेंगी. बेस्ट ऑफ लक फॉर द 11th सनातन वर्ल्ड कप.
2: थैंक यू अभी, एंड थैंक यू फॉर हम एफएम फॉर कमिंग ऑन बोर्ड एंड योर एंटायर टीम. विजय वर्मा ने इसको अप्रूव किया था एंड वी आर रियली ग्रेटफुल दैट यू गाइस आर पार्ट ऑफ दिस एज वेल.
1: थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. टेक केयर, फिर बातें होंगी आपसे.
2: थैंक यू अभी, थैंक यू.
1: तो ये थे इवेंट चेयरपर्सन जितेन लाल जी, जिन्होंने जानकारी दी है कि कैसे, कब और कहां जो 11 सनातन वर्ल्ड कप है होने को है, जिस पर और भी डिटेल्स और साथ में जानकारी अपडेट्स आपके साथ में हम शेयर करते रहेंगे. 1, 2,

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: मैं हूं अभी आपका साथ दे रहा हूं, जबकि ब्रेकफास्ट से अब तो लंच का समय भी होने वाला है, लेकिन हम आपको बता दें रोवा पर आपके पास में ढेर सारे ऑप्शन हैं जहां पर हम रिवाइंड में आप 60s और 70s के गाने सुन सकते हैं। इसके अलावा 80s का भी एक अलग सिलेक्शन है हम 80s जुक बॉक्स में, साथ में फिजी भजन्स भी है जहाँ पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आपके लिए 24/7। इसके अलावा जो पंजाबी पंपिंग हिट्स है फॉर योर वीकेंड पार्टी नंबर्स, ये भी आप सुन सकते हैं चढ़दी कला में। इसके साथ साथ फिजी कीर्तन संग्रह जिसके रिकॉर्डिंग कल हुई वैदिक सेंटा में, यहाँ पर ढेर सारे आर्टिस्ट आए और अपने अपने आवाज़ में कीर्तन को रिकॉर्ड किया गया है उनके द्वारा, तो यहाँ पर अब इसको रिवैम किया जाएगा, जबकि आने वाले दिनों में इनको इन कीर्तनों को अब सिलेक्शन में शामिल किया जाएगा। इसके साथ में राहत फ़तेह अली खान भी है, इनके लिए भी जो इनकी गाई हुई सूफी है कवालियाँ हैं आप इन्हें भी सुन सकते हैं। तो ये सभी कुछ आपके पास में एक ऑप्शन है, बिल्कुल अवेलेबल है।
0: Shout out on Saturday breakfast. Keep calm because Punjabi swag is on.
3: Hey, hey, aaj diye maaj diye mombatti hai hai pehle dinon tere utte akh rakhiye hai tere bina area ch aur kudi da na dil mangiye te na hi time check

0: Streaming on Rover.
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
4: It's the one you've been waiting for. Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% off selected big brand clothing, footwear and more. Big brand, big savings. Get into Rebel Sport today. These deals and so much more. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
5: This weekend's to-do list is filling up fast. Kids' activities, visiting the grandparents. But Woolworths takes going shopping off the list with delivery right to my door. I can even sit down before it arrives. That's my kind of Woolies.

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है ये, आप हमें सुन रहे हैं। मैं हूं अभी आपका साथी, एक तक आपका साथ देता रहूंगा। और अब समय हुआ एक बार फिर आपको क्रॉसओवर कराए फॉर द बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो, जहां पर और भी इन्फॉर्मेशन लेकर हमारी साथी कशिका जी तैयार है। कशिका, आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच अभी। एंड अभी आपका एक सवाल था जो ऑफ एयर आप मुझसे पूछ रहे थे, सो आई हैव द सीईओ ऑफ बिल्ड कैप्स रियल एस्टेट हियर, तो आपका सवाल आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं।
1: हाय, हाउ यू डूइंग?
3: I'm good. How are you?
1: I'm good, thank you. मैं सुन रहा था the latest updates and reports, और मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि अगर जो मुझ जैसे को इन्वेस्ट करना होगा, so what is the property range, price range I'm looking at?
3: So in terms of New Zealand dollar, property prices starts from 250,000 New Zealand dollar, and in that people get a payment plan of 5 to 6 years. 50% during construction and 50% post handover. So after completion, you get again 3 years to pay your remaining 50%. So that kind of flexible payment plans and prices are there.
1: That's great. And for this price of 250,000 New Zealand dollars, what is the property specification like? How many BHK and any details that you have?
3: This is basic range of studio apartment, which is fully furnished and branded. So in that you get complete furnished apartment with all kitchen appliances and all. And along with that, you get branded residence. So it's a five-star property. It's not just an ordinary building.
1: That's great. So is it gated as well, the complex that we're talking about? Or?
3: Yeah, it is gated as well as with private beach access. So it's a... close to the sea, walking distance from private beach, just 50 steps away.
1: That's great. Lovely to hear that. I'm pretty sure jitne bhi hamare listeners hain jo hame sun rahe hain, is price range mein agar jo main compare karun to mujhe shayad yahan par kuch bhi nahi milega.
3: Definitely.
1: Thank you so
3: much. I think New Zealand properties are somewhere around 1 million New Zealand dollars.
1: That's right. साउथ लेंस में शायद थोड़े चीप होंगे, लेकिन जो आप प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रहे हैं जिस तरह से, उस रेंज में, उस प्राइस रेंज में मिलना मुश्किल है।
3: राइट, करेक्ट।
1: ओके, थैंक यू सो मच आपके अपडेट के लिए। हाँ, इसका शिकार
2: अभी, थैंक यू। हाँ, मुझे लग रहा है तुम दुबई भागने वाले हो, तो हम एफएम का क्या होगा?
1: नहीं, मैं नहीं जाने वाला अभी, लेकिन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, अगर जो ये प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, तो यहाँ पर काफी मुश्किल है ना। तो इट्स
2: मुश्किल तो है, बट यू सीइंग द मार्केट हियर, यू नो, आई थिंक मेरा अगला सवाल जो प्रियंक जी से होगा, आई मीन वी लुकिंग एट द प्रॉपर्टी मार्केट हियर एंड वी लुकिंग एट द प्रॉपर्टी मार्केट देयर, तो आप बताइए प्रियंक जी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू सजेस्ट और यू वुड गिव लाइक टू गिव एन इनसाइट ऑन?
3: सी, दुबई इज दैट सिटी व्हिच हैज ग्रोन इन लास्ट 20 इयर्स। 20 साल पहले दुबई में ना बुर्ज खलीफा था, ना पाम जुमेरा, या दुबई मरीना नहीं था। तो आज दुनिया ने देखा है कि दुबई ने जो 20 साल में ग्रोथ की है, वो ही नेक्स्ट 20 साल में और क्या कर सकता है। सो फ्लाइंग टैक्सीज आ रही है दुबई में, इट इज बीइंग लॉन्च्ड इन फ्यू मंथ्स ओनली, और अलोंग विद दैट वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है करंटली। ऑल्सो DXB एयरपोर्ट इज वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट, और उससे 5 times बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है DWC दुबई वर्ल्ड सेंट्रल। अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसीनो भी दुबई में बन रहा है। तो बहुत सारी चीजें अभी तो दुबई में आ रही है जो सिटी को एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगी। तो जब भी हम किसी सिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरा सिंपल लोगों से यही सजेशन है कि अगर आप दुबई के बारे में सोच रहे हैं, तो यही सही टाइम है, क्योंकि जब एक बार स्पीड पकड़ेगा दुबई, तो फिर सिर्फ मतलब रिग्रेट होता है कि मैंने काश वो उस समय ले लिया होता। तो जैसे कोविड में लोगों को हुआ कि कोविड में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं ले पाए, उनको बाद में 1-2 साल में बहुत अफसोस हुआ। तो दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन दुबई।
2: ओके, साउंड्स लाइक अ प्लान, बिकॉज दुबई एयर टैक्सी जो है इसी साल एंड में लॉन्च होने वाली है, और आपको बताते थे इन्वेस्ट करने का ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है, जहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रियंक जी बताने वाले हैं, अलॉन्ग विद द huge team of Build Caps, which has come all the way from Dubai to meet you. So come down to JW Marriott, जहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने प्लान लेआउट सब कुछ तैयार किया है. रात 8 बजे तक आज एंड पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आप कल का दिन भी जो है 10 से 8 के बजे के बीच में JW Marriott सिटी में आप पहुंच सकते हैं. टेकिंग यू बैक टू द स्टूडियोज, दिस इज कशिका.
1: तो ये थी हमारी साथी कशिका जी जो हैं JW Marriott में और यहाँ से अपडेट्स आपको दे रहे हैं जहाँ पर बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो जारी है. तो अगर जो आप भी जाना चाहते हैं तो आज और कल जैसे कि कशिका जी ने बताया है रात 8 तक ये जो इवेंट है प्रॉपर्टी एक्सपो चलता रहेगा.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: 6 मिनट बाकी है 12 बजने में और 12 पर आपके लिए रहेगा न्यूज़।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
1: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
2: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
3: Come and sell.